एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 20वीं तिथि। तदनुसार 12 अक्टूबर सन 2026 प्रातः के 5:58:40 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज This is your time, this is your opportunity. मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने

0: करने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-2-471234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमूज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों से निपटने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

नवरात्रि के ये पावन दिन केवल माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के दिन नहीं, बल्कि स्वयं को भीतर से जानने और अपने मन को पवित्र बनाने का अवसर भी है। हम सभी इन दिनों माँ के दरबार में जाते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, व्रत रखते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन माँ तो केवल हमारे मन का भाव देखती हैं, उन्हें हमारे हाथों से चढ़ाए गए फूलों और प्रसाद से अधिक प्रिय है वह प्रेम जो हम सभी के व्यवहार से दूसरों के प्रति जागृत होता है। सच्ची भक्ति वह नहीं जिसमें हम केवल मंदिर में माँ के सामने सिर झुकाएं, बल्कि सच्ची भक्ति तो वह है जिसमें किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते समय हमारा सर विनम्रता से झुक जाए। नवरात्रि हमें माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों के माध्यम से जीवन की अनेक शिक्षाएं देती हैं। माँ के ये स्वरूप हमें याद दिलाते हैं कि जिस शक्ति की हम पूजा करते हैं वह शक्ति एक अंश हमारे भीतर भी विराजमान है, आवश्यकता है तो बस उसे पहचानने की। तो आइए इस नवरात्रि हम माँ से केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना मांगकर, बल्कि यह प्रार्थना करें कि वे हमें इतना सामर्थ्य दे कि हम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य न खोएं, दूसरों के प्रति अपने मन में द्वेष न रखें और अहंकार के स्थान पर विनम्रता को अपनाएं। चिंतन के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन प्रेम का मार्ग सबसे सुंदर और सबसे सरल माना गया है।

जब मनुष्य के मन में करुणा, वाणी में मिठास और कर्मों में सच्चाई आ जाती है, तब हमारा जीवन ही माँ की आराधना बन जाता है।

श्रोताओ, ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद सुबह ठीक 7:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुहानी। 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर आज आप सुनेंगे उप शास्त्रीय संगीत। 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम कानून की बात रिले किया जाएगा और सुबह 9:00 सुनिएगा फिल्म संगीत। सुबह 9:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण रिले किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुनेंगे सुबह 10:00। 10:30 पर सुनना ना भूलिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11:05 पर आज आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 समय रहता है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर बहनें सुना करती हैं अपना कार्यक्रम सुनो सखी। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर श्रोताओं आपको सुनवाएंगे कुछ गैर फिल्मी

की कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9:15 पर। और आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे संगीतकार उषा खन्ना के संगीतबद्ध के कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। गूंज पहाड़ों की, लोक संगीत का यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 9:30 पर। रात 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। श्रोताओ, प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे सुबह 9:50 पर, दिन में 11:00, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और शाम 7:45 पर। कार्यक्रमों की रूपरेखा में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः चेन्नई नगरे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य प्रांगणे आयोजिते भव्य समारोहे तमिलनाडु राज्याय 13,000 कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विविधानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एतासु परियोजनासु मार्ग रेल परिवहनं पत्तन मूलभूत संरचना पेट्रोलियम क्षेत्रम् अथ वैज्ञानिकानुसंधान प्रकल्पाः सम्मिलिताः सन्ति, यस्मिन् 7,300 कोटि रूप्यकाणां राष्ट्रिय राजमार्ग कार्याणि चेन्नई पत्तन विकास परियोजनाः अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं रेल स्थानकानां नवीनीकरणं च मुख्यमस्ति। सः अवोचत् यत् एतैः पदक्रमैः सम्पर्क व्यवस्था सुदृढा भविष्यति, उद्योग व्यापारयोः विस्तारः सम्पत्स्यते, राज्यस्य युवभ्यश्च नूतनाः उद्यमावसराः सृज्यन्ते। जनसेवायां स्वकीय यात्रा संस्मरता श्रीमोदिना उक्तं यत् सर्वकारप्रमुखत्वेन सः 25 वर्षाणि सम्पूरितवान्। प्रधानमन्त्रिणा IIT मद्रास परिसरे सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केन्द्रम् अपि राष्ट्राय समर्पितम्। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा चेन्नई मेट्रो रेल प्रकल्पस्य द्वितीय चरणस्य पूनमल्ली वडपलनी मार्गखण्डः अपि लोकार्पितः, यस्य निर्माणं प्रायः 9,000,000,000 कोटि रूप्यकैः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चेन्नई नगरे अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्ण विश्वं उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्वेषयति। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् एतेषां समाधानानां प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा सामर्थ्यं सम्भावनाश्च सन्ति। ह्यः सायंकाले चेन्नईनगरे जयगोपाल गारोदिया हिन्दू विद्यालये आयोजिते स्वर्णजयन्तिमहोत्सवे भाषमाणः प्रधानमन्त्री एतदुक्तवान्। सः विशेषतया अवदत् यत् विकसितभारतस्य संकल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति।
1: आज कंपोनेंट से टेक्नोलॉजी और फिनिश प्रोडक्ट्स का हर राज्य में केंद्र सरकार प्रोडक्ट चेन को मजबूत कर रही है और इन्हीं कोशिशों का परिणाम है आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। 2014 से अब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 टाइम्स बढ़े हैं, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी

0: नया रिकॉर्ड बनाया है।
1: सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्ण रीत्या एकत्रितानां जनानां अवैध निगडनं वारयितुं सामान्यं आवागमनं संचालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः। न्यायालयेन निर्दिल्ल्यां मार्गावरोधाय वेरिगेटिंग व्यवस्थायाः समीक्षा, मेट्रो सेवायाः समयानुसारं संचालनं, अन्तर्जाल सेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुं आदिष्टम्। न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तॄणां दायित्वानां निर्वहणे बाधा न कर्तव्या। सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लङ्घनाय अवमानना कार्याचरण सम्बद्ध याचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति, सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मै अपि असौविध्यं न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु। अथ सद्यो वृत्तान्ताय च news.AIR.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
1: क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ इन्दौरनगरस्य होल्कर क्रीडांगणे भारतीय दलेन वेस्टइंडीज दलं 14 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
0: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
3: चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
4: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखें, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
3: दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर है 800-24-71-234 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होर्मोज जल डमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वाल्थोरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया।

जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कल होर्मुज़ जलडमरू मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की निंदा की है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेस स्ट्रिटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों को रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये युद्धविराम तुरंत लागू हो गया है। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 223 रन बना लिए। अभिषेक वर्मा ने 69 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: भोर की बेला है, माँ की आराधना का त्योहार है। नवरात्रि के पावन दिनों में भक्ति की बहार है। माँ की कृपा से हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए। नवरात्रि का पावन पर्व हर जीवन में खुशियां सजाए। नवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सचिता और आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग, संयम और दृढ़ संकल्प की प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनका यही तपस्विनी स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। श्रोतो, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें ये संदेश देती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य, संयम और दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे मन में विश्वास और संकल्प मजबूत है तो हम अपने लक्ष्य को निरंतर आगे बढ़ते हुए प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, इस पावन दिन पर माँ से प्रार्थना करें कि वे हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दें, हमारे मन में सकारात्मकता बनाए रखें और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इसी श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस सुबह सुहानी की।

श्रोताओ, आकाशवाणी धर्मशाला से शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुबह सुहानी, और उम्मीद है श्रोताओ आप जहां भी हैं, जिस भी काम में व्यस्त हैं, इस कार्यक्रम के साथ आपके दिन की शुरुआत कुछ और खुशनुमा हो रही होगी। अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है हमारा आज का सुविचार। श्रोताओ कभी ध्यान दीजिएगा, पेड़ पर लगे पत्ते एक ही शाखा से जुड़े हुए होते हैं, फिर भी हर पत्ता हवा के साथ अपने ही तरीके से हिलता है। शायद जिंदगी भी हमें यही सिखाती है कि किसी के साथ जुड़े रहना और अपनी पहचान बनाए रखना दोनों एक साथ संभव है। इसलिए रिश्तों में अपनापन रखिए, लेकिन अपनी पहचान मत खोइए, क्योंकि साथ होना खूबसूरत है पर स्वयं की पहचान होना भी उतना ही जरूरी है। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
5: श्रोताओ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुहानी में। और अब वक्त है एक नज़र इतिहास के ओर डालने का और जानने का कि आज का ये दिन क्यों खास है। सबसे पहले बात करते हैं साल 1492 की। आज का दिन श्रोताओ दुनिया के भूगोल के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इतावली खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने आज ही के दिन बहामास के तट पर कदम रखा था, जिसे अमेरिका की खोज के रूप में जाना जाता है। कोलंबस निकलते तो थे भारत की खोज के लिए, लेकिन उनकी जहाजी टुकड़ी इस नए महाद्वीप पर जाकर पहुंची। इस घटना ने वैश्विक व्यापार और इतिहास की दिशा हमेशा के लिए ही बदल दी। अब बात करें 1999 की, तो आज का ये दिन खेल प्रेमियों के लिए बेहद ही खास और यादगार बन गया था, जब अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरे किए थे। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बने थे। और श्रोताओं, आज का ये दिन संयुक्त राष्ट्र के लिए भी बहुत खास है। साल 2001 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र और उसके तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, जो दुनिया में शांति स्थापने के लिए उनके प्रयासों का सम्मान था। साल 2005 में, यानी आज से ठीक 21 वर्ष पहले, आज का ये दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। आज ही के दिन पूरे देश में सूचना का अधिकार यानी RTI कानून लागू हुआ था। इस कानून ने देश के आम नागरिक को और सरकार और प्रशासन से सवाल पूछने और पारदर्शिता जानने का एक बेहतरीन हथियार दिया था। ये थी कुछ घटनाएं जिन्होंने आज के इस दिन को खास बना दिया। अब हम अपने इस कार्यक्रम को खास बनाएंगे इस गीत के साथ।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
4: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
4: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
5: लड़ी हक की लड़ाई,
3: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओ, इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने जीवन से अधिक अपने विचारों के लिए याद किए जाते हैं। उनके शब्द समय के साथ पुराने नहीं पड़ते, बल्कि हर पीढ़ी को कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी, चिंतक और प्रखर राजनेता को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन

0: जीवन देश की आज़ादी, सामाजिक समानता और आम आदमी के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की, जिनकी पुण्यतिथि आज हम मना रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से प्राप्त की और बचपन से ही उनके मन में देश के प्रति प्रेम और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की भावना थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस दौरान वे जेल भी गए। आज़ादी के बाद भी श्रोताओं, उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने समाज में फैली हुई जातिगत असमानता, आर्थिक विषमता और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का विरोध भी किया। उनका मानना था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। डॉक्टर लोहिया जी एक प्रखर वक्ता और निर्भीक राजनेता थे। वे संसद में आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को मजबूती के साथ उठाते थे। 12 अक्टूबर 1967 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय और समानता की राह दिखाते हैं। श्रोताओं, आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन में हर व्यक्ति को समान सम्मान देते हैं? क्या हम जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर इंसान को इंसान के रूप में स्वीकार कर पाते हैं? जी हाँ, यही सभी बातें हैं जो उनके जीवन से हमें सीखने को मिलती हैं।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अटाका प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।

जी हाँ श्रोताओं, आप सभी जानते ही हैं कि आज है 12 अक्टूबर और आज के दिन श्रोताओं हम एक बेहद खास दिन मना रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस। श्रोताओं, हमारे देश में हर मनुष्य को एक सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। इसी अधिकार की रक्षा करने के लिए आज के दिन यानी 12 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। 1993 में आज के ही दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। श्रोताओं, अब आप सोच रहे होंगे कि ये आयोग करता क्या है, तो हम आपको बताते हैं, ये संस्था हमारे देश के प्रहरी की तरह है। अगर किसी भी नागरिक के बुनियादी अधिकारों जैसे जीने का अधिकार, आज़ादी या समानता का हनन होना या कहीं भी अन्याय होता है तो यह आयोग उसकी आवाज़ बनता है, हमारी रक्षा करता है और दोषियों के खिलाफ कदम उठाता है। तो दोस्तों, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि ये याद दिलाने का दिन भी है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करना चाहिए। मानव अधिकार है तो शान है, इनकी रक्षा से ही देश महान बनता है। तो श्रोता, यूं ही बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आपकी सुबह को सुहाना बनाना ही हमारा प्रयास है।

0: रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
3: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500

0: 700 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
0: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सुहानी में अब वक्त हो गया है आज के मुख्य समाचारों का। हिमाचल प्रदेश में रोजगार के अवसरों पर एक बड़ी खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में लगभग 12,000 पदों को भरने और सृजित करने की मंजूरी दी है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, वन और जल शक्ति विभाग सहित कई विभागों में पद शामिल किए गए हैं। सीआरपीएफ में भर्ती का अवसर भी सामने आया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में खेल कोटे के तहत 521 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। इनमें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पद शामिल हैं। नीट पीजी 2026 के पहले चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। मेडिकल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की समय सारिणी और आवश्यक दस्तावेजों के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।

श्रोताओं, अहमदाबाद में 12 अक्टूबर को यानी आज के दिन ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेलों का प्रदर्शन आयोजित किए जाने की योजना है। इस आयोजन का उद्देश्य विभिन्न देशों के पारंपरिक खेलों और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करना है। तो श्रोताओं, ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। कार्यक्रम में ये गीत सुनते हैं और गीत के बाद जानेंगे मौसम का हाल।

श्रोताओ, अब बारी है मौसम का हाल जानने की। देश के कई हिस्सों में श्रोताओ आज मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर भारत के कुछ राज्यों के साथ साथ पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बारिश और गरज चमक देखने को मिल सकती है। अब बात करें हमारे देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मौसम की, तो हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई है। आज भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है। धर्मशाला और कांगड़ा की बात करें तो हालिया बारिश के कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई है। और श्रोताओं, मौसम चाहे सुहाना हो या बारिश वाला हो, अपनी सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम सुबह सुहानी से अब विदा लेने का समय आ गया है। अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को इस कार्यक्रम को संपन्न करने के दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हुती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
3: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
2: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी,
3: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे। बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
2: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। एक रिपोर्ट।
4: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी सियासत।

0: मानवता का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
1: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
2: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
1: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
3: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
1: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और इसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन,
5: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
4: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-471234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता है।

0: स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
1: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडब्रू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 01123341048 01123417117। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकशक्ति की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से यह खबर दी है।

0: श्रोताओं, उप शास्त्रीय संगीत में अभी आपने शोभा गुरटू जी की आवाज में ये ठुमरी सुनी। राग था मिश्र भैरवी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी

0: पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: अरे वो देखो, औरत दर्द से तड़प रही है, क्या करे?
2: अरे भाई देखते क्या हो, तुरंत 108 पर फोन लगाओ।
3: राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108, किसी भी आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, अगजनी व पुलिस सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 108 पर डायल करें। यह सेवा निशुल्क है और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमे गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम कानून की बात रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी शिमला और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आइए सुनते हैं कानून की बात कार्यक्रम। आज का विषय है लालसा के यौन उत्पीड़न, अन्य अपराधों की महिला पीड़िता और उत्तरजीवियों के लिए पीड़ित मुआवजा योजना 2019। विशेषज्ञ हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री आर मिहिल शर्मा।
1: नमस्कार श्रोताओ, आकाशवाणी धर्मशाला के इस विशेष जानकारी पूर्ण कार्यक्रम कानून की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम है। कई बार जीवन में ऐसी प्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जब व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस करता है, विशेषकर वे महिलाएं और नागरिक जो किसी अपराध का शिकार होते हैं। ऐसे समय में न्याय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सहयोग भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। इसी उद्देश्य से आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नालसा कंपनसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम्स सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल एसल्ट तथा हिमाचल प्रदेश प्रतिकार यानी अपराध से पीड़ित व्यक्ति योजना 2019 के बारे में। ऐसी योजनाएं जो पीड़ितों को न्याय की राह पर संबल और सहायता प्रदान करती हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला के सचिव वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्री आर मिहुल शर्मा जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि कानून किस प्रकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ा है। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं, तो हमारे श्रोताओं को पहले ये बताइए कि यह प्राधिकरण आम जनता के लिए किस तरह से कार्य करता है।
2: सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन मुख्यतः समाज के गरीब पिछड़े वर्गों व अपराध पीड़ितों के लिए किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के इन गरीब पिछड़े वर्गों व पीड़ितों को मुख्य धारा से जोड़ना है। हमारा प्रयास यही रहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो न्याय से वंचित रह जाए। इसके लिए हम गांव व दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करते हैं ताकि कानून की आधारभूत जानकारी सबको मिल सके व ये लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त कानूनी सहायता भी देता है। इसके लिए महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वह व्यक्ति जिसकी सालाना आय 3 लाख से कम हो, ट्रांसजेंडर्स, एड्स पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग वह औद्योगिक कामगार पात्र हैं। एप्लीकेशन के साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दस्तावेज की आवश्यकता होती है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए किसी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय या विधिक सेवा प्रधि कमेटी में अप्लाई किया जा सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपराध पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुआवजा देने की भी व्यवस्था की है, जो कि पीड़ित व्यक्ति को अपराध से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसके प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत मिलता है।
1: क्या आप ये बताना चाहेंगे कि इन दोनों स्कीम्स विक्टिम कंपनसेशन स्कीम और कंपनसेशन टू द वुमेन विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, इनमें अंतर क्या है?
2: पीड़ित महिला प्रतिकर स्कीम में सिर्फ महिलाओं को यौन अपराधों के कारण जो उन्हें शारीरिक व मानसिक हानि हुई है उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

0: की एक स्कीम है। हमारी दूसरी प्रतिकर स्कीम जो कि हिमाचल प्रदेश अपराध के पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 है, उसमें महिला व पुरुष दोनों मुआवजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्कीम है।
1: जी शर्मा जी, ये बताइए इन दोनों स्कीम्स के अंतर्गत किन व्यक्तियों को पीड़ित माना जाता है?
0: सबसे पहले तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इन स्कीमों के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति केवल अपराध पीड़ित होना चाहिए। मुआवजे के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनमें प्राथमिक सूचना यानी FIR दर्ज हुई हो। विशेष परिस्थितियों में यदि FIR ना हुई हो तो कोर्ट में शिकायत दर्ज होनी चाहिए। इन स्कीमों में क्लॉज 2H के अंतर्गत वो व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ हो पीड़ित कहलाता है, परंतु यदि पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो ऐसी परिस्थिति में उसके परिवारजन, वारिस या आश्रित पीड़ित माने जाएंगे और ये लोग मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, अब बात ये आती है कि अपराध होने के कितने समय के भीतर मुआवजे के लिए आवेदन किया जा सकता है?
0: इन स्कीमों में अपराध दर्ज होने के 12 महीने के अंदर मुआवजा के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में 12 महीने के भीतर आवेदन ना किया जा सका तो प्रार्थी को वो खास वजह बतानी होगी जिसके कारण वो 12 महीने के भीतर आवेदन ना कर पाया। यदि DLS से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या SLS से स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को ये वजह एक जायज वजह लगती है तो कमेटी प्रार्थी की एप्लीकेशन को स्वीकार कर सकती है, अन्यथा रद्द भी किया जा सकता है।
1: जी शर्मा जी, ये बताइए इन स्कीम्स के अंतर्गत पीड़ित मुआवजे के लिए आवेदन कैसे कर सकता है?
0: पीड़ित को मुआवजा देने के लिए ट्रायल कोर्ट में सेक्शन 396 सब सेक्शन 2 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो पहले हमारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था जो उसमें संशोधन करके और अब जो नया कानून हमारा प्रोसीजर के लिए आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धारा 396 सब धारा 2 के अंतर्गत रिकमेंडेशन कर सकता है ट्रायल कोर्ट, या फिर पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में मुआवजा लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, जब प्राथमिकी दर्ज होती है तो हर केस में जहां मुआवजा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है वहां पुलिस द्वारा मुआवजा प्राप्त करने में सहायता दी जा सकती है। और तीसरा तरीका यह है कि फैसले के समय यदि कोर्ट को लगे कि पीड़ित को मुआवजा जो दिया जा चुका है उसमें पुनर्वास के लिए काफी नहीं है, उसको रिहैबिलिटेशन के लिए अगर ट्रायल कोर्ट को जो समय कोर्ट उस केस को ट्राई कर रहा है अगर उनको यह लगता है कि जो अभी तक मुआवजा दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है तो कोर्ट DLSA से मुआवजा बढ़ाने की सिफारिश भी कर सकता है।
1: जी, मुआवजा आवेदन के कितने समय के भीतर मिल जाना चाहिए?
0: मुआवजा आवेदन के 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान है।
1: और ये मुआवजा तय कौन करता है?
0: जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास कंपनसेशन यानी मुआवजा की कोई एप्लीकेशन आती है तो उसमें देखा जाता है कि क्या प्रार्थी इसका पात्र है। यदि व्यक्ति विक्टिम यानी पीड़ित है तो उसकी एप्लीकेशन को जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस कमेटी के सभी सदस्यों की सहमति से यह तय होता है कि पीड़ित को कितना मुआवजा मिलना चाहिए।
1: इन स्कीम्स में मुआवजे का भुगतान कौन करता है?
0: जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तय किए गए मुआवजे में फंड्स की डिमांड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से की जाती है। राज्य सरकार इन स्कीमों के अंतर्गत प्रतिकर भुगतान के लिए फंड्स राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देती है। ये अकाउंट मेंबर सेक्रेटरी सालसा द्वारा ऑपरेट होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डिमांड किया गया फंड लर्नेड मेंबर सेक्रेटरी सालसा द्वारा रिलीज किया जाता है।
1: मुआवजा तय करते समय किन किन मापदंडों का ध्यान रखा जाता है?
0: मुआवजा तय करते समय दोनों स्कीमों में दिए गए स्केड्यूल को ध्यान में रखा जाता है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के स्केड्यूल में सिर्फ मिनिमम अमाउंट दिया गया है, जैसे कि हत्या के लिए कम से कम 2 लाख रुपए और बलात्कार के केस में पीड़ित के लिए 3 लाख रुपए, इस शेड्यूल में ऊपरी सीमा नहीं दी गई है। जबकि कंपनसेशन टू वुमेन्स विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिए गए हैं, जैसे हत्या या मृत्यु में 5 लाख से 10 लाख रुपए और बलात्कार के केस में पीड़ित को 4 से 7 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। इसी तरह अन्य अपराधों के पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमेटी मुआवजा तय करते समय कुछ और मापदंडों को भी ध्यान में रखती है, जैसे अपराध की तीव्रता, मेडिकल एक्सपेंसेस, शिक्षा का नुकसान, क्या पीड़ित का रोजगार अपराध के कारण छूट गया है, क्या पीड़िता अपराध के कारण गर्भवती हो गई है, क्या उसे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD तो नहीं हो गई, क्या पीड़ित अपराध के समय HIV पॉजिटिव तो नहीं हो गया, अपराध के कारण कोई शारीरिक अक्षमता तो नहीं हो गई, क्या पीड़ित को पुनर्वास की जरूरत है, क्या कोई अन्य कारण जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को ठीक लगे। इन सब बातों को मद्देनजर में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट

0: इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही इसका प्रावधान है। यदि पीड़ित को डीएलएससी का फैसला मान्य नहीं है, वह स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में 90 दिन के अंतर अपील कर सकती है, कोई भी पीड़ित या पीड़िता।
1: जी, यदि किसी अन्य अथॉरिटी या किसी अन्य योजना के अंतर्गत पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है, तो क्या फिर भी पीड़ित को इन स्कीम्स में मुआवजा मिल सकता है?
0: यदि पीड़ित व्यक्ति को किसी और विभाग द्वारा किसी अन्य स्कीम के तहत मुआवजा दिया गया है, तो उसे इन स्कीमों के अंतर्गत मुआवजा नहीं मिलेगा, यदि मिला हुआ मुआवजा इन स्कीमों के अंतर्गत मिलने वाले मुआवजे से अधिक हो। परंतु यदि कम हो, तो बकाया राशि मुआवजा के रूप में दी जा सकती है।
1: अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में मैं श्रोताओं को यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने आसपास देखें, यदि आपको इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी मिलता है, तो उसे हमारे धर्मशाला स्थित कार्यालय में फोन नंबर 01892222370 मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा 01892222370 फोन नंबर पर संपर्क करने की या फिर हमारे नालसा ऐप से ऑनलाइन अप्लाई करने की सलाह दे सकते हैं, ताकि किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद हो सके।
1: श्रोताओ, आज के कार्यक्रम कानून की बात में हमने जाना कि किस प्रकार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना अपराध से प्रभावित व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को आर्थिक सहायता और न्याय पाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। अक्सर जानकारी के अभाव में लोग अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता से वंचित रह जाते हैं। हमारा प्रयास यही है कि कानून की ये बातें आप तक सरल भाषा में पहुंचें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप स्वयं और दूसरों की मदद कर सकें। हम श्री आर मिहुल शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी सहजता से इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की। धन्यवाद।
2: आकाशवाणी शिमला और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे कानून की बात कार्यक्रम। विषय था नालसा की यौन उत्पीड़न अन्य अपराधों की महिला पीड़िता और उत्तरजीवियों के लिए पीड़ित मुआवजा योजना 2019। विशेषज्ञ थे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री आर मेहुल शर्मा। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
4: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
5: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
4: जी डॉक्टर साहब,
5: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
6: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश जनहित में जारी।
7: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
8: ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसका पेट भरा हो। ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसको सांस में तकलीफ है। और अब जानती हूँ, अगर खांसी जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज तो बिल्कुल नहीं, तुरंत इसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाऊंगी। निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
9: हो गया इंतजाम।
10: किसका? गुड्डी की फीस का।
9: दिखा।
10: 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
9: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
11: RBI कहता है,
12: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
13: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है, और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
14: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
13: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से

0: का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
1: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। फिल्म दिल चाहता है से कार्यक्रम का ये पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
2: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th से 6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th से 8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
3: पापा जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
4: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
5: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं। तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
6: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये ग्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, सुबह के 9:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: श्रोताओं, आप जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला सुन रहे हैं। आज चर्चा का विषय है आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर और आज हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक प्रोग्राम में शामिल हैं, शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। शुभमोय, अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में।
2: बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए।
3: धन्यवाद सोनू जी।
1: अनिल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो 12 वर्ष गए हैं, इसमें जिस तरह का आर्थिक सुधार हुआ है, खासकर करों की अगर हम बात करें, जो अप्रत्यक्ष करों में जिस तरह के कहें कि रेवोल्यूशनरी एक बदलाव आया है, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में आया, उसे आप कितना मील का पत्थर मानते हैं?
3: हमें अगर इसको समझना है, जो सुधार आर्थिक व्यवस्था में किया है सरकार ने, तो आपको 1991 जाना पड़ेगा, जबकि जो हमने रिफॉर्म्स, देश ने रिफॉर्म्स अंडरटेक किए उस वक्त, तो वो था, उसका मुद्दा था कि भारत सरकार क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बड़ा इसमें जो एग्जांपल था वो था डीलाइसेंसिंग, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एग्जिट करना था काफी सेक्टर से। अब आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, जो पिछले 12 साल में जो किए हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें है कि ये नया जनरेशन रिफॉर्म्स जो है, इन्होंने सरकार का फंक्शनिंग ही बदल दिया। तो पहला था कि सरकार क्या करेगा, अब सरकार कैसे फंक्शन करेगा, वो ही है फंडामेंटल डिफरेंस। तो उसमें जो जीएसटी है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, कि ये एक टैक्स था जीएसटी, जब मतलब 2001 से इस पे चर्चा चल रहा है, उससे पहले से, लेकिन किसी सरकार ने इसको कभी इम्प्लीमेंट करने का मतलब राजनीतिक साहस नहीं दिखाया और एक राजनीतिक कंसेंसस नहीं जुटाया। इसमें अरुण जेटली जी को मतलब याद करना चाहिए, वो स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने एक इसको एक एंकर किया, एक लीडरशिप किया। और इस टैक्स में जो सबसे बड़ा मतलब जो एक लिसनर जो समझ सकता है बड़ी आसानी से, ये इन्होंने देश को एक आर्थिक लेवल पे यूनिफाई कर दिया, एक इकोनॉमिक एंटिटी यूनिटी बना दिया। पहले था देश में, क्योंकि अलग अलग कर के व्यवस्था थे, तो हर स्टेट का एक अलग होता था, तो 38 सॉवरेन टेरिटरी से सामानों को जाना पड़ता, तो आप सोचिए कितना फ्रिक्शन होता था, कितना इनएफिशिएंसी होता था लॉजिस्टिक्स, मतलब आप तमाम चीजों में देखते हैं अड़चन कैसे। तो इन्होंने 17 मेजर सेंट्रल और स्टेट टैक्स और 13 सेस को एक करके जीएसटी बनाया। तो ये मतलब देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, दोनों को अगर मिलाएं, और इसका अभी हमें फल साफ नजर आ रहा है। अब जीएसटी रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ रहा है सिस्टम में। तो ये जीएसटी जो है, भारत का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म है पोस्ट इंडिपेंडेंस।
1: जी शुभमय, आपके पास आते हैं और इस पर ही आपकी भी हम प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही कहें कि क्रांतिकारी रिफॉर्म है। जैसा अनिल ने बताया कि नेशनल मार्केट बनी है, फॉर्मलाइज हुई है इकोनॉमी, आप बताएं कि जीएसटी क्यों आपके अनुसार एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है, इतने सालों से लंबित क्यों था, और अब जो जिस तरह से इसको उठाया गया और शुरू में जिस तरह की कुछ कहें कि एक भावना थी कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कैसे आप देखते हैं इसकी जर्नी को?
2: मैं काफी गौर से सुन रहा था अनिल जी के

0: काफी भावनात्मक जो विचार थे
1: जी
0: और मैं उससे कहीं बहुत बहुत तरीके से मैं उससे सहमत हूँ। जीएसटी अनिल जी जो बता रहे थे उसी उसी कड़ी में अगर चलते हुए हम देखें तो
1: जी
0: भारत में 2014 से चलते हुए अभी तक की जो श्रृंखला है उसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो सुधार का कार्यक्रम हुआ है वो है कैपिटल, लेबर, लैंड और कैपिटल, इन तीनों में अगर हम बांटे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो इनमें कैपिटल में सबसे ज्यादा सुधार की मात्रा आई है। और ये इसीलिए इसमें अगर हम देखें जीएसटी को तो जीएसटी अकेला ही नहीं है, जीएसटी के साथ अगर
1: जी
0: आप एक और बहुत जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण बदलाव जो लाया गया वो है तो बैंक्रप्सी बिल, इंडियन इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ बैंक्रप्सी इन इंडिया।
1: जी
0: ये बहुत बड़ा एक बदलाव था, एक तरफ कैपिटल तैयार करना, दूसरी तरफ कैपिटल जो बदलाव आएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, ये दोनों मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण पदक्षेप थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ कि सरकार लोगों के पास जो सीमित कैपिटल अवेलेबल है, संसाधन अवेलेबल है, वो मुआयना कर रहे थे। वो चीज पहले संभव नहीं था। अभी क्या हुआ कि जीएसटी और आईबीबीआई दोनों एक साथ में, एक तरफ तो लोगों के लिए सुविधा हो गया कि भाई हम अगर हमारी कोई बिजनेस चलते हुए बिजनेस में कोई अड़चने आ गई, कोई बिजनेस को बंद करने की जरूरत पड़ी तो वो एक सिर्फ रोजमर्रा का इंपेयरमेंट ऑफ कैपिटल के हिसाब से देखा जाएगा और उससे मैं जल्दी से उससे निपट के मैं आगे का प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। और आप अगर देखें स्टार्टअप्स की हमारी इतनी जो तादाद बनी है वो इसी भरोसे पे बनी है कि स्टार्टअप में अगर चलते हुए किसी जगह पे स्टार्टअप नहीं चला और होता ही है
1: जी
0: तो वो अचानक लिक्विडेशन वगैरह में उनको कोई अड़चने नहीं आता है। ये एक बहुत बड़ा
1: जी
0: मील का पत्थर है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में अगर हम जीएसटी की बात करें तो वो उसी श्रृंखला में कि टैक्स स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही सरल सुविधाजनक सिस्टम बन गया है। भारत में अगर हम बहुत सारे जो इसके बाद के जो बदलाव आए हैं वो बदलाव इन दोनों से जुड़े हुए हैं कि इन दोनों को एक बेस बनाकर फिर आगे लोगों को भरोसा आया है, रुचि आया है कि भाई वो कैपिटल लेकर कोई नया बिजनेस, कोई नई संभावनाओं के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी
0: जहां तक आपके सवाल थे कि ये क्यों नहीं बना का सबसे बड़ा चीज था मंशा, और उसका वजह यह है कि हम जीएसटी किस पे ला रहे थे। जीएसटी एक कड़ी में है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कड़ी के अंतर्गत होके आया और तभी जाके जीएसटी बना। 2017 में ये जीएसटी का प्रक्रिया शुरू हुआ और जैसे आप देखें कि सालों साल चलते हुए वो जीएसटी एक एक करके उसमें जो अड़चने थे वो सिंप्लीफाई किए गए। तो उसमें भी जैसे हर साल में जो मीटिंग होता है, और अगर वो जो मीटिंग शुरुआत में हुए थे कई सारे मीटिंग्स करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें थे, चुनिंदा सवाले थे जिनको हल करना सारे राज्यों को मिलके और केंद्र के साथ मिलके तो उसका निपटाना जरूरी था। तो इसलिए ये किसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन मान सकते हैं।
1: जी
0: जी
2: डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।
1: हम देख रहे हैं हर महीने जब जीएसटी कलेक्शन की फिगर्स आती हैं तो बहुत रोबस्ट आती हैं, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है। सो आपको लगता है कि अब जैसा आप कह रहे हैं कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है सरकार का, तो लोग टैक्स इवेजन से भी अब बच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसमें टैक्सेस पे करने में वो अपने आप को एक तरह से कह रहे हैं कोऑपरेशन का एक भावना से टैक्सेस टैक्स सिस्टम में शामिल हो रहे हैं।
3: बिल्कुल सोनू, आपने सही मुद्दा पकड़ा है। मैं आपको भारत के आर्थिक इतिहास में बहुत साल पहले ले जाता हूँ। 1960-1970 में इनकम टैक्स जो होता था 90% के ऊपर होता था, आई थिंक 97% होता था। तो आप खुद ही सोचिए, जो इंसेंटिव था टैक्स इवेजन था, टैक्स अवॉइडेंस नहीं था। उसमें दो ये दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। इवेजन में मतलब आप टैक्स पे करना नहीं चाहते, आप छुपा के आप इनकम छुपाते हो। अब जीएसटी जब आया ना, तो आपको जब टैक्स क्रेडिट मिला, अब जीएसटी का एक्चुअली समझना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बेसिक पॉइंट क्या है। ये जीएसटी पहले जो होते थे इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज वगैरह, वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे था। अब जो है पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे टैक्स लगता है, तो मतलब उसके साथ में जो भी टैक्स पे करता रहेगा रास्ते में उनको क्रेडिट मिलेगा,
1: जी
3: तो वो क्रेडिट आपके खर्चे से कम होगा, तो आपका उतना मार्जिन रहेगा, राइट? जो पहले होता था वो टैक्स बढ़ते जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, जो कंज्यूमर लेवल पे फाइनली आता था बहुत ही इम्पैक्ट ज्यादा होता था। तो एक तो टैक्स का इंसिडेंस और इम्पैक्ट कम हुआ, दूसरा क्योंकि आपने टैक्स क्रेडिट देना शुरू किया तो

0: कंपनीज को इंसेंटिव रहा कि जो इवन छोटे मध्यम वर्ग एमएसएमई, आपने जो आंकड़ा दिखाया ना 60 लाख से 1,70,000 करोड़, तो ये इसमें ज्यादातर एमएसएमई है, तो इनका भारत में कुछ आई थिंक 65,000 कुछ एमएसएमई है, मेरे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो इनकी जो रजिस्ट्री हुई है ना इनके कारण बड़ा है, तो इनकी इंसेंटिव रही। पहले ये अवॉइड करते थे सिस्टम में आने से, कैश का जो ट्रांजैक्शन करते थे, तो आपको याद है नोटबंदी में जो मतलब हुआ था 2016 में, तो उसका मुद्दा यही था कि इसके कारण ब्लैक मनी जनरेट होता है। तो इसके जो फायदे है ना, आपने ट्रांसपेरेंट रेजीम बनाया, फिर आपने रेट सेट कर दिया, जो रेगुलेटरी ओवररीच है, पहले एक्साइज इंस्पेक्टर आपके फैक्ट्री के दरवाजे पे पहुंच जाते थे, आज उनको कोई कारण बताना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा अगर वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जो इम्पैक्ट, जो एक जो आपने बोला कंप्लायंस, वो एक वॉलंटरी कंप्लायंस रहा है, मतलब उद्योगों में एक इंसेंटिव है कि हम टैक्स कंप्लायंट रहे, हमें कम झमेले हैं, सारा ऑर्गेनाइज्ड है। और इसका एक सब टेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये जो रिसीट होते हैं ना, ये पेमेंट रिसीट्स वगैरह जो कैश रिसीवेबल्स होते हैं कंपनी के बुक्स पे, आजकल जो फिनटेक्स आ रहे हैं, जो
1: जी
0: अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने इसको और लिबरलाइज किया है क्रेडिट पॉलिसी में, इस अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में आपके जो ये रिसीवेबल्स हैं इसके बल पर आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको
1: जी
0: कोलैटरल मतलब घर फैक्ट्री गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी लोन के लिए।
1: जी
0: तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबटेक्स है। तो जीएसटी जब हम देखते हैं ना, एक फाइनल पॉइंट ही नहीं देखना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, इसके जो फायदे हैं अनेकों फायदे हैं।
1: शुभम भाई, आपके पास आते हैं जो एक कर डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो एक ऐसी चीज है जिस पर हर नागरिक की नजर होती है जब बजट भी आता है। तो इनकम टैक्स रिफॉर्म्स जो हुई हैं पिछले 12 वर्षों में और हालिया जो रिफॉर्म्स हुई हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? जो फेसलेस असेसमेंट है या जिस तरह से इस नई जो कर प्रणाली आई है जो ऑप्शनल थी और जिसमें आपका रेट लोअर है लेकिन एग्जेम्पशंस नहीं है, तो ये जो पूरी जो एक जो बदलाव है उसके क्या क्या पहलू आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से?
2: देखिए, इनकम टैक्स आदतन एक टैक्स ऑन लेबर है कि लोग जो परिश्रम करते हैं उसके ऊपर टैक्स है। तो
1: जी
2: निश्चित ही अगर ऐसा टैक्स अगर हो तो इस टैक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोगों को परिश्रम का जो एफर्ट का जो रिवॉर्ड है वो लगे कि सरकार के पास ही जा रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो पिछले साल जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बदलाव लाए टैक्स रेट्स में, 12 लाख तक के इनकम को उन्होंने इनकम टैक्स से रियायत दे दी, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये इनकम टैक्स में जनरली बदलाव बहुत जल्दी नहीं किया जाता है, 5 साल 6 4 साल वगैरह के अंतराल में किया जाता है। और लेकिन हर बारी वित्त मंत्रियां थोड़े थोड़े करके इस टैक्स में कुछ कुछ मतलब जैसे कहते हैं लोगों के लिए लुहाने बनाते थे, इन्होंने एक झटके में इसको उठा के 8 लाख से उठा के 12 लाख कर दिए।
1: जी
2: अपने आप में ये बहुत बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया कि भाई इतना तक के इनकम, 12 लाख भारत जैसे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पर कैपिटल इनकम के हिसाब से अगर देखें तो ज्यादातर क्या ओवरवेलमिंग परसेंटेज ऑफ लोग जो इनकम कर रहे हैं सैलरी से मिल रहा है वो 12 लाख के सीमा रेखा के अंदर आ जाते हैं, और बाकी डिडक्शन वगैरह लेकर और भी उसके ऊपर थोड़ा सा 12,75,000 का पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही मूलभूत बदलाव था कि कॉन्फिडेंस इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर।
1: जी
2: दूसरी बात जिसके आपने अपने जो प्रसंग उठाया वो था फेसलेस असेसमेंट। ये फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई इनकम टैक्स आप दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है, और वो ही बहुत बड़ा एक बदलाव था कि धीरे धीरे चलते हुए अभी इनकम टैक्स को किसी जगह पे जाके टैक्स देने का संभावना है ही नहीं, किसी सरकारी कर्मचारी से आपकी मुलाकात होगी ही नहीं, क्योंकि टैक्स आप जो भरेंगे और टैक्स के जो फॉर्म आएंगे वो प्री सेट टैक्स फॉर्म आ जाएंगे। यानी कि मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मेरा टैक्स क्या है, कैलकुलेशंस अपने आप में उसी में ही प्रीफिल फॉर्म्स में आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने का भी जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर देखने की जरूरत नहीं है, उन सारे जगह से नंबर्स को समेट कर प्रीफिल टैक्स फॉर्म आ जाता है, और उसमें कहते हैं कि इतना टैक्स आपका हुआ, अगर आपको सही लगता है तो यस, अगर नहीं हुआ तो फिर आप उसमें बदलाव कीजिए। तो
1: जी
2: ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर क्या अगेन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 90% ज्यादा लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने की जरूरत नहीं है, टैक्स फॉर्म पहले से भर के आ रहा है और उनके सैलरी के साथ मैच्ड है, बस अब इसको यस कर दो और आगे चलते बनो। तीसरा चीज जो
1: जी
2: किया गया वो है फेसलेस असेसमेंट, यानी कि बाकी जो लोग जिनको टैक्स में कुछ बदलाव

0: कि उन्हें लग रहा है कि ये जो टैक्स पे करने के लिए मुझे कहा जा रहा है पेमेंट करने के लिए, उसमें मेरी कुछ आपत्ति है। तो उसमें भी सबसे बड़ा चेंज कर दिया गया है कि ये नहीं कि आप बॉम्बे में बैठे हैं तो आपके बॉम्बे के ही इनकम टैक्स ऑफिसर आपको पकड़ेंगे या आपसे बात करेंगे, वो चला गया है कहीं और उनसे आपकी फिर से जो वार्तालाप होगी वो ट्रेन या प्लेन से आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वो दूर में कहीं और पे बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं और उनसे भी आपकी जो डिस्कशन होगी वो पूरी ऑनलाइन। यानी कि जो पूरा टैक्सेशन प्रोसेस है डायरेक्ट टैक्स का,
1: जी
0: वो इतना इम्पर्सनल कर दिया गया कि लोगों को इस बारे में
1: जी
0: सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए आप जब देख रहे हैं, आप जो नंबर का जिक्र किए कि इतना ज्यादा नंबर्स पे लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स फिल फाइलर्स का नंबर आ गया है, वो
1: जी
0: इसीलिए कि ये प्रोसेस इतना ही ऑटोमेटिक बन गया है कि इस प्रोसेस में ज्यादातर लोग शायद याद भी नहीं रखते कि हमने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। और इससे फायदा क्या हुआ है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नागरिक के लिए जिंदगी आसान हो गया है, दूसरा सरकार के लिए भी ट्रैकिंग की इनकम टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स में एक जो रिटर्न आएगा वो कितना किस परसेंटेज से बढ़ेगा, तो अपने बजटिंग के में ये एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा हो जाता है कि उनको पता है कि इतना सारा जितने सारे टैक्स में देने वाले लोग थे, इनके खेमे में आने वाले थे, उन सबको उसमें डायरेक्टली इंक्लूड कर लिया गया है।
1: जी
0: तीसरा चीज जो बहुत बड़ा चीज है वो ये है कि टैक्स रिटर्न होने के वजह से फॉर्मलाइजेशन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया है। छोटे छोटे इनकम सैलरीड वाले जो कंपनियां, जो एसएमई वाले इंटरप्राइजेस हैं,
1: जी
0: उनके लिए भी इनकम टैक्स देना चूंकि बहुत ही इजी है, इसीलिए लोगों को प्रवृत्ति हो गया कि अभी इनकम टैक्स और जीएसटी इन सारी चीजों में कोई आपत्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे सामने आ जाते हैं।
1: जी
0: अगर हम साथ में क्यूआर कोड को, अगर उसके साथ में, अगर हम तीसरा चीज तीसरा पिलर को अगर उसके साथ में लाएं,
1: जी
0: यूपीआई का जो सिस्टम है, तो ये तीनों मिलाकर जो फाइनेंशियल सिस्टम एक इतना बड़ा, एक 1.5 बिलियन लोगों की जो एक इतनी बड़ी तादाद है, इन सब के लिए
1: जी
0: एक जिसे कहते हैं फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बन गया है, जिसका संभव क्या, इनफैक्ट मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ दुनिया में इसका कोई तुलना ही नहीं है कि
1: जी
0: इतने बड़े लोगों को इतने कम समय में इतने बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क के अंदर शामिल करना, उनके लिए एक आइडेंटिटी देना और साथ में उनके लिए ये भरोसा देना कि ये चीज आपके लिए काम का है।
1: अनिल जी, अगर आपके पास आए, आपको लगता है एक और भी एस्पेक्ट है कि भयमुक्त हो गया है अब, जो करों का जो एक डर होता था वो खत्म हो गया है और ट्रांसपेरेंसी आ गई है पूरे सिस्टम में?
2: काफी हद तक सोनू आ गया है, लेकिन जो एक माइंडसेट है जो
1: जी
2: हमारे रेगुलेटर्स में है वो उसको बदलना बहुत आवश्यक है। वो टाइम लगेगा, अभी वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ईरा का अभी भी ट्रॉमा इनके दिमाग में है। तो रेगुलेटरी ओवररीच जो है वो हमें जीएसटी में भी दिखते हैं, मतलब एनेक्डोटली जो दिखता है इनकम टैक्स में भी दिखता है। तो इसको और भी ट्रांसपेरेंट करना होगा, लेकिन वित्त मंत्री इसके, शी इज अवेयर ऑफ इट। उन्होंने
1: जी
2: हाल में इनफैक्ट कुछ चेंजेस लाने का उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, लेकिन पिछले बजट में नहीं लेके आ पाई वो। तो मुझे लगता है अगले बजट में वो ट्रांसपेरेंसी के लिए और चेंजेस लाएंगी, तो डेफिनेटली वो बदलाव तो आया ही है।
1: आइए सुनते हैं जीएसटी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट।
3: जीएसटी लागू होने से पहले देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था कई अलग अलग केंद्रीय और राज्य करों में बंटी हुई थी। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स और मनोरंजन कर जैसे कई कर अलग अलग स्तरों पर लगाए जाते थे। राज्यों के बीच टैक्स की दरें और नियम भी अलग थे। इसका असर कारोबार की लागत, सामान की कीमत और देश भर में व्यापार की गति पर पड़ता था। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी टैक्स पर टैक्स, यानी एक चरण पर चुकाए गए टैक्स का बोझ अगले चरण की कीमत में शामिल हो जाना। जीएसटी पर काम की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। वर्ष 2006 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक सहमति बनने में कुछ समय लगा। वर्ष 2016 में संविधान के 101वें संशोधन के बाद जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। इसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच दरों, नियमों और राजस्व से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श भी हुआ। आखिरकार 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू हुआ। इस वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार माना गया। जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के 17 अलग अलग करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था में शामिल किया। जीएसटी की खासियत यह रही कि इसमें टैक्स का भुगतान केवल उत्पादन या बिक्री के अलग अलग चरणों पर नहीं, बल्कि वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर आधारित किया गया। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था

0: ने कारोबार की अलग अलग कड़ियों में टैक्स के दोहराव को कम करने में मदद की। शुरुआत में नई डिजिटल व्यवस्था को अपनाना कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन समय के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, ई वे बिल और ई इनवॉइस जैसी व्यवस्थाओं ने टैक्स अनुपालन को अधिक डिजिटल और व्यवस्थित बनाया। इसी बदलाव का असर टैक्स बेस पर भी दिखाई दिया। वर्ष 2017 में जीएसटी के करीब 66.5 लाख करदाता थे। मई 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 1.65 करोड़ हो गई। इसी अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 2017-18 के करीब 7.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में लगभग 22.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी जीएसटी ने केवल टैक्स जमा करने का तरीका नहीं बदला, इसने देश के कारोबार को एक साझा बाजार से जोड़ने, अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक बनाने और टैक्स अनुपालन को डिजिटल करने की दिशा में भी बड़ा बदलाव किया। आज जीएसटी की व्यवस्था लगातार विकसित हो रही है। दरों में बदलाव से लेकर प्रक्रियाओं के सरलीकरण तक इसका उद्देश्य अब केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि कम जटिलता, ज्यादा पारदर्शिता और आसान अनुपालन वाली व्यवस्था तैयार करना है।
1: तो जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि पॉलिसी जो एनवायरनमेंट होता है, इट इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे जैसे सिचुएशंस इवॉल्व होती हैं तो पॉलिसी को भी इवॉल्व होना होता है। और जैसे कि अभी हमने देखा कि जीएसटी की जो लेटेस्ट मीटिंग, उसमें प्रोसेस रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्लैब्स तो कम हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन प्रोसेस रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उस पर अभी भी कार्य हो रहा है। एक और जो एरिया है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, अगर आपके पास आए शुभ मोए, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिफॉर्म्स हैं, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें जो रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि जो बिजनेसेस हैं उनमें एक सुगमता आए व्यापार में और उस साथ ही साथ सेफगार्ड भी हो, इसको आप कैसे देखते हैं? कई चरणों में ये सरकार ने इन 12 वर्षों में किया है, सो ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ऐसे समय पे जब बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जरूरी हो गया है?
2: फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो बदलाव आया है
1: जी,
2: उसके साथ एक और बदलाव साथ में आया है। इनफैक्ट मैं दो चीजों का जिक्र करूंगा
1: जी।
2: एक आया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये एक साथ में एक मूलभूत चेंज, और इसके साथ में FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये तीनों का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि तीनों एक दूसरे को इम्पेक्ट करते हैं
1: जी। जी,
2: सरकारी मूलतंत्र का ये सिक्वेंस रहा था कि हम इस तरीके से बदलाव लाएंगे कि मोटा मोटी जो भी शख्स नहीं, मैं कहूंगा कंपनी, या फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो समांतरल होनी चाहिए। यानी कि के पहले, अब देखिए जिसका जिक्र अनिल जी पहले कर रहे थे कि एक पुरानी माइंडसेट की, ये पुरानी माइंडसेट फॉरेन एक्सचेंज के मामले में बहुत ज्यादा था और हमने बहुत सारे हॉरर स्टोरी सुने थे कि फॉरेन एक्सचेंज को लेकर कंपनियों में बहुत सारे झमेले, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रेड्स, इधर इनफैक्ट स्टेट लेवल में भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के बहुत सारे अनुशासन वगैरह वगैरह, इन सब मिलाकर एक अस्त व्यस्त हालत था फॉरेन एक्सचेंज को लेकर। इसमें प्रगति लाने में सरकार ने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बदलाव जो लाए हैं वो ये है कि सारे कंपनियों को उन्होंने एनकरेज किए हैं कि आप या तो कंपनी यानी कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज के तहत आप रजिस्ट्रेशन हो जाइए, और अगर ना भी हो सके तब भी अगर आप सेक्शन 8 कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के तहत ही आता है, लेकिन वो एक जिसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी है कि आपके प्रॉफिट लॉस कुछ का दायरा नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक कंपनी, तो आपके लिए वही मोटा मोटी रूल्स लागू होंगे जो बड़े कंपनियों के लिए
1: जी।
2: तो इससे फायदा क्या हुआ है कि सबके लिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट सिस्टम क्लियर हो गया है, और ये चीज FCRA में भी काफी हद तक पुश किया गया है कि जो कंट्रीब्यूशंस आएंगे फॉरेन एक्सचेंज के, जो फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए कामकाज होंगे, वो शुड बी अबव बोर्ड, यानी कि वो दिखना चाहिए कि किस लिए किस तरीके से आ रहे हैं। और इसकी जरूरत क्यों है, अगर हम दुनिया की किसी भी बड़े देश को अगर हम देखें इस वक्त, तो एक बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है, और वो उथल पुथल क्यों चल रहा है, क्योंकि करेंसी, दूसरे देशों से आने वाले पैसे, उसके चलते राजनीतिक इम्पैक्ट, दबा दबोच वगैरह, बहुत सारी चीजों की प्रक्रिया है। उन सभी चीजों के चलते हुए सारे बड़े बड़े देशों में इस पर निगरानी रखने की नया नया सिस्टम्स जो इनकोऑर्डिनेटेड है उनको लाया गया, और उसको लाने के लिए क्या किया गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अंतर्जातिक एक सिस्टम है, इसमें भारत 2014 में मेंबर बन गया है, और भारत

0: काफी जिसे कहते हैं इलस्ट्रियस मेंबर बन गया है इसका। ये ओईसीडी का पहले होता था, सिर्फ ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक क्लब था
1: जी
0: जिसमें भारत पहला नॉन ओईसीडी मेंबर है जो इस एफएटीएफ के मेंबर बने, फुल मेंबर बन गए। और फुल मेंबर होने की वजह से क्या हुआ कि भारत की जो एक उन देशों के बीच में विश्वास आया कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत है, ये एक बहुत बड़ी चीज है।
1: जी
0: दूसरा, भारत का जो ट्रीटमेंट है वो दूसरे देशों के लिए, खासकर ग्लोबल साउथ के बाकी सारे देशों के लिए एक तुलनात्मक चीज बन गया है कि इस तरीके से किया जा सकता है। ये चीजें सब मिलाकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में जो एक सुधार किया गया है वो सब मिलाकर बन गया है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब
1: जी
0: नेचुरली कि ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेंगे तो उसमें होता ही है कि कुछ किसी ने किसी को इसमें मुश्किल पहुंचती है, वो लाजमी। लेकिन ये जो पूरे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर कोई दो राय नहीं। और
1: जी
0: इसलिए आप देखेंगे इसके साथ ही एक और चीज किया गया था जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में बहुत काम में आया, वो
1: जी
0: है शेल कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज हमारे देश में होते थे जो सिर्फ नाम से होते थे और
1: जी
0: एक एक एड्रेस में 200 300 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन होती थी। इन सारी कंपनीज का बेसिकली काम था फॉरेन एक्सचेंज को लाना और लाकर कोई ना कोई गलत काम में इसको इस्तेमाल करना। आपको
1: जी
0: याद होगा ट्रेवल वगैरह में बहुत सारे टाइम में हमने जब इस पर जब बारीकी से जांच हुआ है तो दिखा गया है कोई ना कोई शेल कंपनी के थ्रू से ही ये सारे पैसे आए। ये सारी चीज जड़ से उखाड़ने के लिए जो प्रक्रिया किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से,
1: जी
0: इससे बहुत बड़ा फायदा आया है कि अभी किसी भी सरकारी तंत्र के सिस्टम्स को इस बारे में पता चलता है, पूछ रहती है किस तरीके से उसको निपटा जाए उस पर वो खबर रख सकते हैं। जी
1: अनिल जी, एक और जो पहलू है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि विश्वास बना है बिजनेसेस को शामिल करने के लिए, जन विश्वास जो अधिनियम आया है 2023 में जिसमें डिक्रिमिनलाइज किए गए हैं 183 प्रोविजंस 42 सेंट्रल एक्ट्स में और उनको क्रिमिनल ऑफेंस से सिविल पेनल्टीज में बदला गया है जो माइनर और टेक्निकल लैप्सेज है, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है? और जो पुराने लॉज हैं उनमें लगभग 1500 जो सेंट्रल लॉज थे जो आउटडेटेड थे उनको हटाया गया है, ये भी क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है?
2: बिल्कुल सोनू जी, इनफैक्ट इसको इतनी देर हो गई यही मैं हैरान हूं। जो ये जो पुराने जो लॉ होते थे, अजीब अजीब किस्म के कानून होते थे जो अंग्रेज बना के गए, तो वो आज तक चलते आ रहे थे। तो उनको जैसे एक एक करके जो इसको हटाने का जो प्लान था, आप जान के हैरान होंगे, ये 1993 का है। जो स्वर्गीय विवेक देबरॉय थे ये उस टाइम IIFT में थे, इन्होंने एक एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और उसमें इन्होंने सारे जो लॉस थे ये जो हटाने हैं, तो 1993-94 में इन्होंने छापा था ये कमिटी का रिपोर्ट। और उसको मतलब ये सरकार जो है मोदी जी की सरकार जब आई, इन्होंने उसको उठाया और फिर उसको जो प्रोसेस रिफॉर्म लेवल पे पुश किया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो जो हमने डिस्कस किया कि जो माइंडसेट है
1: जी
2: जो एक मतलब बिजनेसमैन की ओर जो है एक एक अप्रोच है, वो उसमें तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो ये लॉस हैं अब इनको भी बदलना है। अब जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा कि रेगुलेटरी ओवररीच, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो ये ना भारत सरकार ना स्टेट लेवल सरकार इसका कोई मसले का हल तुरंत ढूंढ पा रहे हैं। इस पे कोशिश तो जरूर जारी है लेकिन इस पे और भी मेहनत करना है, क्योंकि हमारे जो ये उद्योगपति हैं खास करके मध्यम वर्ग में, इनको जो रेगुलेटरी जो हरासमेंट होता है इसके कारण फ्रिक्शन बढ़ता है। जब फ्रिक्शन बढ़ता है इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, मतलब तो ग्रोथ नहीं होता है।
1: जी
2: तो इसको हटाना एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी, नेशनल प्रायोरिटी बनाना चाहिए।
1: जी तो शुभमय, जो अभी अनिल जी कह रहे थे कि कांस्टेंट सिंप्लीफिकेशन प्रोसेसेस की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के थ्रू जिसका जिसके बारे में सरकार भी पूरी तरह प्रयासरत है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की हम बात सुनते हैं और डिजिटलाइजेशन से अलग अलग जो बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं, GST की तो हमने बात करी ही, आपको परमिट्स मिलने हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्रेडिट जो मिलता है ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो उसमें ईज आई है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको लगते हैं ओवरऑल जो बिजनेस है?

0: एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करने के लिए?
1: बिल्कुल सुनील जी, और इसमें अगर आप देखें कि अभी जो डिबेट चल रहा है एमडीआर चार्जेस को लेकर यूपीआई में, अगर आप इसको देखें तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। वो क्यों? क्योंकि एक समय था जब लोग कैश से ही कोई ट्रांजैक्शन करना नॉर्मल मानते थे, उसी में ही चलते थे।
0: जी
1: आज भारत की इतनी बड़ी जनता का तादाद यूपीआई के बनाए हुए
0: जी
1: क्यूआर कोड के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि उनको अभी लगता है कि ये चीज हट जाएगा तो हमारे लिए, हम ऐसे वापस पहुंच जाएंगे कहीं, और वो पहुंचना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं माइंडसेट का बदलाव है। अगर हम इसको
0: जी
1: देखें तो
0: जी
1: ये अविश्वसनीय है कि किस तरीके से लोग एक, मतलब लोग का कहना है कि ये एक रिफॉर्म है, और इस रिफॉर्म को हम अपना चुके हैं, इस पर हम बिल्कुल, इसमें हम लीन हो गए हैं और हम इस पे ही टिकना चाहते हैं। एमडीआर चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग बात है,
0: जी
1: वो उसके ऊपर तर्क हो सकता है, लेकिन एक इतना बड़ा चेंज कि जो गरीब से, और इस चेंज इसलिए मूलभूत है कि गरीब से गरीब आदमी भी कहता है कि नहीं, हम सबसे बड़ा ये जरा देखिएगा कि कहीं हमको इससे हटना पड़े, इससे
0: जी
1: हम हटना जाए।
0: जी
1: तो ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आप कह रहे हैं जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, वो इसका एक जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा मिसाल है। और इसमें सिर्फ क्यूआर कोड नहीं, अगर आप इसके नीचे देखें तो इसमें इंक्लूडेड है बैंक अकाउंट, यानी कि देश के सारी जनता एडल्ट जो है सबके पास बैंक अकाउंट है। अगर हम इसके नीचे जाए तो देखेंगे कि इसके नीचे सबके आधार का जो श्रृंखला है वो है। तो कुल मिलाकर ये एक फाइनेंशियल सिस्टम को बदल देने का इतना बड़ा एक, जिसे कहते हैं एक एक ठिकाना है, एक सिस्टम है, जिसको जिसका फिर से मैं वही कहूंगा कि इसका फ्रेंकली कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में।
0: जी
1: और ये चीज साथ में अगर आप देखें बाकी सारे चीजों में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी, बाकी क्षेत्र में भी इसी का ही जोर है, इसी का ही आवाज है कि भाई हमें भी इसी तरह का सुविधा चाहिए कि
0: जी
1: अगर इनकम टैक्स आराम से भर सकते हैं, अगर हम जीएसटी में कोई झमेला नहीं होता है, अगर पेमेंट प्रक्रिया अगर सुचारू ढंग से चलता है, जिस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, तो आपको याद होगा कि जैसे एक टाइम था कि स्मॉल कंपनीज को जब अपना कैश लेकर जाते थे बैंकों में, तो आए दिन खबर आती थी कि फलाने के जगह पे डाका लग गया है, यहाँ पे कुछ वो पैसे लूटपाट हो गया है। अब वो सारे खबरें, जिसे कहते हैं, इतिहास बन चुका
0: जी
1: है,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: वो पैसे लेकर जाते नहीं है,
0: बिल्कुल
1: वो जरूरत नहीं होती है।
0: बहुत
1: तो ये चीजें जो गांव, दूर दूर के गांव तक में भी ये इसका प्रक्रिया इतना बड़ा बन चुका है कि वहां पर तो खासकर इस चीज को लेकर ही लोग चलते हैं कि भाई पैसे लेकर कौन चलेगा।
0: जी
1: तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, स्तंभ है। अगर हम इसको अगर आगे देखें कि ये किस तरीके से बिजनेस को बदल रहा है, तो बिजनेस चलाने में जो परमिट्स हैं और जो प्रोसेसेस हैं वो सारे फिर इसी से ही जुड़े हुए बन गए हैं कि किसी बिजनेस को किसी चीज परमिट मिलने में काफी आसानी हो गई है। और हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि अभी भी बहुत सारी जगह पे, और वो शायद हमारी एक गलत, हमारी जो तरीका है कि हम फूड क्वालिटी कैसे रख रहे हैं, उसमें क्या चीज किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, उस पर जरूर निगरानी होनी चाहिए, उस पर
0: जी
1: लोगों को भरोसा आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि एक कंपनी जिनके नाम हमारे मुंह से एकदम जस बच्चा बच्चा भी यार बोल देता है, ये सारे कंपनियों का हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे अगर इस तरह का पेमेंट सिस्टम नहीं आ सकता। और इससे आज जुड़े हुए जो
0: जी
1: गिग इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए इतने मिलियंस की जो नौकरी है, ये पूरा ये सोच में भी नहीं आ सकता था अगर ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का बंदोबस्त अगर नहीं तैयार होता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभमोय अनिल, आप शामिल हुए इस कार्यक्रम में जनसेवा से देश सेवा, और आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सोनू जी।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर।

भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
5: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
4: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
5: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
4: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
5: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
7: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
8: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:50 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
9: जिंदगी के सपने तभी सच

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा निभा सकते हैं अहम भूमिका। युवाओं से निडर होकर आगे बढ़ने का भी किया आह्वान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के उच्च पर्वतीय स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का करेंगे शिलान्यास। हैदराबाद में चल रहे ग्रामीण भारतीय महोत्सव में चंबा जिले की जीआई टैग प्राप्त चंबा चप्पल बनी आकर्षण का केंद्र। प्रदेश सरकार इस माह 20वें एशियाई खेलों में पदक विजेता हिमाचल के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से करेगी सम्मानित। और प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ, अगले 24 घंटों में 4 जिलों में अंधड़ व बिजली गिरने का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नया व बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में एक विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि देश के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये दौर युवाओं का है और उनके नए विचार व कड़ी मेहनत भारत के साथ साथ दुनिया का भविष्य भी तय करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में आज अफसरों की कोई कमी नहीं है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में युवा अहम भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के उच्च पर्वतीय स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। इस स्वास्थ्य संस्थान के बनने से जिले में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: केलंग में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के उच्च पर्वतीय स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। इसके तहत भूमि पूजन, शिलान्यास और हिमालय पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके बाद पुलिस मैदान में वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन होगा। कार्यक्रम में केंद्र की वेबसाइट का शुभारंभ और स्मारक डाक आवरण का विमोचन किया जाएगा। इस केंद्र में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों, कठिन मौसम और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर शोध किया जाएगा। इससे लाहौल स्पीति सहित हिमालय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: जीआई उत्पादों को विरासत से बाजार तक ले जाने के लिए नाबार्ड ने कामगारों को एक बेहतर मंच उपलब्ध करवाया है। इसके लिए हैदराबाद में ग्रामीण भारत महोत्सव आयोजित किया गया है। 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के 25 जीआई उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें चंबा जिले की जीआई टैग चंबा चप्पल के कारीगर अनिल कुमार प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी भारत के पारंपरिक ज्ञान, हस्तशिल्प और क्षेत्र विशेष के उत्पादों की समृद्ध विविधता को दर्शाती है। अनिल कुमार ने कहा कि इस महोत्सव में प्रदर्शित की गई चंबा चप्पल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
3: चंबा चप्पल बनाने में जितनी मेहनत की जाती है, वो यहाँ के पार्थी देख रहे हैं, वो उसे लेने में काफी इंटरेस्टेड हैं। लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हर प्रोडक्ट को लेने के लिए इतनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।
0: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जा रही है। प्रदेश भर के शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही संयम, तपस्या और ज्ञान की देवी माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उबड़ने लगी है। इस दौरान माहौल भक्तिमय बना हुआ है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार 20वें एशियाई खेल में पदक विजेता हिमाचल खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए इस माह सम्मान समारोह का आयोजन करेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्मान समारोह में इन पदक विजेता खिलाड़ियों को 9 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी टीम की खिलाड़ी रितु नेगी, पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 1-1 करोड़, जबकि पुरुष मैराथन में रजत पदक विजेता सावन बरवाल को 2.5 करोड़, महिला मैराथन में कांस्य पदक विजेता सीमा कुमारी को 1.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा क्रिकेट में स्वर्ण पदक विजेता रेणुका ठाकुर को 1 करोड़ और जुड्डो में प्रतिभागिता के लिए खिलाड़ी इनुन गांबी को 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सिरमौर जिले के नाहन, सैनवाला, वर्मा पापड़ी, गुलरिया सड़क पिछले करीब 5 दिनों से भूस्खलन के चलते यातायात के लिए अवरुद्ध है, जिससे यहां आने जाने वाले हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: 8 अक्टूबर को गुलरिया ढांग के पास भारी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुई नाहन सेनवाला वर्मा पापड़ी गुलरिया सड़क यातायात के लिए अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। सड़क बंद होने से क्षेत्र की 6 पंचायतों के हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। मुख्य रूप से यहां शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और रोजाना औद्योगिक क्षेत्र जाने वाले कामगारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सड़क बहाली की कोशिशें लगातार जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना निराश्रित बच्चों के लिए सहारा बन रही है। शिमला जिला में इस योजना के जरिए पात्र बच्चों व युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल व आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध करवाकर सम्मानजनक भविष्य की नींव भी रखी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत जिला शिमला में विभिन्न समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के माध्यम से 0 से 27 आयु वर्ग के 257 बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिला में 12 बाल बालिका देखभाल संस्थानों में रह रहे 237 बच्चों को सामाजिक सुरक्षा के साथ त्योहार अनुदान, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वस्त्र तथा पौष्टिक आहार जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। यह प्रयास बच्चों और युवाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सहयोग देकर शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और सामाजिक पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि बीते कल अधिकतर क्षेत्रों में बारिश व ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट के चलते ठंड का दौर भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में आज अंधड़ चलने और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के भी आसार है। 15 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने की संभावना है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में बारिश बर्फबारी, शिंकुला में फंसे वाहन, 7 डिग्री तक गिरा पारा। पंजाब केसरी के शब्द है, लाहौल स्पीति के शिंकुला टॉप पर बर्फबारी, फंसे पर्यटक। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, अक्टूबर में मौसम कूल, 15 तक बारिश बर्फबारी के आसार। दिव्य हिमाचल ने खबर दी है, सीएम का ऐलान, कांगड़ा मंडी में खुलेंगे नए एनडीपीएस कोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा निभा सकते हैं अहम भूमिका, युवाओं से निडर होकर आगे बढ़ने का भी किया आह्वान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के उच्च पर्वतीय स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का करेंगे शिलान्यास। हैदराबाद में चल रहे ग्रामीण भारतीय महोत्सव में चंबा जिले की जीआई टैग प्राप्त चंबा चप्पल बनी आकर्षण का केंद्र। प्रदेश सरकार इस माह 20वें एशियाई खेलों में पदक विजेता हिमाचल के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से करेगी सम्मानित। और प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ, अगले 24 घंटों में 4 जिलों में अंधड़ व बिजली गिरने का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।
3: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए।

0: तक भरण पोषण संरक्षण
1: जानकारी लें अधिकार जाने
0: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी शिमला एफएम शिमला
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। सुरों की महफिल और यादों का सफ़र लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त प्रवेश। तो थाम लीजिए यादों की डोर और खो जाइए संगीत की सुरीली दुनिया में। तो फिर आइए शुरू करते हैं सुरों का ये सुनहरा सफ़र इस प्यारे से सॉन्ग के साथ। श्रोताओं फिल्म मौसम में सुनिए हंस राज हंस को। गीतकार हैं इरशाद कामिल और म्यूजिक दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना गीतों का कारवा का ये पहला गीत जिसे हमने लिया था फिल्म मौसम से। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोहरा से ये गीत जिसे आप सुनिए साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में। संगीतकार हैं विजुषा और गीतकार आनंद बख्शी।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: आइए श्रोताओं अब मिलकर सुनते हैं अगला ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म कोई मेरे दिल में है से। जिसमें आप सुनिए अदनान सामी और आशा भोसले को। म्यूजिक डायरेक्टर हैं निखिल विनय और लिरिक्स फैज अनवर के।

103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं गीतों का कारवा। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म फुकरे से ये गीत। जिसे गाया है सोना मोहापात्रा ने, गीतकार हैं मुन्ना धीमान।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म जहर से।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवा। श्रोताओं, समय हो रहा है 10:30। आइए अब मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला लोकगीत आप सुन रहे थे सुनील राणा की आवाज़ में। आइए अब मिलकर सुनते हैं शांति बिष्ट को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंजना देवी व साथियों को इस लोकगीत में। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं ये अगला लोकगीत। इसमें आप सुनेंगे मंजू चिश्ती को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पिंकी को इस प्यारे से लोकगीत में। आइए अब सुनते हैं हम निम्मो देवी को इस अगले पहाड़ी लोकगीत में।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 11 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: प्रकाश शिलान्यास करेंगे। इसके तहत भूमि पूजन शिलान्यास और हिमालय पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके बाद पुलिस मैदान में वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन होगा। कार्यक्रम में केंद्र की वेबसाइट का शुभारंभ और स्मारक डाक आवरण का विमोचन किया जाएगा। इस केंद्र में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों, कठिन मौसम और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर शोध किया जाएगा। इससे लाहौल स्पीति सहित हिमालय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि रामलीला मंचन केवल भगवान श्री राम के

0: जीवन पर आधारित एक मंचीय प्रस्तुति नहीं है, बल्कि ये सत्य, कर्तव्य, अनुशासन, त्याग और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है। वे कल सोलन स्थित नौणी विश्वविद्यालय में दिल्ली व देश के अन्य हिस्सों से आए स्कूली विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण रामायण के भव्य मंचन समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। इस मौके पर राज्यपाल ने युवाओं से भारत की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि आज देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो अपने मूल्यों का सम्मान करें, राष्ट्र के लिए कार्य करें और अपने ज्ञान की क्षमताओं का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें। जीआई उत्पादों को विरासत से बाजार तक ले जाने के लिए नाबार्ड ने कामगारों को एक बेहतर मंच उपलब्ध करवाया है। इसके लिए हैदराबाद में ग्रामीण भारत महोत्सव आयोजित किया गया है। 14 अक्टूबर तक चलने वाले चप्पल के कारीगर अनिल कुमार प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह प्रदर्शनी भारत के पारंपरिक ज्ञान, हस्तशिल्प और क्षेत्र विशेष के उत्पादों की समृद्ध विविधता को दर्शाती है। अनिल कुमार ने कहा कि इस महोत्सव में प्रदर्शित की गई चंबा चप्पल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
1: चंबा चप्पल बनाने में जितनी मेहनत की जाती है वो यहाँ के पारखी देख रहे हैं, वो उसे लेने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हर प्रोडक्ट को लेने के लिए इतनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।
0: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जा रही है। प्रदेश भर के शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही संयम, तपस्या और ज्ञान की देवी माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। इस दौरान माहौल भक्तिमय बना हुआ है। प्रदेश सरकार 20वें एशियाई खेल में पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए इस माह सम्मान समारोह का आयोजन करेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्मान समारोह में इन पदक विजेता खिलाड़ियों को 9 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी टीम की खिलाड़ी रितु नेगी, पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भाभा की एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी टीम की खिलाड़ी रितु नेगी, पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 1-1 करोड़, जबकि पुरुष मैराथन में रजत पदक विजेता सावन बरवाल को 2.5 करोड़, महिला मैराथन में कांस्य पदक विजेता सीमा कुमारी को 1.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा क्रिकेट में स्वर्ण पदक विजेता रेणुका ठाकुर को 1 करोड़ और जुड्डो में प्रतिभागिता के लिए खिलाड़ी इनुन गांबी को 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सिरमौर जिले के नाहन, सैनवाला, वर्मा पापड़ी, गुलरिया सड़क पिछले करीब 5 दिनों से भूस्खलन के चलते यातायात के लिए अवरुद्ध है, जिससे यहां आने जाने वाले हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: 8 अक्टूबर को गुलरिया ढांग के पास भारी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुई नाहन सेनवाला वर्मा पापड़ी गुलरिया सड़क यातायात के लिए अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। सड़क बंद होने से क्षेत्र की 6 पंचायतों के हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। मुख्य रूप से यहां शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और रोजाना औद्योगिक क्षेत्र जाने वाले कामगारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सड़क बहाली की कोशिशें लगातार जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि बीते कल अधिकतर क्षेत्रों में बारिश व ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट के चलते ठंड का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: ₹103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम महक पंजाब दी।

0: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
1: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
2: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महक पंजाब दी। श्रोतम बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को और अगला गीत आपको सुनवाते हैं अमरिंदर गिल की आवाज में।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY।

0: कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं महक पंजाब दी। जिसमें अगला पंजाबी गीत अब आप सुनेंगे रुपिंदर हांडा की आवाज़ में।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Why ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम महक पंजाब की का अंतिम गीत सुनिए सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर की इस प्यारी सी आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महक पंजाब दी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का।

लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं उमंग परिवार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है, ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्लेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायणलाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का। लिखते हैं, बहुचर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं विमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है, सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है, मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था। आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम इवरोन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं की

0: भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका उत्तर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है, जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं।
0: तो बच्चों ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
2: मुझे अच्छी लगती है।
3: मुझे बहुत पसंद है।
4: मुझे भी पसंद है।
5: मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
1: जी सर,
2: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: ठीक है,
1: ठीक है,
3: बहुत अच्छा लगा।
0: तो बच्चों कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो अब बच्चों मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
1: जी सर, तैयार हैं।
0: तो शुरू करते हैं कविता। हैं कई प्रदेश के,
1: हैं कई प्रदेश के,
0: किंतु एक देश के,
1: किंतु एक देश के,
0: विविध रूप रंग हैं,
1: विविध रूप रंग हैं,
0: भारत के अंग हैं,
1: भारत के अंग हैं,
0: भारतीय वेश एक,
1: भारतीय वेश एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: बोलियां हजार हैं,
1: बोलियां हजार हैं,
0: टोलियां हजार हैं,
1: टोलियां हजार हैं,
0: कंठ भी अनेक हैं,
1: कंठ भी अनेक हैं,
0: राग भी अनेक हैं,
1: राग भी अनेक हैं,
0: किंतु गीत बोल एक,
1: किंतु गीत बोल एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: एक मातृभूमि है,
1: एक मातृभूमि है,
0: एक पितृभूमि है,
1: एक पितृभूमि है,
0: एक भारतीय हम,
1: एक भारतीय हम,
0: चल रहे मिला कदम,
1: चल रहे मिला कदम,
0: लक्ष्य के समक्ष एक,
1: लक्ष्य के समक्ष एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो बच्चों कैसी लगी कविता?
1: मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छी तो लगी। तो अब बताइए, अभी हमने सुना हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के। क्या सुना हमने?
1: हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
0: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
1: भारत।
0: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
2: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
6: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है। असम में मेरे दादा रहते हैं।
2: और एक और मैं बताऊँ, पंजाब।
0: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों हमारे देश में कुल 28 प्रदेश या राज्य

0: और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अब जरा बताइए, क्या इसी कविता को गीत में सुनना चाहते हैं?
1: बहुत मजा आएगा।
2: हाँ, बहुत मजा आएगा।
0: तो चलिए सुनते हैं ये गीत, हम अनेक किंतु एक। क्या
1: हम अनेक

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफलमैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय आप सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा तो मेरे संजय बेटे को सब याद है।
1: हाँ चाचा जी मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई क्यों नहीं बताया था, जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी क्या हुआ।
0: हाँ तो संजय बेटा उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।
0: अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हमारे देश पर हमला कर दिया?
0: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए छक्के।
2: साथियों ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीय

0: एक और सुरम में पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
1: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
0: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।
1: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वो एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
0: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
0: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
1: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
0: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: कैसे हो वो लोग ऊंचाई पर लोग
3: साथियों?
2: बिल्कुल ठीक है।
3: आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
2: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है। वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
3: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
2: बिल्कुल ठीक,
4: ये ठीक रहेगा संजय भाई,
2: यही ठीक रहेगा संजय भाई।
3: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा,

0: तो शुरू करें?
1: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल रहा पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।
0: आजा मुकेश, आजा।
2: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
3: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
2: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा। राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
4: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
5: बिल्कुल ठीक।
4: आंख में आंख डाल के फायर करो, फायर!
3: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गईं।
1: कार्बाइन खाली हो गई है।
0: अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो, ठहरो।
1: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
3: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
2: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में 3 गोलियां लगी, जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े

0: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
1: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।

0: उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
1: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको तुरंत उपचार की जरूरत है। वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली।
2: आपको वहाँ ले चलते हैं। वहाँ चलते हैं। मरहम पट्टी करवा लीजिए। कम से कम खून का बहना रुक जाएगा।
1: आओ भाई जी,
3: नहीं मान सिंह, नहीं मान सिंह,
1: आओ तो सही।
3: चिंता मत करो, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
2: लेकिन जी, लेकिन
3: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हुआ।
2: अरे
3: आप तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
1: आप सुनो,
3: छुपा हुआ ना
1: आप
3: कोई बचने ना पाए, जाओ चेक करो।
1: लेकिन
3: करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा मुझे।
1: अरे
3: जाओ
1: आप।
0: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैग टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
4: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दो जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया।
0: देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम राइफलमैन संजय कुमार। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सचिता। कार्यक्रम में सबसे पहले फिल्म कोयला का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम में अब आपको दिल वाले फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं।

सैनिक भाइयों, अभी आपने मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत सुना, आई मिलन की रात फिल्म से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब सुनिए साधना सरगम और कुमार सानू का गाया ये गीत। फिल्म का नाम है एक लड़का एक लड़की।

सैनिक भाइयों, अभी आप अनोखा अंदाज फिल्म का ये गीत सुन रहे थे जिसे गाया था विनोद राठौर और अलका याग्निक ने। और इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब अपनी रेडियो दोस्त सच्चिता को दीजिए अनुमति। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

कभी मौसम की बात होगी, कभी मन की बात होगी, कभी घर की, कभी अपनों की बात होगी। यूं ही हंसते मुस्कुराते सफ़र चलता रहेगा। आप साथ रहिए तो हर बात खास होगी। नमस्कार सखियों, सत श्री अकाल और आदाब, साथ में सभी को राम राम। आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम सुनो सखी और मैं हूं आपके साथ आप सभी की रेडियो सखी प्रवेश। इस कार्यक्रम में जिंदगी की छोटी छोटी बातों में छिपी बड़ी बड़ी खुशियों को महसूस करने की कोशिश होती है। सुबह की पहली किरण से लेकर शाम की ढलती रोशनी तक जिंदगी

हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। कभी कोई मुस्कान, कभी कोई सीख, कभी कोई खूबसूरत याद और कभी अपनों का साथ। तो क्यों ना आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल चुरा कर अपने लिए रख लिए जाए। सखियों, जब मौसम की बात हो वो भी साथ में हम आप हों तो अपनी मिट्टी की बात ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? हम चाहे कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, हमारी जड़ें हमेशा हमें पुकारती हैं। अपने गांव की पगडंडी, घर आंगन की याद, त्योहारों की रौनक, लोकगीतों की मिठास और बुजुर्गों से मिली परंपराएं, ये सब हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमेशा जिंदा रहती हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में भी एक खूबसूरत सफ़र हमारा इंतज़ार कर रहा है, जहां बात होगी हमारे राज्य हिमाचल की। और जब बात हो हमारे हिमाचल की तो यहां की खूबसूरती सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और बहती नदियों में ही नहीं है। हमारे हिमाचल की असली खूबसूरती यहां के लोगों, रीति रिवाजों, लोकगीतों, लोक नृत्यों, खान पान, पहनावे और सदियों पुराने संस्कारों में भी दिखाई देती है। हमारी पहाड़ी संस्कृति में ऐसा क्या है जो आज भी बदलते समय के बीच अपनी पहचान बनाए हुए है? हमारे लोकगीतों में कौन सी भावनाएं छिपी हुई हैं? हमारे पारंपरिक पहनावे और आभूषण किस तरह हमारी संस्कृति की कहानी कहते हैं? त्योहारों और मेलों में आखिर ऐसा कौन सा अपनापन है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे हम आज के अपने अगले सेगमेंट में। लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ पल संगीत के नाम किए जाए। तो सखियों, तैयार हो जाइए एक खूबसूरत गीत के लिए। गीत के बाद जब हम फिर मिलेंगे तो बात होगी हमारी अपनी हिमाचली संस्कृति की, उस संस्कृति की जो हमारी पहचान है, हमारी विरासत है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल धरोहर भी। तब तक के लिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत और गीत के बाद होगी आपसे ढेर सारी अपनी बातें सुनो सखी में।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
4: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। वो कहते हैं ना कि कुछ जगहें सिर्फ नक्शे पर नहीं होती, वो दिल में बसी होती हैं, और हिमाचल ऐसा ही एक खूबसूरत एहसास है जहाँ सुबह की शुरुआत

0: पहाड़ों पर पड़ती सूरज की पहली किरण से होती है, जहां हवा में देवदार की खुशबू घुली होती है और जहां आज भी लोकगीतों की धुन में पीढ़ियों की कहानियां सुनाई जाती हैं। आज हम बात करेंगे उस संस्कृति की जो हिमाचल को सिर्फ एक प्रदेश नहीं बल्कि एक खूबसूरत पहचान बनाती है, हिमाचली संस्कृति की। सखियों, हिमाचल की संस्कृति बहुत सिंपल और समृद्ध है। यहाँ की परंपराओं में प्रकृति के प्रति सम्मान है, देवी देवताओं के प्रति आस्था है और रिश्तों में अपनापन है। यहाँ के गाँव में होने वाले मेले और त्यौहार आज भी लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज़, लोकगीतों की मधुर धुन और पारंपरिक नृत्य की थिरकन, हर कोई रुककर देखने को मजबूर हो जाता है। और बात जब हिमाचली संस्कृति की हो तो यहाँ के पारंपरिक पहनावे का जिक्र कैसे ना हो। महिलाओं की खूबसूरती, पहाड़ी पोशाक, रंग बिरंगे दुपट्टे, चांदी के गहने और पुरुषों की पारंपरिक टोपी, इनमें सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि हमारी मिट्टी और हमारी पहचान भी दिखाई देती है। सखियों, हिमाचल संस्कृति की एक और खासियत है हमारा खान पान। धाम की बात हो, सिड्डू की, मदरा की या खट्टे की, या फिर घर के चूल्हे पर बने किसी पारंपरिक पकवान की, पहाड़ी भोजन में स्वाद के साथ साथ मिट्टी की खुशबू भी होती है। और साथ ही हिमाचल की संस्कृति को जीवित रखने में लोक नृत्य और लोकगीतों की बहुत बड़ी भूमिका है। जब महिलाएं मिलकर लोकगीत गाती हैं और कदमों से कदम मिलाकर डांस करती हैं तो लगता है जैसे पहाड़ खुद अपनी कहानी सुना रहे हों। लेकिन सखियों, संस्कृति सिर्फ कपड़ों, गीतों और त्योहारों का नाम ही नहीं है। संस्कृति वो है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और संस्कृति वो है जिसे हम अपनी अगली पीढ़ी तक प्यार से पहुँचाएँ। आज समय बदल रहा है, हमारी जीवन शैली बदल रही है, रहन सहन बदल रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आधुनिकता के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों को पीछे ना छोड़ें, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है ना, उसकी शाखा ही सबसे ऊंची उड़ान भरती है। इतना ही नहीं सखियों, हमारी पहाड़ी बोलियाँ भी तो हमारी संस्कृति का अनमोल हिस्सा है। कांगड़ी, मंडियाली, कुल्लवी, चंब्याली या हिमाचल की दूसरी स्थानीय बोलियाँ, हर बोली अपने साथ उस क्षेत्र का इतिहास, जीवन शैली और भावनाएं लेकर चलती हैं। हम भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
3: आपकी चाय,
4: EMI, किराया कैसे मैनेज करूं?
3: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
4: कैसे?
3: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
4: इतना इजी?
3: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
4: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
3: ना भाई ना।
5: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें, RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सर, 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
8: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
9: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
8: आपका साइबर रक्षक।
0: सखियों, जब बात हिमाचल की हो तो उसकी पहचान में एक नाम बहुत गहराई से जुड़ा है, देवभूमि हिमाचल। यहाँ आस्था सिर्फ मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं है, यहाँ आस्था लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। गांव में कोई शुभ काम हो, कोई पर्व हो, कोई मेला हो या कोई सामूहिक आयोजन, देव संस्कृति की कोई ना कोई झलक आपको देखने को मिल ही जाती है। सखियों, हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी देव

परंपराएं हैं। कहीं देवी देवताओं की पालकी निकाली जाती है, कहीं रथ यात्रा जो है उसको सजाया जाता है, तो कहीं पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन के साथ देव यात्रा आगे बढ़ती है। श्रोताओं, जब इन ढोल नगाड़ों और नरसिंगे की आवाज़ पहाड़ों में गूंजती है तो वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। लोग अपने पारंपरिक परिधानों में सजकर इन आयोजनों में शामिल होते हैं। ये माहौल सामूहिक खुशी का होता है। यहाँ त्यौहार सिर्फ मनाए नहीं जाते बल्कि उन्हें मिलजुल कर जिया जाता है। सखियों, देव संस्कृति का मतलब सिर्फ धार्मिक परंपराओं से नहीं है, इसके अंदर छिपी है प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना। सखियों, हम हिमाचलवासी सदियों से जंगल, पानी, जमीन और पशुधन से जुड़े हुए हैं और शायद यही वजह है कि हिमाचली लोक जीवन में प्रकृति और आस्था एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती है। और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमारी बुजुर्ग पीढ़ी का बहुत बड़ा सहयोग है। आज समय बदल गया है, नई पीढ़ी आधुनिक शिक्षा, तकनीक और आधुनिक जीवन शैली के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि संस्कृति वो विरासत है जो हमें पुरानी पीढ़ियों से मिलती है और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। और इस समय हमारी जिम्मेवारी है आपका मनोरंजन करवाने का, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ,
2: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
5: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
4: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
6: सखियों गीत को गुनगुनाते हुए पहुंच चुके हैं सुनो सखी की छोटी सी रसोई में। वो कहते हैं ना कि कुछ स्वाद सिर्फ पेट नहीं भरते बल्कि मन को भी तृप्त कर देते हैं, और जब बात हो पहाड़ी रसोई की तो सादगी में छिपा स्वाद अपने आप ही दिल जीत लेता है। जी हाँ, गर्मा गर्म स्वा के चावल की खिचड़ी की खुशबू, ऊपर से घी की हल्की सी धार और साथ में दही या फिर घर का बना अचार। आ गया ना मुँह में पानी? तो चलिए फटाफट से नोट कीजिए इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री। इसके लिए चाहिए सखियों 1 कप स्वा के चावल, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बारीक कटी हुई मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 छोटा आलू छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 2 चम्मच देसी घी, सेंधा नमक जो है वो आप स्वाद अनुसार ले सकती हैं, 2 से 2.5 कप पानी चाहिए और थोड़ा सा हरा धनिया, चाहे तो आप मूँगफली के दाने भी ले सकती हैं। सखियों अब इसकी विधि को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले स्वा के चावलों को अच्छी तरह धोकर कुछ देर के लिए भिगो दें। अब एक कुकर में घी गरम करें, उसमें जीरा डालें और जब जीरा चटकने लगे तो उसमें हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए आलू डालकर इन्हें भून लें। अब इसमें भीगे हुए स्वा के चावल डालें और सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें डालें सेंधा नमक और पानी। 2 सीटियों में आपके स्वा के चावल बनकर रेडी हैं। इन्हें प्लेट में डालिए, ऊपर से थोड़ा सा देसी घी और हरा धनिया डालकर अचार के साथ इसका मज़ा लीजिए। फिलहाल चलते चलते हम आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

इस प्यारे से गीत के साथ आज के सुनो सखी कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा विपिन कुमार का और कार्यक्रम की प्रस्तुति रही डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला और जुड़े रहिए अपने इस प्यारे से कार्यक्रम सुनो सखी के साथ। फिर मिलेंगे एक नई बात, एक नई कहानी और एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली
1: वाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
3: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन हैं पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण

प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था, जो लगभग एक दशक में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वो परिवार के संपर्क में है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 506 अंक गिरकर 71,967 और निफ्टी 128 अंक लुढ़ककर 22,393 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दादीमा फिल्म के इस गीत को हम सुन रहे थे मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीतबद्ध किया रोशन ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सुरीला सफर। हमारे श्रोता बहुत सुंदर कमेंट करते हैं और वह लिखते हैं कि माँ वो है जिसके पास लौटकर आज भी मन बच्चा बन जाना चाहता है, जिसकी गोद में दुनिया की सारी थकान भूल जाते हैं और जिसकी आवाज़ सुनकर तो लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। सच तो ये है कि माँ घर में हो तो घर सिर्फ घर नहीं सुकून बन जाता है, और आप, मैं, हम सभी सदा ही उसी सुकून की तलाश में रहते हैं, है ना? तो चलिए बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, और सुनिए ये गीत सुकून की तलाश में।

0: सही कहा आपने, बहुत सुंदर चित्रण है इस गीत में गर्मी सर्दी बरसात दिल की चाहतों का। और आप सभी ने सही पहचाना, भूपिंदर गायक कलाकार भूपिंदर हैं। गुलजार की कलम से निकला यह गीत है, मदन मोहन का संगीत है और फिल्म है मौसम। हम बात कर रहे हैं माँ की, कार्यक्रम सुरीला सफ़र में। लेकिन बात करते करते सुन लेते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर। आपने संदेश भेजे हैं बड़े सुंदर से। एक ने लिखा है कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ नाम से ही खुशी का हर पल सा है। आज मैं खुद माँ हूँ, लेकिन अगर कोई डांट दे या कोई कुछ कह दे या दुख का पल हो तो बस माँ की याद आती है और खूब रो लेती हूँ, लेकिन उसे बताती नहीं कि मैं उसे याद करके रो रही थी। ये तो जिसकी माँ है उसके हृदय की बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सर्वोच्च इबारत माँ शब्द, सारे शब्द इस शब्द के आगे फेल हैं, सब कुछ इसी शब्द में समा गया है। बिल्कुल सही। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि माँ अपने आप में विश्वसनीय होती है, जिसमें हमारे हर प्रश्न का हल होता है। जिनके माँ होती है वो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जिनके माँ नहीं होती वो जानते हैं। सही बात है। हमने हमारी इबारत में भी लिखा है कि दिल फुर ढूंढता है फुर्सत उसकी ही गोद में।

सुकून का बस एक ही ठिकाना रहा है, वो इतनी दूर क्यों जाती है जीवन से, रब से शिकायत का यही पिटारा रहा है। चलिए सुनिए अगला गीत और बताइएगा इस गीत के संगीतकार कौन है।

सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण के बोल, और आप सबने सही पहचाना, संगीतकार मदन मोहन। हम बात कर रहे हैं माँ की, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान कितना भी अरबपति खरबपति अमीर हो जाए, दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, लेकिन इसे संसार में वो एक चीज़ नहीं खरीद सकता, वो है माँ और पिता। इंसान कितनी भी बड़ी उम्र का क्यों ना हो जाए, परंतु अपनी माँ के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि माँ वह पहला नाम है जो बचपन से लेकर जीवन की हर दहलीज तक उनका प्यार हमें संभल देता है। माँ जिसकी गोद में हर उम्र में सुकून मिलता है, और नवरात्र में जब माँ दुर्गा के नौ रूपों की आराधना करते हैं तो एहसास होता है कि माँ केवल ममता की मूर्त ही नहीं बल्कि साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जगत जननी माँ जगदम्बा का आगमन हमारे घर हमारे दिलों में हुआ है, और पूरी भक्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ हवन की सुगंध पूरी फिजाओं में तैर रही है। हमारे एक और श्रोता बताते हैं कि हर माँ सोते हुए अपने नन्हे शिशु पर लगातार नज़र रखती है और उसे जान से बढ़कर प्यार करती है। आगे चलकर इसी तरह से त्रैलोक की जननी आदि शक्ति माता रानी से भी अनुभूति मिलती है। अज्ञान की नींद में समाए हम भक्तों को जगाती हैं और उनके सपनों को संजोए रखती हैं। तो चलिए हम सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को सुनते हुए आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से है, और ये ज़रूर बताइएगा कि ये फिल्म आपने कब कहाँ कैसे देखी थी। बताइएगा ज़रूर, सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया। हमने आप सबसे पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सबने बताया कि ये त्रिमूर्ति फिल्म का गीत है। किसी ने बताया कि उन्होंने करतारपुर में देखी, किसी ने बताया भोपाल में देखी, किसी ने कहा अभी तक नहीं देखी। सबकी अलग अलग बातें थी, तो सबकी अलग अलग बातों को स्वीकार करते हैं। और एक बात हमारे एक श्रोता ने लिखी जो बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा कि शहर आकर पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। बात तो बड़ी छूने वाली है और सच भी है। हमारे एक

और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में निबंध में लिखते थे कि चलो चलो माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों के गांव में। तब समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ आया कि माँ जहाँ होती है वहाँ सपनों का गांव बसता है, वहाँ सिर्फ प्यार दुलार होता है और खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब एक प्रश्न आप सबसे आ रहा है मन में जो पूछा जाए, प्रश्न ये है कि आपने अपनी माँ की किस ख्वाहिश को पूरा किया है, या कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी नहीं कर पाए, ज़रूर से बताइएगा। माँ इस धरती का आधार होती है, अपनी अपनी माँ को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बताइए ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी माँ की जो पूरी नहीं की, या ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो पूरी करके आप प्रसन्न हो गए।

हम सुन रहे थे ये गीत एबीसीडी 2 फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। मयूर पुरी ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया सचिन जिगर ने। हमने आपसे पूछा था कि ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप अपनी माँ की पूरी कर पाए या नहीं कर पाए, परंतु उसके पहले हम ये संदेश पढ़ते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कहते हैं भगवान सभी का ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए उन्होंने इस दुनिया में माँ का निर्माण किया। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता बताते हैं कि उनकी माँ की अंतिम ख्वाहिश थी कि उनका सत्कार जगन्नाथपुरी धाम में हो और उन्होंने यह कार्य किया, उसके लिए आपका आभार। अपनी माँ की हर बात को पूरा करना हम बच्चों का कर्तव्य होता है ना। तो हमारे एक और श्रोता बड़ी अच्छी बात लिखते, कहते हैं हमें लगता है कि हमने अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी की है, क्योंकि हमारी माँ जब भी हम कुछ करते थे तो कहती थी कि बस यही तो मैं चाहती थी। सच बात है, माएँ ऐसी ही होती हैं, हम जो कह दें उन्हें लगता है कि बस वही सही है, और माँ इतना प्यार जो करती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि द टाइम इज़ द बेस्ट हीलर बट नॉट इन केस ऑफ मदर, एज द टाइम पासिस आई मिस माई मदर मोर डे बाई डे। सच कहा आपने कि कहते हैं कि समय एक अच्छा हीलर होता है, लेकिन माँ के केस में नहीं होता। जब समय गुजरता है तो माँ को और याद करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सब रिश्ते पैसों के बने हुए हैं, पर माँ के रिश्ते का कोई मोल नहीं है। हमारे एक और श्रोता ने कथा लिखी कि हम छोटे थे, एक ही कंघी थी, जब माँ को बाल झाड़ना होता था तो उसे बहुत टाइम लगता था, क्योंकि माँ के बाल बहुत बड़े थे, स्कूल जाते समय समय हो जाती थी, और माँ को मुकेश जी भी पसंद थे, तो हमने बर्थडे पर सारे भाई बहनों ने पैसे इकट्ठा करके माँ को कंघी और मुकेश जी का कैसेट दिया था, और माँ खुशी के मारे रोने लगी थी। क्या बढ़िया बात है, माँ बहुत सुंदर चीज़ है। हमारे श्रोता ने इसी बात को लिखा है, और हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि मेरी बेटी अच्छा इंसान बने और मेरी तरह विद्यादान का काम करे, और उनकी यही ख्वाहिश थी और यह इच्छा मैंने पूरी की है। कितनी बढ़िया बात है कि आप सभी अपनी माओं की इच्छाओं को पूरी कर पा रहे हैं और करते जा रहे हैं, और जिनके पास उनकी माँ है उन्हें तो यह कार्य अधिकार से करते रहना चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ कहती थी ज़िंदगी में सफल हो ना हो लेकिन एक अच्छा इंसान बनो, और उसी पर चलकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ जैसा दुनिया में ना कोई है ना कोई होगा, माँ ममता का सागर है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे और सारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, हम ये सारी बातें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम सुनवाते हैं आपको अगला गीत। ये बड़ा प्यारा सा गीत है, और बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार कौन है, ये आप बताइए और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे पिया का घर फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल से सजा हुआ और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस संगीतबद्ध किया। हमारे बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माने जिस तरह से हम लोगों को घर गृहस्थी में पाला है, उस समय कोई और होता तो पता नहीं कैसे करता। वह सब उन्होंने ही किया है, बिल्कुल सही बात है, माँ सब संभाल लेती है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ बहुत बीमार थी, इलाज कराना था, दिल्ली लेकर आए थे और सेवा किए, मुझे पुणे जाना पड़ा और सेवा नहीं कर पाए। रहता है मलाल दिल में, कोई बात नहीं। हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि माँ की कितनी महिमा है यह हर किसी को मालूम है, पर देखकर समाचारों में पढ़कर सुनकर बहुत दुख होता है कि बुढ़ापे में कुछ औलाद अपने माँ पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। बात ये भी बिल्कुल सही है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़िया गाना है, जीवन और जीवन की जीत पर लिखा है, संभवतः संगीतकार रविंद्र जैन है। नहीं, आप यहाँ पर त्रुटिवश हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीतबद्ध किया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ कितनी अच्छी होती है ना, बच्चे की हर बात हर ख्वाहिश जान लेती है और ख्वाहिश को पूरा करती है। जी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ वैसे कई बार मेरे घर आई थी, लेकिन वो उनके घर आना चाहती थी और वो आ नहीं पाई और अचानक से चली गई, ये दुख उनके मन में है। बिल्कुल सही है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि साधारणतः अनेक बच्चों की माँ वृद्धाश्रम में होती है, वो 9 भाई बहन हैं पर उन्होंने अपनी माँ को कभी कष्ट नहीं होने दिया। बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मम्मी बिल्कुल छोटी सी ख्वाहिश पूरी की थी, उन्हें विविध भारती में स्वप्न चेहरे फूल से वाला गीत सुनना था, वो फरमाइश उन्होंने पूरी करवाई थी। ऐसे ही विविध भारती का साथ और आपका साथ बना रहता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि माँ की बात को सुनकर हम आगे बढ़े हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम सुनते हैं अगला गीत। और ये जो अगला गीत है, आप अपने संदेश भेजते जाइए और साथ में बताइएगा कि ये जो अगला गीत है इसके गीतकार, संगीतकार और गायक। अब तीन उत्तर देने हैं, गीतकार, संगीतकार और गायक, तीनों के नाम बताने हैं। सुनिए ये गीत।

से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव कभी धूप कभी छांव कभी धूप तो कभी छांव।

0: तो कभी छा।
1: हम सुन रहे थे ये गीत कभी धूप कभी छाँव। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत में गीतकार, संगीतकार और गायक तीनों के नाम बताइए। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि इस गीत के गायक हैं कवि प्रदीप, गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने। हमने हमारी इबारत में लिखा है कि ये जीवन है, यहाँ सुख दुख सब हैं, कहीं धूप कहीं छाँव मिलती है, तो चलो ना संग में मुस्कुराते हैं, यहाँ मुस्कुराने की फीस कहाँ लगती है। तो चलिए मुस्कुराते हैं इस गीत के साथ, और हो सके तो बताइएगा कि इस गाने में आपको किस गायक कलाकार की आवाज़ सुनाई दे रही है। सुरीला सफ़र का यह अंतिम गीत।

श्रोताओं नमस्कार। एक समय की बात है, एक राजा युद्ध में हार गया और उसके सभी सैनिक मारे गए। अपनी जान बचाने के लिए वो गहरी गुफा में छिप गया। शत्रु सैनिकों ने गुफा के मुहाने पर एक बड़ा सारा पत्थर रख दिया। राजा अब गुफा के अंदर फंसा हुआ था, भूखा प्यासा और पूरी तरह से निराश। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी उसे अपनी माँ की सीख याद आई कि बेटा, जब तक सांस है तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये बात याद आते ही राजा में नई ऊर्जा आ गई और उन्होंने गुफा से बाहर निकलने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फिर से सेना संगठित कर शत्रुओं को हराकर अपना राज्य वापस भी पा लिया। दोस्तों, यानी परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, उसी समय आप वास्तव में हार जाते हैं। जब तक आदमी खुद से नहीं हार जाता, उसकी हार नहीं होती। हाँ, यानी अगर आप खुद से नहीं हारे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको चाहकर भी नहीं हरा सकती। अब देखिए ना, APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, हार का मतलब सीखने का पहला प्रयास है। इसलिए असफल होने पर कभी हार नहीं माने। उनका ये भी कहना था कि पहली जीत के बाद आराम न करें, क्योंकि दूसरी हार किस्मत के भरोसे की बात कही जा सकती है। वे कहते थे, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें।

निराश होने का मतलब है ये महसूस करना कि आप वो काम नहीं कर सकते जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे। हमारे अंदर वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। खुद पर भरोसा रखिए और रास्ता स्वयं बनाइए, क्योंकि हर काम आसान है, बस अंदर से एक आवाज आनी चाहिए। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, यही मायने भी रखता है। विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं और आप आधी मंजिल हासिल कर लेंगे ये सोचकर। अगर हम शहीद भगत सिंह की बात करें तो उनके लिए हार मान जाने का मतलब अपने सिद्धांतों और देश के प्रति निष्ठा से समझौता करना था। भगत सिंह हार मानने या घुटने टेकने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि एक क्रांतिकारी को मौत के फंदे पर भी सिर ऊंचा रखना चाहिए। उनके लिए हारना आत्मसमर्पण था। हालांकि हर नाकामी आपको सिखाती है कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। जब सब कुछ कठिन लगने लगे तब भी डटे रहना ही सफलता की कुंजी है। हार न मानने वाले ही अंत में सफलता पाते हैं और ये हम सभी जानते हैं।

दोस्तों, व्यक्ति को कभी अपनी जीत हो या हार, उसे लेकर मन में कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। व्यक्ति को जीतने से पहले न तो जीत और न ही हारने से पहले कभी हार माननी चाहिए। देखिए ना, हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी हार का सामना करता है। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हार किसी अंत का संकेत नहीं होती, बल्कि ये उस मोड़ का उदाहरण है जहाँ से नई शुरुआत संभव होती है। जीत के क्षणों में हम खुश हो जाते हैं, पर हार के क्षणों में हम परिपक्व होते हैं। हाँ, याद रखिए, हार के क्षणों में हम परिपक्व हो जाते हैं, और यही परिपक्वता भविष्य में हमारी विजय की असली वजह बनती है। याद रहे श्रोताओं कि आपके अंदर पनपने वाले विचार आपके अंदर संचालित होने वाली ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जिस तरह के विचार आपके अंदर आएंगे, वैसा ही प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। जीत और हार सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हार मानना जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वे मानते थे कि इंसान के भीतर असीम क्षमताएं हैं। उनका मूल मंत्र था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में हम समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली हरियाणा पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अब है हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और माइन वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
3: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
3: स्मैश द पैट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं, उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैश द पैट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
4: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
2: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
1: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद

0: धन्यवाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे श्रीमती 420 फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफ़ी शमशाद बेगम की आवाज़ों में। सुनेंगे हम मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत रानी रूपमती फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, भरत व्यास के हैं बोल और एस एन त्रिपाठी का है संगीत।

0: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत तीसरी गली फिल्म से। हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का है संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं तीसरी गली फिल्म से यह गीत हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का है संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और कल्याण जी आनंद जी का है संगीत।

आइए चलते सदाबहार नगमे में सुनते हैं आखिरी गीत फागुन फिल्म से, आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, खमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। इस गीत के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दौर युवाओं का है, उनके नए विचार और कड़ी मेहनत भारत के साथ साथ दुनिया का भविष्य भी तय करेंगे।
1: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने आज जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के केलंग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के देश के पहले उच्च पर्वतीय स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करने के दौरान ये बात कही। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस अनुसंधान केंद्र पर करीब 36 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जीआई उत्पादों को विरासत से बाजार तक ले जाने के लिए नाबार्ड ने कामगारों को एक बेहतर मंच उपलब्ध करवाया है। इसके लिए हैदराबाद में ग्रामीण भारत महोत्सव आयोजित किया गया है। 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के 25 जीआई उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें चंबा जिले की जीआई टैग चंबा चप्पल के कारीगर अनिल कुमार प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी भारत के पारंपरिक ज्ञान, हस्तशिल्प और क्षेत्र विशेष के उत्पादों की समृद्धि विविधता को दर्शाती है। अनिल कुमार ने कहा कि इस महोत्सव में प्रदर्शित की गई चंबा चप्पल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
2: चंबा चप्पल बनाने में जितनी मेहनत की जाती है, वो यहाँ के पारखी देख रहे हैं, वो उसे लेने में काफी इंटरेस्टेड हैं। लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हर प्रोडक्ट को लेने के लिए इतनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि सैनिकों को पौष्टिक भोजन, उचित उपकरण, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और पर्याप्त सुविधाएं मिलने से उनका मनोबल बढ़ता है।
3: हमारे सैनिकों का वेलफेयर हमारे लिए कोई पेरिफेरल इशू नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। और जब हम अपने सैनिकों को अच्छा भोजन, अच्छा इक्विपमेंट, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी सुविधाएं देते हैं, तो मैं मानता हूं हम एक तरह से उनके मनोबल को मजबूत करते हैं। और एक मजबूत मनोबल वाला सैनिक ही किसी भी चुनौती का बेधड़क सामना कर सकता है।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा के संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उन्होंने हमीरपुर जिले के समीरपुर मंडल के बूथ में पन्ना प्रमुख का दायित्व संभालने के अवसर पर ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्टी में दायित्व का महत्व पद की ऊंचाई से नहीं बल्कि संगठन के प्रति समर्पण, जिम्मेदारी और जनसेवा की भावना से तय होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है और बूथ की मजबूती ही पार्टी की वास्तविक ताकत है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते 24

0: घंटों के दौरान हुई हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में कहीं कहीं वर्षा व ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि हिमपात व वर्षा से तापमान में औसतन 6 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि कल 13 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा, जिसके चलते चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा जिले की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो सकता है। इसके अलावा मंडी, शिमला और सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
1: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। लीजिए अब प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। विषय है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में केंद्रित कृषि विकास का 1 साल। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का।
2: भारत के कृषि क्षेत्र में अलग अलग इलाकों और किसान समुदायों के बीच काफी संभावनाएं हैं। हालांकि इन संभावनाओं के बावजूद कई क्षेत्रों को कम उत्पादकता, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाओं, कृषि ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र अपनी पूरी कृषि क्षमता हासिल नहीं कर पाते और आर्थिक विकास में पीछे रह जाते हैं। इन्हीं कमियों को दूर करने और विशेष रूप से देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों का विकास करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को 6 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू हुई यह 6 वर्षीय पहल देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों को बदलने पर केंद्रित है। इन जिलों की पहचान 3 प्रमुख मानदंडों के आधार पर की गई है। इनमें कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और खेती के लिए ऋण की कम उपलब्धता शामिल है। जिलों के चयन में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र तथा परिचालन जोतों की हिस्सेदारी को भी ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले को इस योजना में शामिल किया गया है। योजना को लागू करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं, राज्य सरकार की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को एक साथ जोड़ा गया है। इससे स्थानीय कृषि प्राथमिकताओं के अनुरूप कदम उठाने में मदद मिल रही है। योजना के क्रियान्वयन के लिए 3 स्तरों पर व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर या उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला धन धान्य कृषि योजना समिति गठित की गई है, जो जिले की कार्य योजना तैयार करती है और उसे लागू करवाती है। योजना के तहत जिला कार्य योजनाएं यानी डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान जिले की मौजूदा स्थिति के आकलन और विस्तृत विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है। इन योजनाओं में स्थानीय कृषि जरूरतों की पहचान करके संबंधित केंद्रीय और राज्य योजनाओं को एकीकृत किया जाता है। साथ ही परिणाम आधारित लक्ष्य, वार्षिक उपलब्धियां और विभिन्न योजनाओं के तहत किए जाने वाले उपाय निर्धारित किए जाते हैं। योजना के तहत 36 योजनाओं के माध्यम से कुल 121 संकेतकों के आधार पर प्रगति की निगरानी की जा रही है। इनमें 74 आउटपुट संकेतक और 47 आउटकम संकेतक शामिल हैं। आउटपुट संकेतकों के आधार पर जिलों के प्रदर्शन की मासिक रैंकिंग प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है। योजना के तहत सभी 100 जिलों ने अपनी जिला कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उन पर अमल किया जा रहा है। समीक्षा और निगरानी के लिए राज्य, जिला तथा राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। अगस्त 2026 तक सभी 100 जिलों ने आउटपुट संकेतकों से संबंधित आंकड़े जमा कर दिए थे। इसके अलावा सभी 100 जिलों ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आउटकम संकेतकों का डाटा भी जमा किया। योजना के पहले वर्ष में 6 प्रमुख उद्देश्यों के तहत 100 जिलों के औसत स्कोर में सुधार दर्ज किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन 6 उद्देश्यों में जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85 था, जो अगस्त 2026 में बढ़कर 46.89 हो गया। इस प्रकार औसत स्कोर में 28.0

0: चार अंकों का सुधार दर्ज किया गया। इन उद्देश्यों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार, अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना तथा प्रशासन और सेवाओं की आपूर्ति को बेहतर बनाना शामिल है।
1: हमारा यह प्रसारण आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
3: हो भी चुके होंगे
4: तो हमारे श्रोता ने शिकायत तो की है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भले हो मन में लेकिन वो नहीं लिख पाए हैं, तो भी शिकायत उनकी दूर हो गई और उन्होंने हमसे शिकायत की। कुछ उन्होंने कहा, कुछ हमने कह दिया, बात तभी होती है। और ये जो जुमला है ना कि कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बात तभी बनती है दीपा, क्योंकि ये रिश्तों का पूरा व्याकरण है। हम सभी बोलना चाहते हैं और कोई हमें सुने, हम ये भी चाहते हैं। बोलने से गला हल्का होता है और सुनने से मन, कोई जब हमें सुनता है तो हमारा मन हल्का होता है। और बात तभी बनती है जब गला और मन दोनों पूरी तरह से हल्के हो जाते हैं। तो कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इसका एक मतलब ये भी है कि आपस में बातचीत करना, अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ साझा करना और संवाद का माहौल बनाना। ये केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता दीपा, बल्कि दो लोगों या दो पक्षों के बीच आपसी जुड़ाव और आपसी समझ की बात भी है।
3: बिल्कुल सही कहा, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इसमें सबसे सुंदर पता है क्या शब्द है चंचल? हम।
4: क्या बात है। हाँ,
3: और जब तक मैं और तुम है ना, तो फिर देखिए बहस है। जहां हम आ गया वहां बात बन जाएगी, और बात को तुमने क्या किया से निकाल कर हम इसे कैसे ठीक करें, बिल्कुल इसमें तब्दील हो जाएगी, होगी या नहीं होगी?
4: बिल्कुल, और तब बात बन भी जाएगी। और दो लोगों के बीच जब संवाद होता है तो इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे की बात तक रखे, जिसे संवाद का संतुलन जो है वो बना रहे। आपसी जुड़ाव, आत्मीयता अक्सर रिश्तों, दोस्ती या प्रेम में इस्तेमाल होती है। और दो लोग जब अपनी भावनाएं, अपने सुख दुख और अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं तो बात तभी बनती है।
3: बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे को सुनना और समझना दोनों जरूरी है। इसमें केवल कहने ही नहीं बल्कि एक दूसरे को ध्यान से सुनने और समझने पर भी जोर दिया जाना चाहिए, जिससे आपसी समझ और विश्वास मजबूत हो। अब देखो ना, आजकल संवाद का हाल कुछ ऐसा हो गया है चंचल कि एक बोलता है तो दूसरा इंतजार करता है कि पहला कब चुको ताकि वो अपनी बात शुरू कर दे। अब देखिए, ये संवाद नहीं है, ये तो भाई मोनोलॉग हो गया है या नहीं दोस्तों? क्योंकि जो आपस में टकरा रहा है, मतलब बोलने ही नहीं दे रहा है अगर दूसरे को, तो फिर वो कैसे आपसी बातचीत हुई? और जब कोई अपनी बात कहना शुरू करता है, उसके पहले ही हम ये तय कर लेते हैं कि सामने वाला गलत है, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी बात कहे, हमें तो बस गलत ही लगने लगती है। ऐसे संवाद से बात करने के बजाय बिगड़ ही जाती है। तो जब भी बात कहो, साफ कहो, लेकिन थोड़े मीठे अंदाज में कह दो।
4: और शब्दों के पीछे का दर्द भी कई बार हमें जब कोई बताता है तो हम उनसे अनसुना कर देते हैं। कोई हमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, हम उसके शब्द सुनते हैं लेकिन उसके पीछे छुपी हुई जो कुछ शब्द हैं जो हमें नहीं सुनाई दे रहे कि वो कहना चाह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है।
3: बिल्कुल,
4: ना कहकर भी उसने कहा लेकिन हम इन शब्दों को सुन नहीं।
3: कई बार क्या होता है ना, ऐसा होता है लोगों में कि वो प्रेम भरे शब्द बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लेकिन उनके गुस्से में भी वो जो उनके प्रेम को हमें समझना पड़ता है।
4: जब कोई गीत या गजल बनती है ना तो उसमें चार चीजें चाहिए होती हैं, जब भी वो अच्छा लगता है, वो है लय, सुर, उसके शब्द और एहसास। इसी तरह से बात भी जब हम कोई करते हैं तो बात तभी बनती है, उसमें चार सुर होने चाहिए, ठहराव, सच्चाई, पारदर्शिता और विश्वास।
3: बिल्कुल, और जब हम ठहराव यानी मन को शांत कर लेंगे, वहाँ से बात शुरू करेंगे, तो गुस्से में कहीं की गई जो बात है ना, सच भी हो तो जहर लगने लगती है। लेकिन इसलिए जब आप जब आए तो 20-25 मिनट के लिए मौन हो जाएं, यानी आप कभी भी कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो अगर या गुस्से में है तो थोड़ा सा चुप रह जाइए। इससे होगा ये कि 90% बातें तो वहीं ख़त्म हो जाएंगी।
4: बिल्कुल सही,
3: गुस्से में, क्योंकि गुस्से में की गई बात और फिर देखिए वो बात का कहाँ बतंगड़ बन जाता, देर नहीं लगती।
4: और जब कोई बात अपनी हमसे कह रहा है तो सच्चे मन से उसे सुनना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आंखें मोबाइल पर हैं, चेहरा उसकी तरफ लगा हुआ है और हम उसकी बात को पूरी तरह से सुन ही नहीं रहे हैं। मतलब उसे दिखा रहे हैं कि हमने सुना

0: लेकिन हमारा ध्यान या तो अपने किसी और बात पर है, हमारे मोबाइल पर है, या उसे बीच में जब अगर हम टोक देते हैं उसकी बात को पूरा होने से पहले ही, तो वो अपने बात कहने के लिए जो अपना मन हल्का करना चाहता है ना, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो हमें पूरी तरह से समझता है, हमारे मन के भीतर चल रही उथल पुथल को वो पूरी तरह से भांप लेता है और हमसे वो बात करता है। फिर भी अक्सर हम घुमा फिरा के कह देते हैं ना कि कुछ नहीं, सब ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो तूफान चल रहा है उसे वो हमें समझ लेता है, और कई बार बिना कहे ही वो बात संवाद जो है दोनों के बीच में हो जाता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, बात करने से ही बात बनती है, खामोश रहने से तो दूरियां पनपती है।
0: और इसीलिए दीपा, ना तुम चुप रहो ना हम चुप रहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और जो उलझी है गांठ दिल में तो बातों ही बातों में वो सुलझे।
1: बिल्कुल, संवाद कोई जादू नहीं, आदत है चंचल, और आदत एक दिन में नहीं बनती। हम सब एक अच्छी शुरुआत करें कि हर रोज जब भी समय मिले किसी एक अपने से सिर्फ 5 मिनट बिना सलाह के, बिना जज किए, सिर्फ सुनने सुनाने वाली बातें करेंगे, करके देखिए, मन हल्का लगेगा, यकीन मानिए।
0: बिल्कुल, अब जब ऐसा करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाए, हम भी यही चाहते हैं, और सुन लेते हैं गाना।

0: जब बात मन में रह जाती है ना तो उलझनें बढ़ जाती हैं, इसलिए मन की बात कह दीजिए और कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, ऐसा होना चाहिए। इसी पर एक बड़ा बहुत अच्छा संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जहाँ एक ही बोले वो भाषण होता है, संवाद नहीं। जहाँ दोनों बोलें और दोनों सुने वहाँ संवाद बन जाता है। बिना संवाद के मन बंद हो जाते हैं। कहने से मन हल्का होता है, सुनने से भी मन बड़ा होता है। और आज की सबसे बड़ी कमी यही कि सबको कहना है पर सुनना किसी का नहीं है। इसीलिए ये पंक्तियाँ हमें बराबरी का सम्मान सिखाती हैं कि ना तुम हमेशा सही ना हम हमेशा सही। इसीलिए घर में, रिश्तों में, समाज में अगर हम थोड़ा सुन लें, थोड़ा कह दें, तो आधी दूरियाँ आधी लड़ाइयाँ खुद ब खुद मिट जाएंगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह से एक और संदेश है, कह रहे हैं कि साझा अभिव्यक्ति, यानी कि कुछ बातें आपकी और कुछ बातें हमारी, रिश्तों में ताजगी और अपनापन बनाए रखती हैं। जब दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रखते हैं और एक दूसरे के मन की थाह ले लेते हैं, तब विश्वास की जड़ें और मजबूत होती हैं।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि जहाँ

0: ना शब्दों की कोई बाध्यता हो, ना भावनाओं पर कोई पहरा हो, बस मन हो, संवेदनाएं हो और एक दूसरे को सुनने और समझने का सुंदर सा सिलसिला हो। बहुत
1: बिल्कुल
0: सुंदर
1: से,
0: बात
1: बहुत
0: लिखी।
1: सुंदर कहा। और एक संदेश और है कि हम किसी से कुछ कहते हैं अपने दिल की बात, तो हमारी बात, हमारी बहुत सारी व्यर्थ जो नेगेटिव बातें वो निकल जाती
0: जी
1: है। पर हम सिर्फ कहें ही नहीं, अगला जो सुन रहा है उसकी भी कुछ बात सुने। परिवार में कुछ लोगों के प्रति कुछ ऐसे विचार आते हैं जो अच्छे नहीं होते, पर अगला कोई आपका दोस्त या प्रिय सुनकर और आपको सुझाव देता है, उन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए।
0: एक अन्य संदेश में पढ़कर सुनाती हूँ, बड़ी अच्छी बात लिखी है कि एक तरफा बात अक्सर बोझिल हो जाती है और संवाद एक तरफा भाषण बनकर रह जाता है। साझा अभिव्यक्ति यानी कि कुछ बातें आपकी और कुछ बातें हमारी, तो ये अगर होगा तो रिश्तों में ताजगी और अपनापन बना रहेगा। जब दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रखते हैं, एक दूसरे के मन की थाह लेते हैं, तब विश्वास की जड़ें और भी मजबूत हो जाती हैं।
1: बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि जीवन केवल अपने हिस्से की बात कह देने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को सुनने और समझने की कला भी है। जब हम कहते हैं कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, तो सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहता है।
0: तो भाई सिर्फ हमें ही नहीं कहना है, गीतों के माध्यम से भी बहुत कुछ कहा जाता है, तो सुने गीत।
1: चलिए चलिए।

0: हम भी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और एक अच्छा सा सुंदर सा संदेश है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हमारी एक सखी लिखती है कि आज विश्व गठिया दिवस है, मैं बहुत लंबे समय से इस बीमारी से ग्रसित हूँ। मैं सारा काम कर लेती हूँ, चल फिर लेती हूँ, अगर मैं एक दो दिन भी नहीं चली तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखदायी हो जाता है। इसीलिए आप इसका सिर्फ एक ही इलाज है या परहेज है कि आप शरीर के अनुसार खाना खाएं, कुछ वात की चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, शरीर को एक्टिव रखें, नियमित रूप से हल्का फुल्का व्यायाम करें, दुरुस्त दिनचर्या, सही खान पान इस रोग से निजात दिलाता है।
1: बिल्कुल सही कहा, एक सक्रिय मतलब फिजिकली एक्टिव लाइफ बहुत ज़रूरी है हर तरह की चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए ना, गठिया एक रोग नहीं है बल्कि 100 से ज़्यादा बीमारियों का ये समूह है। इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न आ जाती है। और अगर एक अनुमान के अनुसार हम देखें तो भारत में, हमारे देश में करीब 18 करोड़ से ज़्यादा लोग किसी न किसी तरह से इस गठिया से पीड़ित हैं। लेकिन होता यह है कि 70% लोग इसे बुढ़ापे का दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये बच्चों में भी हो सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा दीपा, और कई तरह का गठिया रोग होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, इसमें सबसे आम तौर पर ये सबसे आम है, और लगभग जब 40-45 की उम्र होने लगती है उसके बाद कूल और घुटनों में घिसाव पाया जाता है, तब ये दर्द उठते बैठते, जैसे इतने कमर में दर्द हो रहा है या घुटनों में चला फिरा नहीं जा रहा, उस तरह का होता है। इसी तरह से रूमेटाइड अर्थराइटिस है, जिसमें सुबह उठते ही हाथों में अकड़न सी महसूस होती है और 30 मिनट तक मुट्ठी खुलने ना खुलने जैसी दिक्कत भी महसूस हो सकती है। इसी तरह से गाउट भी एक गठिया का प्रकार है, जिसमें यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो पैर के अंगूठे में असहनीय दर्द होता है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये युवाओं में सुबह कमर में जकड़न जैसी समस्या इसमें आती है।
0: तो बिल्कुल ये कभी ना समझे कि ये बढ़ती उम्र में ही होता है, कई बार कम उम्र में भी ये समस्या आपको जकड़ सकती है।
1: बिल्कुल, और जब भी इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में, तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। जैसे सुबह 30 मिनट से ज़्यादा जोड़ों में जकड़न हो, 3 दिन से ज़्यादा एक ही जोड़ में सूजन आना है, या बिना चोट के भी दर्द जोड़ों में बना अगर रहता है या बढ़ता जा रहा है, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होना, ये चलने उठने बैठने इन सब में तकलीफ होना, इन सब लक्षण अगर ये है तो जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है यानी रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। और देर करने से देखिए जोड़ जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं,
0: बिल्कुल, फिर समस्या को समाधान करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए समय रहते बचाव ज़्यादा अच्छा रहता है। और गठिया रोग से बचने के लिए जैसे हमारे संदेश में भी लिखा गया था ना कि 30 मिनट अगर आप ज़्यादा समय ना कर सकें 30 मिनट टहल लीजिए, तैरना, साइकिल चलाना जैसे व्यायाम भी कर सकते हैं अगर आपकी शारीरिक क्षमता है तो। बढ़ते वजन को भी नियंत्रित करना ज़रूरी है, अगर लगातार आप देखें कि आपका वज़न बढ़ रहा है तो वहीं उसे भी नियंत्रण करने की कोशिश करें। धूप में 15 मिनट तक विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं, और जो सुबह के उगते सूरज की धूप होती है उसी में विटामिन डी होता है। ऐसा ना समझे कि सारा दिन में से कभी भी आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे विटामिन डी आपको मिलेगा
1: जी।
0: अदरक, हल्दी और या ओमेगा 3 वाली जो भी चीज़ें हैं, जिसमें अखरोट, अलसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, इन्हें अपनी नियमित खुराक में शामिल किया जा सकता है, और अकड़न होने पर थोड़ा सा ना गर्म सिकाई भी की जा सकती है।
1: बिल्कुल, और जोड़ों में दर्द रहता है ना चंचल, तो ठंडे पानी से नहाए इस तरह से हमेशा सलाह दी जाती है, और देर तक एसी में बैठे रहना, क्योंकि आजकल हर घर में ही तो देखिए एयर कंडीशन है ही, तो इसमें भी दर्द बहुत बढ़ जाता है। फिर पालथी मारकर घंटों बैठना या सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना, ये सब में दर्द बढ़ सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। दर्द होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द का जो कोई भी पेन किलर लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये समस्या को और बढ़ा सकता है।
0: ये सिर्फ जोड़ों के दर्द की बात नहीं है, आपको किसी भी तरह का दर्द होता है और उसमें अगर आपने बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर लिया है तो उसके कोई साइड इफेक्ट भी आपको आ सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई ऐसा दर्द हो, और खासतौर पर गठिया की हम बात कर रहे हैं, अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो चिकित्सकीय सलाह बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, और दर्द अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है तो पहले ही आराम, जो पहले क्या करना चाहिए, आराम तो उसका इलाज है ही, ये सोचकर बिल्कुल हिलना डुलना जो है बिल्कुल ना करें, ये उचित नहीं है। और गठिया ला इलाज नहीं है, देखिए

0: पर अनदेखा करना ये भी सही नहीं है। सही समय पर सही जानकारी और व्यायाम से हम अपने रोजमर्रा के जीवन को बिल्कुल सामान्य रख सकते हैं।
1: और इसीलिए दर्द को अपना स्वभाव बिल्कुल मत बनने दीजिए। जोड़ हिलेंगे, जीवन तभी मिलेगा। और इस तरह के विश्व स्तर पर जब भी कोई दिवस मनाए जाते हैं तो उनकी एक थीम रखी जाती है। इस बार इस दिन की थीम रखी गई है सही जानकारी बेहतर जीवन।
0: बिल्कुल। और अभी क्या करना चाहिए?
1: एक अंतराल का समय है।
0: चलिए।

0: श्रोताओं, विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और दीपा, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: गीत बहुत सुंदर था दीपा, और ऐसे गीत जब बजते हैं ना तो गठिया वटिया सब भूल के ना नाचने कूदने को झूमने को दिल करता है।
1: बिल्कुल।
0: और जब रात को गरबा होता है ना तब भी कितना भी दर्द हो रहा हो हाथ पैरों में, लेकिन जब वो थिरकते हुए हम पैर देखते हैं या ऐसा कोई गीत सुनते हैं ना तो मन करता है कि थोड़ा सा चलिए चाहे दो राउंड लेंगे गरबा के हम, लेकिन हो जाए।
1: दिल जब खो जाता है तो किसी सखी को ही बताया जाता है ना।
0: और चलिए हम

0: छह दिवस के बाद अब बात करते हैं एक और खास दिवस की, जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र विचार दिवस।
1: बिल्कुल,
0: ये भी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है दीपा कि सोचना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन किसी की दी हुई वस्तु नहीं है। ये स्वतंत्र विचार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी मन में आया वो बोल दिया। बड़ों का अपमान करना, हर परंपरा को भला बुरा कहना, इसे विचारों की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता।
1: जी, स्वतंत्र विचार का मतलब ये है चंचल कि किसी भी बात को आंख बंद करके ना मानना, सवाल पूछने की हिम्मत बिल्कुल रखना चाहिए। ऐसा क्यों, ये हम पूछ सकते हैं अपने बुद्धि, अपने अनुभव और सबूतों के आधार पर अपनी राय बनाना और दूसरों को भी अपनी राय बनाने की जो है जब बना उसका सम्मान करना। अगर किसी की राय कुछ और है, हमारे सोच से अलग है, तो उसका सम्मान बिल्कुल करना।
0: आज हमारे पास जानकारी तो बहुत है लेकिन सोच है वो बहुत कम है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी सूचना जो हमें मिलती है हम उनको ही सच मान लेते हैं और भीड़ का हिस्सा मानकर हम भी वही करने लगते हैं जो सारे लोग कर रहे होते हैं। और कई बार हमें ये भी डर लगता है कि इससे अलग सोचा तो लोग क्या कहेंगे।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है और इसलिए सुनो सबकी, करो अपने विवेक की, मानो वही जो बुद्धि को ठीक लगे। बुजुर्गों ने कहा है, सुनिए सबकी, करिए मन की। पर मन का मतलब जिद नहीं, विवेक है। स्वतंत्र विचार विद्रोही नहीं, ये जिम्मेदारी है, खुद के दिमाग का इस्तेमाल करने की हमारी जिम्मेदारी।
0: बिल्कुल सही कहा, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि बातों के साथ साथ गीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए।
1: चलिए

0: चंचल
1: बोलिए।
0: देखो ऐसा लगता है ना कि भाई छोटे छोटे हम वो किस्सा कहानी जो पड़ी है बूंद बूंद से जो घड़ा घड़ा जो भरता है
1: जी।
0: बस ठीक उसी तरह हमारी छोटी छोटी आदतें ही जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाती
1: हैं। सही कहा, हम सब चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे।

0: घर व्यवस्थित रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे, जीवन में खुशहाली आए, लेकिन इसके लिए हमेशा बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है, छोटी सी शुरुआत भी बहुत बड़े परिणाम दे सकती है ना दीपा?
1: बिल्कुल सही कहा। तो देखो चलिए जान ही लेते हैं आपकी ज़िंदगी, ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें कौन से छोटे छोटे बदलाव हम कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले शुरुआत होती है अपनी सुबह से, अच्छी आदतों से हमें करना चाहिए। उठते ही मोबाइल देखने के ये जो आदत है उसके बदले में थोड़ा सा टहल लें, घर के अंदर ही ताज़ी हवा ले लें, या हल्का सा बिल्कुल स्ट्रेचिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है ना वो कर लें। और छोटी सी आदत ये देखो हमें दिन भर ऊर्जावान रहने में मदद कर सकती है।
0: इसके अलावा एक छोटा सा दूसरा बदलाव हम ये भी कर सकते हैं कि अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव ले आएं, पर्याप्त रूप से पानी पिएं, फल सब्जियाँ खाएं, जंक फूड का सेवन थोड़ा सा कम कर दें। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए ज़रूरी ये नहीं कि हम सब कुछ एकदम से बदल दें, लेकिन छोटी छोटी सी आदतों से भी हम अपना सकते हैं और मौसम में जो फल सब्जियां आते हैं उनको अपने आहार में ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और सही समय का हमें समय का जो है सही इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कभी कभी होता है ना बेवजह समय बिताने लगते हैं, हम पता ही नहीं चलता कितना वक्त निकल जाता है। इसके बदले में हम कुछ समय किताबें पढ़ने में लगाना चाहिए, कुछ समय को और नई चीज़ें सीखने का या अपने शौक पूरे करने में भी हम व्यतीत कर सकते हैं अपना समय। और रोज़ के 15 मिनट भी धीरे धीरे अगर कुछ सीखा तो समझ लीजिए सच में बहुत कुछ सीखा।
0: एक छोटा सा संदेश इसके बारे में बड़ा अच्छा आया है कि छोटी आदतों में बदलाव करने से समय के साथ जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम आते हैं। जब आप रोज़ाना खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत छोटी सी करते हैं तो बहुत महीनों या सालों में वो बदलाव बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जैसे कभी कभी छोटी सी बचत बहुत बड़ी बचत बन जाती है, आपका अर्थ मजबूत होता है। सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान या मेडिटेशन, हल्की सैर, छोटी छोटी ये आदतें हैं जो मानसिक शांति, सकारात्मक मानसिकता और बेहतर समय प्रबंधन लाती हैं। और ये छोटी सी जो बातें हैं वो जीवन में बहुत बड़ी खुशियां ले आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। घर को भी साफ सुथरा रखने के लिए रोज़ केवल 10-15 मिनट अगर हम निकाल लें तो सच में देखो जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित रहेंगी। हर दिन ऐसा नहीं है कि लंबी चौड़ी, आज हम बोलते हैं ना कि संडे है अब आज हम सफाई करेंगे, अगर हर रोज़ भी थोड़ा थोड़ा समय निकाला तो घर आपका व्यवस्थित रहेगा।
0: एक छोटा सा संदेश है लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात लिखी कि रोज़ व्यायाम करना, सैर करना कुछ देर भी अगर आप करते हैं, रोज़ नहीं हो पाता तो समय के अंतराल पर करिए, लेकिन इसे पता लगता है कि धीरे धीरे शरीर जो है वो स्वस्थ होता जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आर्थिक स्थिति को भी हम बेहतर बना सकते हैं छोटी छोटी आदतों से, जैसे गैर ज़रूरी खर्चों से बचें और ख़रीदारी से पहले सोच लें कि क्या सच में वो चीज़ हमें ज़रूरत है उसकी, क्योंकि फट से ऐसे ही ऑनलाइन ये जो क्लिक कर देते हैं हम बटन, उसके पहले ज़रा सा उंगली हटा लीजिए और सोच लीजिए और धीरे धीरे यही छोटी बचत आपकी बड़ी बचत में तब्दील हो सकती है।
0: ऐसे ही एक संदेश कहता है कि ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे कदम जैसे मीठा बोलना, समय की कद्र करना, दूसरों की मदद करना, ये भी हमारे जीवन को खूबसूरत बना देती हैं। बस छोटी सी शुरुआत है तो बड़ा बदलाव भी एक दिन ज़रूर हो जाएगा।
1: बिल्कुल, हम फिर आ जाते हैं अब एक और ज़रूरी आदत पर, सकारात्मक सोच की। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान खोजने की हमें कोशिश करना चाहिए चंचल। और जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों का उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त नहीं करते, कम करते हैं ज़रा। छोटी सी ही बात क्यों ना सही कि मेरा भरा पूरा परिवार है, सब लोग मेरे साथ हैं, हम इसके लिए भी अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक ही दिन में सारी आदतें देखिए बदलने वाली नहीं है, इसकी कोशिश भी हमें करनी नहीं चाहिए। बस शुरुआत एक या दो छोटी अच्छी छोटी छोटी आदतों से करिए, नियमित रूप से उसे अपना कर देखिए तो सही, आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे।
0: एक छोटी सी आदत हमारी भी है कि हम बीच में गाने सुना देते हैं, वो हमें रोकनी नहीं।
1: ये तो बहुत अच्छी आदत है।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: भाई हम बहुत बोल रहे हैं, हम कोई भी काम करें चाहे वो बोलने का हो या कोई शारीरिक श्रम हो, ऊर्जा कैसे मिलती है, हमें खाने से ऊर्जा मिलती है।
5: बिल्कुल सही
4: तो
5: का।
4: मेरे कहने का इशारा आप समझ गए कि अब कुछ खान पान की बात भी होनी चाहिए ना?
5: और हमारे यहाँ तो इतने विभिन्न प्रकार के देखो व्यंजन होते हैं, हम हर प्रदेश के व्यंजन को लाने की कोशिश कर रहे हैं और कितने तरह तरह के व्यंजन और रेसिपीज हमने सीखी भी है। आज छत्तीसगढ़ की हम सीख रहे हैं अंगाकर रोटी। ये एक पारंपरिक वहाँ के व्यंजन, प्रसिद्ध और पारंपरिक व्यंजन है। इसे सीधे आग के अंगारों पर पत्तों में लपेटकर पकाया जाता है, इसलिए इसे अंगाकर कहा जाता है। और इसे पान रोटी या पन पूर्वा रोटी भी कहते हैं क्योंकि ये पत्तों में लपेटी जाती है। लेना क्या है इसमें, पका हुआ चावल लेना है या बचा हुआ चावल भी आप ले सकते हैं, एक कटोरी चावल का आटा, एक कटोरी नमक अपने हिसाब से ले लीजिए, और केले के पत्ते या पलाश के आपको अगर मिल जाए तो वो वाले पत्ते, गोबर के उपले या लकड़ी के अंगारे अगर हो सके तो। बनाना कैसे, सबसे पहले पके हुए चावल को अच्छी तरह मसल ले, इसमें चावल का आटा और नमक मिलाकर नरम आटा गूंद ले। अब जो पत्ते आपने लिए हैं पलाश के या केले के पत्ते, उनको आपस में रखना है, आटे की मोटी लोई बनाकर पत्ते के इसके ऊपर रखना है और ऊपर से एक और पत्ता ढकना है। अब जो तैयार पत्ते वाली रोटी को जलते हुए कंडे या कोयले के अंगारे पर रखना है और ऊपर से भी आपको गर्म अंगारे डाल देना है। ये नहीं है तो फिर अब आप घर पे जो तवा है उसके ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो 15-20 मिनट तक पकने दीजिए और पत्तों की देखिए

0: सौंधी सौंधी खुशबू रोटी में आ जाती है। पत्ते हटाकर गर्मा गर्म अंगाकर रोटी को टमाटर की पतली चटनी या घी के साथ परोसा जाता है वहाँ पर पारंपरिक रूप से।
1: बिल्कुल, ऐसे नए व्यंजन देखते हैं तो उनको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और अब हम सुन लेते हैं गीत,
0: चलिए।

0: चंचल, हमसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, फरा की जो व्यंजन विधि जल्दी से बता दो।
1: तो भाई देखिए, हमारे श्रोताओं ने इसकी व्यंजन विधि लिखकर भेजी है और वो ये भी बता रहे हैं कि फरा उनके यहाँ करवा चौथ पर बनाया जाता है, तो करवा चौथ भी आने वाली है, थोड़ा सा ही इंतजार रह गया है। लेकिन आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि पर अब तो जब भी मन करता है ना तभी ये बना लिया जाता है। इसके लिए चावल के आटे को सान कर उसकी लोई में चने की पिसी हुई दाल में नमक, मिर्ची, अदरक, ये जो चीज़ें हैं इनको बारीक काट लिया जाता है और इनको मिलाकर भरकर उबलते पानी में डालते हैं। कुछ ही देर में फरे हल्के होकर ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं और थोड़े से कड़े हो जाते हैं, इनके जो ऊपर का आटे का कवर है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है। और फिर पानी से निकाल कर छोटे टुकड़ों में इन्हें काट कर हींग और जीरे से छौंका लगा लिया जाता है। फिर हरे धनिया की चटनी के साथ इनको खाया जाता है कि बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। तो फरा जो है वो कई प्रांतों में बनाया जाता है, हर प्रांत में बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। चावल के आटे के साथ बहुत सारे लोग इसमें आटे के साथ भी बनाते हैं और जो ताज़ा चने की दाल को पीसकर बनाई जाती है, जो मसालों का इसमें प्रोपोर्शन है वो भी थोड़ा बहुत बदल जाता है। कुछ इसमें पीसा हुआ लहसुन अदरक भी डाल देते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च आपको ज़रूरत के अनुसार, अगर जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से डालिए या ना डालिए, तो ये बदलाव अपने हिसाब से किए जा सकते
0: हैं।
1: और फरा को कहीं कहीं मुठिया भी कहा
0: जाता है। अच्छा, एक संदेश और छोटा सा है कि हर रोज एक गुल्लक में कुछ रुपए जमा करते हैं तो एक अंतराल पर वही छोटी छोटी बचत से कितना पैसा अनजाने में जमा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता।
1: बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे गाने जमा हो जाते हैं, लेकिन ये जो सुन रहे हैं ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: घड़ी की सुइयां अभी हमें वक्त नहीं दे रही हैं कि हम और बातें करें, तो इजाजत ले लेते हैं सभी को चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में
2: मुझे आमंत्रित करने के लिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है, ये डॉक्टर्स के लिए नया एक्सपीरियंस रहता है ना।
1: अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है और आप कहाँ के रहने वाले हैं संदीप जी?
2: मैं रहने वाला प्रयागराज इलाहाबाद, और पढ़ाई मैंने की है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है।
2: और उसके बाद फिर मैं दिल्ली मूव कर गया था, वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में था, सफदरजंग हॉस्पिटल में था। उसके बाद फिर मुंबई की तरफ रुख किया।
1: जी जी,
2: यहाँ पे मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल है, बहुत प्राचीन हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर और बहुत अच्छा काम होता है इंटेंसिव केयर का। तो वो फिर मैंने वहाँ इंटेंसिव केयर की ट्रेनिंग की।
1: आपने इंटेंसिव केयर को क्यों चुना अपने स्पेशलाइजेशन के लिए?
2: हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको लगता है डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि लाइफ सेवर हो जो।
1: हाँ,
2: और वो केसेस जितने भी हैं वो इमरजेंसी में ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो ऐसा लगता था, मतलब डॉक्टर सबका रोल है, ऐसा नहीं है कि जो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट है उनका सब एक टीम वर्क होता है, लेकिन वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब इंटेंसिव केयर का डॉक्टर जो रहता है, वो जब यंग होते हैं, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, तो लगता है नहीं यार जान बचानी है कम से। तो वो एक था इंटरेस्टिंग मेरी तरफ से, ऐसा कि भाई चैलेंजेस रहते हैं, हर दिन आप एक नया चैलेंज देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी मेडिकल साइंस बहुत तरक्की किया है लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है अभी भी।
1: बिल्कुल।
2: तो वो है
1: एक चीज़ जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कभी भी कोई मरीज आईसीयू में जाता है तो परिवार में एक तरह से पैनिक हो जाता है कि आईसीयू में जाने का मतलब अमूमन ये माना जाता है कि जान बचने वाली नहीं है। एक इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर आप इन बातों को थोड़ा क्लियर कीजिए कि आईसीयू में जाने का मतलब बहुत पैनिक नहीं है, वहां से लोग लौट कर भी आते हैं।
2: नहीं नहीं नहीं सर, अभी तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं
1: जी,
2: और जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है। 100 में से 99 तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ 90 से ऊपर लोग वापस आते हैं। ये ऑब्वियसली कि आप किसी भी पेशेंट को, उसके सगे संबंधी को बोलेंगे कि भाई इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत है, तो थोड़ा तो लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतने डरने की बात नहीं है। और इस भ्रम की वजह से भी कि इंटेंसिव केयर यूनिट पर नहीं जाना चाहिए, हमको घर पे ही रख दो या हम वार्ड में ट्रीटमेंट लेंगे, ये कभी कभी समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप सही समय पे सही जगह पहुंच जाते हैं, ये हर फील्ड में है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सही समय पे सही जगह पहुंच गए तो आपके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अब वो भी नहीं है कि पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लास्ट स्टेज में आईसीयू, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम सिर्फ मॉनिटरिंग कि भाई इनके वाइटल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर पल्स ऊपर नीचे हो रहा है, ऑक्सीजनेशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो सिर्फ एक क्लोज मॉनिटरिंग के लिए भी शिफ्ट करते हैं।
1: एक बहुत नॉर्मल परिस्थिति में, यानी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति ना हो, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए भी किया।
2: आप उस तरफ ना जा पाए, नॉर्मल सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करने से एक बीच का एक रास्ता बना भी है कि ब्रेक कर दिया हमने।
1: हाँ,
2: एक पेशेंट थोड़ा सा बैड हुआ, उसको हमने इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया और उसको स्टेबलाइज कर दिया, और 80-90% केसेस स्टेबलाइज हो जाते हैं। सर
1: आपसे बात करते हुए जाने क्यों मुझे कोरोना का समय याद आ गया, क्योंकि आईसीयू की इतनी बातें हुई उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उन्हें तो याद करते हुए भी जरा डर लगता
2: बहुत,
1: है।
2: बहुत बहुत
1: वो कितना चैलेंजिंग वक्त था आप लोगों के लिए, जो खास तौर पर आईसीयू स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स,
2: मेरे ख्याल से जो भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है ना सर, उसके लिए तो मतलब शुरुआत के दौर में था कि कुछ पता ही नहीं था ना इस बीमारी के बारे में। ये था कि भाई कोरोना हुआ और वो नहीं बचेगा, और शुरू में मेडिकल साइंस को भी नहीं पता था, ट्रायल एरर हिट एंड ट्रायल चल रहा था, भाई ये दे दो ये दे दो। तो हमें याद है कि जो हमारा फर्स्ट टाइम जब हमने एक अलग से इसको बनाया, भाई कोरोना केयर यूनिट रहेगा, यहाँ पे अलग से पेशेंट रहेंगे, तो वो बहुत स्केरी था, क्योंकि हमको खुद भी नहीं पता था कि

0: क्या होगा। हमारा मरीज है बट दुनिया को कुछ पता नहीं था कि किस तरफ हम जा रहे हैं।
1: हम एक अननोन राक्षस से लड़ रहे हैं।
0: हाँ हाँ और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसको किया, ऐसा नहीं, हम लोगों ने बहुत जान बचाई, बहुत सी नहीं बचे वो तो उस पर क्या कमेंट किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे से किया उसको, हम लोग उस समय को निकाल पाए।
1: आपके लिए इमोशनली ये कितना मुश्किल होता है कि आप एक ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं मेडिकल के जहाँ जाने बच भी जाती हैं और चली भी जाती हैं,
0: हाँ,
1: तो किसी पेशेंट को खो देना इमोशनली कितना बड़ा झटका होता है आपके लिए और रोजमर्रा की जिंदगी में कितना भारी पड़ता है।
0: जो भी हम लोग है तो इंसान ही ना
1: जी,
0: वो पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट वो फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी नहीं बदल जाएगी। और उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, किसी को सगा संबंधी आप स्थिति में आ जाए तो उससे बड़ा नुकसान तो कुछ भी नहीं होता ना। तो बहुत 1-2 साल हमको वही लग जाता है सीखने में कि बात कैसे करनी है, बैड न्यूज़ कैसे आपको सामने वाले को बताना है वो टच बनाए रखे हुए, मतलब आप मशीन से तो बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया अब नहीं हो सकता, उसके लिए भी एक हमारे जो सीनियर्स डॉक्टर से वो आपको कभी रूड नहीं होना है, भाई आप सामान नहीं बेच रहे ना यार, इंसान की जिंदगी का सवाल है, तो बात भी हमारी हो जाए, उनको हम अंधेरे में भी नहीं रखे, वो भी बताना एक ज़रूरी होता है कि भाई कुछ कुछ बीमारियां हैं जिनका कुछ इलाज नहीं है, वो न्यूज़ देना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, रोज का चैलेंज है सर वो।
1: जी जी
0: कि कैसे आप उस चीज को रखें कि अभी है तो है, कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते,
1: जी
0: वो बताना तो होता ही है।
1: बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। बदलते वक्त के साथ भारत में जो ICU फैसिलिटीज़ हैं उनमें किस तरह का बदलाव आया है? जब आप पढ़कर निकले थे तब से अब तक भी बहुत वक्त बीत गया,
0: आसमान तो ज़मीन का फर्क हो गया सर। और इसलिए मैं डॉक्टर में सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कभी इग्नोर ना करें, सही बीमारी सही समय पर पकड़ आ गई तो मेडिकल साइंस हमारा इतना तरक्की कर गया है कि आप हर बीमारी में कम से कम एक लाइफ स्टाइल तो आपको अच्छी हम दे ही सकते हैं, भले वो कैंसर का ही मरीज क्यों ना हो, जो जानलेवा बीमारियां हैं। और आजकल खासकर आप देख रहे हैं हार्ट अटैक अचानक, डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी कभी ये रहता है कि भाई जांच क्यों कर रहे हैं आप, दोनों चीज़ें हैं मैं मानता हूँ कि भाई ओवर इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, बट आप अगर हमारी तरफ बैठ के देखेंगे ना तो हमारे दिमाग में रहता है यार ये मेरे पास होके जा रहा है, कुछ बच ना जाए यार, यंग है, फिट है, एज अ डॉक्टर
1: कोई कमी ना रह जाए।
0: हाँ, कल को बाद में अफसोस नहीं है यार, इसका ECG कर लेते भाई, छोटी सी जांच। अक्सर आप देखते होंगे चेस्ट पेन 90% एसिडिटी है, हमारे हिंदुस्तान में तो हर चीज एसिडिटी रहती है
1: जी।
0: हाँ, वो सर बड़ा पाव खा लिया था
1: जी,
0: मैं भी मानता हूँ, लेकिन यार वो थोड़ा बेसिक तो चाहिए हमको कि ये चेस्ट पेन है वो एसिडिटी का है या कार्डियक है, ये जो हाथ पांव में कमजोरी है ये स्ट्रोक है या आपके नहीं सोने की वजह से है या ना खाने की वजह से, ये पहचानने के लिए जांच तो ज़रूरी है, बेसिक ये अवेयरनेस थोड़ा हमको आम पब्लिक तक भी फैलानी है, मतलब तो आपकी पहुंच गांव-गांव कोने-कोने में है,
1: तो ये पूरी दुनिया में।
0: हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा माध्यम है ये कि बेसिक करवा लो यार, बेसिक जांच। और आजकल तो स्वास्थ्य केंद्र में भी हमारे भारत सरकार की तरफ से तो हर चीजें हैं कि आप बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है, कभी भी कमजोरी लग रही है 4-5 दिन ठीक है, उसके बाद लग रही है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, छोटी सी जांच कर लीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि वो जांच नॉर्मल हो, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन बिना उसके ये थोड़ा है अभी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अवेयरनेस आ रही है बट अभी भी बहुत ज़रूरत है इसमें, खासकर जो इस तरह की जो हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, ये बहुत अर्ली स्टेज में आ गया तो हम लगभग लगभग पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं।
1: आपने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी मुद्दा उठाया कि हमको शरीर के संकेतों को पहचानना,
0: हाँ,
1: और पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंभीर बीमारियों में वो कौन से संकेत हैं जो शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ के इग्नोर करते हैं, इस बारे में थोड़ा तफसील से
0: बहुत
1: बताइए।
0: अच्छा सवाल पूछा सर आपने। देखिए नेचर ना आपको साइन सिम्टम सब देता है, नेचर किसी के साथ ऐसा बेईमानी नहीं करता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो अलग बात है। कोई भी अगर 6-7 दिन मान लीजिए आप थकान लग रही है तो 6-7 दिन, 7 का फिगर रखिए, 7 डेज का एक याद रखना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो इस तरह जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं कि भाई कमजोरी लग रही है, कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, वजन कम लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, शहर में तो ठीक है दिल्ली मुंबई में है तो आप

0: हॉस्पिटल्स में आप तुरंत, लेकिन छोटे जगह पे भी है ना, तो आसपास आजकल स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाके डॉक्टर को बताइए ज़रूर। ये तो नॉर्मल जो सिम्टम है भाई, नींद नहीं आ रही है यार, भूख नहीं लग रही है, हो सकता है नॉर्मल ही होगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़ी बीमारी का संकेत भी रहता है। और कुछ चीज़ें जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो उतने जल्दी डॉक्टर को संपर्क करना है, वो भी मैं, जैसे आपको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिर्फ चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं, आपके जॉज में पेन हो रहा है, आपके ईयर में पेन हो रहा है, और आपको लग रहा है हेडेक हो रहा है, और आपको लग रहा है थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। और आजकल खासकर स्ट्रोक में थोड़ा भी कहीं भी आपको कमजोरी, देखिए एक जनरल कमजोरी होना एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी, अगर विटामिन की कमी है तो सिर्फ दाएं हाथ में कमजोरी नहीं होगी, सिर्फ आपका बाएं उंगली में ऐसा कोई सेंसेशन जा रहा है तो विटामिन की कमी है, सिर्फ वहां नहीं होगा, ये स्ट्रोक का अर्ली साइन हो सकता है।
1: यानी एबनॉर्मेलिटीज पर ध्यान देना
0: हाँ
1: जरूरी है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज को ना, हर चीज हम सिर्फ शरीर को ही इग्नोर करते हैं, बाकी दीवार से कहीं पानी टपक रहा है तो अरे यार पानी क्यों गिर रहा है, गाड़ी में हवा कम है, हवा का कम है, मोबाइल का ये स्क्रीन क्यों, लेकिन जिस शरीर के सहारे हम सारी ज़िंदगी निकालते हैं ना, थोड़ा दिखाई ठीक है वो आंखों में लगता है चश्मा, वो इग्नोर करते हैं हम,
1: जो जरूरी बातें
0: हाँ
1: उनको
0: वो
1: इग्नोर
0: इग्नोर
1: करते हैं
0: करते हैं।
1: जी।
0: दांत में दर्द ठीक है यार, कभी कभी वो दांत दर्द हार्ट या कार्डियक का भी तरफ आप लेके जा सकता है, बट हम लोग थोड़े इंडियन लोग हैं ना, वो खाने पे डाल देते हैं, ये गलत नहीं है, होता है ऐसा नहीं, 60-70% वैसे ही रहता है, बट हाँ ये साइन है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि यार ये पूछने में क्या जाता है, आजकल तो इतने सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप है, हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा है, तो आप जो भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं उनसे आप डिस्कस तो कर सकते हैं, वो आपको गाइड तो कर देंगे, है ना।
1: डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बातें हुई और सेहतनामा कार्यक्रम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है गाने, तो यहाँ एक गाने का ब्रेक लिया जाए और आपकी पसंद का पहला गाना सुनवाया जाए।
0: हाँ ये ज़रूरी है, ये डॉक्टर लोग के लिए भी ज़रूरी है और मरीजों के लिए भी ज़रूरी है।
1: जी
0: तो किशोर दा का एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये
1: जी
0: जीवन है इस जीवन का बहुत
1: देखिए,
0: बेहतरीन,
1: मुझे तो ये पता है कि आप गुनगुनाते हैं, तो ऐसे तो नहीं बच के जाइएगा
0: थोड़ा सा गुनगुना देते हैं।
1: जी।

0: डॉक्टर संदीप, बातें हो रही हैं इंटेंसिव केयर की। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आईसीयू स्पेशलिस्ट की दिनचर्या क्या होती है, आप किस तरह से क्या काम करते हैं?
1: इसमें थोड़ा हमारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप डॉक्टर बने हैं
0: जी,
1: आप आर्मी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, तो थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रात की नींद ज़रूरी है, लेकिन एक कॉल अगर किसी मरीज का आ रहा है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं।
0: तो किसी भी वक्त मुस्तैदी से जाना पड़ सकता है।
1: हाँ, कुछ प्रोफेशन है ऐसे, डॉक्टर हुआ, आर्मी वन हुए, पुलिस वाले हमारे हुए, ये इनका समय का क्या ही करेंगे सर।
0: जी जी बिल्कुल,
1: बाकी लोग चैन से सोएं तो कोई तो जगेगा।
0: बिल्कुल,
1: बट हाँ, फिर भी हम डॉक्टर हैं हम लोग, तो हमें पता होता है कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो नींद कहाँ कैसे पूरी कर सकते हैं। और जैसे हर आदमी को चाहिए अपने दिनचर्या में थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान रखना, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे उठना। और आजकल सबसे बड़ा ना फैक्टर हो गया है स्ट्रेस सर।
0: जी जी
1: ये आप जब मेडिकल की किताबें पढ़ेंगे ना, तो हर बीमारी के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लिखा रहता है।
0: जी,
1: दिल की बीमारी हो, वो दिमाग की बीमारी हो,
0: थायराइड हो,
1: इवन कैंसर, कोई भी स्ट्रेस में है उसको कोई भी बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है, ये आप मान के रखिए। और हर को ऊपर वाला कुछ ना कुछ देता है, कोई म्यूजिक है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गार्डनिंग, कुछ ना कुछ एक शौक रखिए और अपने दिनचर्या में से 15-20 मिनट निकालिए उस चीज़ के लिए, कम से कम डिस्कनेक्ट होइए ये स्ट्रेस से।
0: जी,
1: वो बहुत ज़रूरी है सर, मेरे ख्याल से इंटेंसिव केयर यूनिट तक बात ही ना आए यार, बाहरी केयर कर लेते हैं।
0: जी, मतलब जीवन में एक शांत मन और एक स्वस्थ तन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टेंशन से दूर रहें, हम दबावों से दूर रहें।
1: वो जो WHO की डेफिनेशन आती है ना हेल्थ की, उसमें शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है।
0: जी जी,
1: आप स्ट्रेस में हैं तो आप कुछ भी इंजॉय थोड़ी ना कर पाइएगा।
0: बिल्कुल,
1: आपका हेडेक हो रहा है तो आप कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितने भी अच्छे गाने, आप इंजॉय तो नहीं कर सकते ना। किसी भी चीज़ को इंजॉय करने के लिए आपका स्वस्थ होना, किसी भी चीज़ को इंजॉय, पैसा भी है तो किस काम का, जो आप हमको ही देने के लिए रखे हैं, मतलब नहीं है ना।
0: अब बिल्कुल,
1: एज अ डॉक्टर तो सबको ये एडवाइस है कि अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने दिनचर्या पे बहुत ध्यान रखें। और बहुत मुश्किल काम नहीं है सर।
0: जी जी,
1: बहुत सिंपल ही, ऐसा कुछ आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। समय पे सोना है, समय पे खाना है, मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करना। दूर तो नहीं रह सकते, कोशिश कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, बहुत सारी बातें अलग अलग मुद्दों पर हो रही हैं। और डॉक्टर संदीप, मैं ये, चूंकि बारिश और बारिश के बाद के मौसम के ये दिन, जहां पूरे देश में अलग अलग तरह के बुखार फैले हुए हैं जो धीरे धीरे कई परिस्थितियों में गंभीर रूप ले लेते हैं और ICU तक मामला चला जाता है, इस मामले को ज़रा हमें समझाएं और इससे जुड़ी हुई सावधानियाँ बताएं।
1: हाँ, ये बहुत अच्छा, इस समय को देखते हुए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मलेरिया, डेंगू, जब भी बारिश होती है हमारे यहाँ, तो बारिश का एक मौसम का एक अलग मज़ा है, लेकिन मज़ा तभी तक है जब आप स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो उसमें भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी साइन सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है, और ख़ासकर इसमें बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, थकावट, बारिश के सीज़न में इन सब को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ काउंटर से दवा लेके नहीं खानी है सर। बुखार अगर 24-48 घंटे है तो एक बार जरूर संपर्क करें डॉक्टर से। इसमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आप हाइड्रेशन मेंटेन करें,
0: जिस पर आजकल ध्यान नहीं होता, क्योंकि लोग पंखे की हवा में होते हैं,
1: नहीं,
0: एसी में होते हैं।

0: हैं, पानी जो है वो मोस्ट इग्नोर्ड चीज है।
1: डेंगू का ही मरीज है तो उसका हम क्या करते हैं, उसको आराम कराते हैं, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं और सिम्टम जो है उसकी बुखार वगैरह की दवा दे देते हैं।
0: जी जी,
1: आप देखेंगे ज़्यादातर बीमारी को कुदरत ही ठीक करता, आप सहारा दीजिए। डॉक्टर का काम यही होता है कि हम सपोर्ट कर दें, बॉडी को सपोर्ट कर दें और नेचर अपने आप आपको क्योर करता है।
0: जी, एक समस्या जो बहुत बड़ी है कि बुखार आया या जुकाम हुआ तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग ले लेते हैं, घर पर पड़ी हुई है।
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ, बराबर
0: पैरासीटामोल उठा के ले लिया,
1: सही बात है
0: ना। तो ये जो चीजें हैं इनसे सावधान कैसे करें लोगों को, इतने सालों से ये बात चली आ रही है पर ओवर द काउंटर दवाओं का इस्तेमाल रुकता नहीं है।
1: ये बहुत बड़ी समस्या है सर, खासकर एंटीबायोटिक्स जो हम लोग मिसयूज गए और उठा के ले आए। यहाँ तो बड़े शहरों में तो ठीक है, जल्दी मिलता नहीं है, बाकी जगह तो आप जाइए और लेके आ जाइए। एक बुखार आया तो एक टैबलेट मान लिया, ठीक है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है, दूर है, एक क्रोसिन ले लिया। लेकिन अगर बुखार 24 घंटे से ज़्यादा का है तो एक छोटा सा ब्लड रिपोर्ट तो करना ही चाहिए आज के सिनेरियो में। कोई भी एक्सपर्ट इसीलिए बनाए भी जाते हैं, डॉक्टर्स इसीलिए हैं। और अभी तो बहुत सुविधाएं हैं सर, अभी तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा, बहुत अभी तो हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है, थोड़ा भी है तो आपको एक सही दिशा तो मिल ही जाती है। मैं तो बिल्कुल बोलूँगा ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, उसका बहुत नुकसान होता है और उसके ही परिणाम है कि आजकल आप देख रहे हैं किडनी की बीमारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, लीवर की बीमारियाँ, ये सब ये जो दुरुपयोग है ना, किसी भी चीज़ का आप मिसयूज़ करेंगे तो ये उसका ही परिणाम है कि आजकल बहुत इस तरह की बीमारियां आपको देखने को मिल रही हैं।
0: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बीते दिनों एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया जाता तो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है जो व्यक्ति को आगे के लिए दिक्कत दे सकता है।
1: मैं आपको बताऊं कि जब हम मेडिकल में पढ़ते थे 2006 तक की बात बताऊं तो उस वक्त था कि 10 20 25 रुपए के एंटीबायोटिक में आदमी ठीक हो जाया करता था। आज की तारीख में सर जो रेजिस्टेंस जो हो रहा है, लोग बोलते हैं हॉस्पिटल का बिल आ रहा है, अरे एक दिन का एंटीबायोटिक की दवा की कीमत ही हो जाती है 10,000। हायर एंटीबायोटिक्स इतने, क्योंकि ये वही है, हमने यूज़ कर करके मिस यूज़ करके उसका इतना रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है
0: कि दवाएं असर ही नहीं कर रही हैं।
1: आपको हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ रहा है, वो महंगी है और प्लस जान के लिए कितना खतरा है एंटीबायोटिक। हमको भी लिखने से पहले दो बार सोचना पड़ता है, लेकिन हाँ बस कोई ऑप्शन रहता नहीं है, जान बचाने के लिए लिखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत गलत है और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही डिजास्टरस हो सकता है अगर हम अभी नहीं सुधरे। ये अभी भी वक्त है सुधर जाएं, नहीं तो सिर्फ 1929 में उसी वक्त पेनिसिलिन आई थी जिसने सारी सृष्टि को बचा लिया था। वो स्थिति फिर आने वाली है ऐसा लगता है, जिस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो ही स्थिति, अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं होते तो अभी तक सृष्टि खत्म हो चुकी होती। तो वो स्थिति हम फिर इंसान लोग पैदा ना करें।
0: ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, एक आम आदमी को एक आम भाषा में जरा समझाइए।
1: देखिए रेजिस्टेंस का आपको वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और वही एंटीबायोटिक चल रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इन्फेक्शन नहीं है, किसी और का इन्फेक्शन है, दवा कुछ और ले रहे हैं तो धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लेता है कि सिर्फ नॉर्मल एंटीबायोटिक फिर उस पर काम ही नहीं करती है, उसको आप वक्त दे देते हैं। ये नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए कि आपने जैसे अधमरा सांप ना छोड़ते नहीं है, बाद में आपको वो डसने वाला है, वो बैक्टीरिया का वही हाल है, आपने उसको हाफ ट्रीटमेंट पार्शियल ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया, वो फिर बाद में जब रिबाउंड करता है ना तो वो एक नॉर्मल, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि बाबा खुद से एंटीबायोटिक थेरेपी तो बिल्कुल मत कीजिए आप
0: जी,
1: स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के निरीक्षण में ही कीजिए उसको।
0: तो इस बीच में जो बातें हुई उसका सार ये है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर केमिस्ट पर जाकर एक तो ओवर द काउंटर दवाएं अपनी तरफ से इलाज ना करें,
1: ना करें।
0: दूसरा ये है कि बिना बात के एंटीबायोटिक आधे अधूरे कोर्स कर लेने से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो हम सब इंसानों के लिए बहुत खतरनाक बनता
1: है, बहुत बड़ा इंसानियत के लिए वॉर से ज्यादा खतरनाक ये बैक्टीरिया होने वाले हैं जिस तरह से ये हमारे सामने आ रहे हैं चीजें।
0: जी
1: इंटेंसिव केयर यूनिट पे हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया है तो सब पैन रेजिस्टेंस की, कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही, एक काम कर रही है सिर्फ। सपोज आने वाले समय वो भी नहीं काम किया
0: तो कुछ भी काम नहीं
1: तो
0: कर,
1: क्या करेंगे हम। ये एक बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है अगर हम सही समय पे हम नहीं सुधरे तो।
0: जी डॉक्टर साहब, अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
1: हाँ हाँ बहुत।
0: तो बाप की पसंद का अगला गाना कौन सा होगा?
1: एक कर्ज फिल्म का ओम शांति ओम।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा से बातचीत हो रही है, ये जो आईसीयू के विशेषज्ञ हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, वापस एक खतरनाक जो जगह आईसीयू उसकी तरफ चलते हैं। जब कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज आता है, मान लीजिए उसको स्ट्रोक है, अटैक है या कोई और बीमारी है, तो एक आईसीयू में तैनात डॉक्टर क्या प्रोसेस करता है, वो क्या प्रोटोकॉल होता है उसका?
1: सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा होता है कि उसको स्टेबलाइज करना।
0: जी,
1: एक नॉर्मल कि भाई पल्स, बीपी, ऑक्सीजन, पेशाब ठीक से बन रहा है, इतनी चीजें बेसिक हैं। तो फर्स्ट हमारा ये रहता है कि इसको स्टेबलाइज करें। इसको
0: आप लोग बहुत टेंशन के दौरान काम करते हैं, क्योंकि आईसीयू का मतलब है कि बहुत पैनिक में।
1: वो हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि पैनिक नहीं होना है,
0: मरीज और उसके साथी भले पैनिक हो,
1: क्योंकि उस स्थिति में फिर आपका दिमाग नहीं काम करता है।
0: जी,
1: स्ट्रेसफुल कंडीशन होती, पैनिक से हम लोग नहीं मतलब बचते हैं कि भाई, क्योंकि अभी हमको हमारे पास टारगेट सामने है कि भाई इसकी जान बचानी है। जितना हमने सीखा है, जितना हमने पढ़ा है, उसका सही उपयोग करके इस आदमी को इस कंडीशन से बाहर निकालना है। फिर हमारी एक विशेषज्ञ की टीम होती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे किडनी का है तो किडनी के स्पेशलिस्ट को, ब्रेन का है तो ब्रेन के स्पेशलिस्ट को, और फिर हम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि स्टेबलाइज करते हुए इसकी वजह निकालनी, क्यों इस कंडीशन में पहुंचा। ट्रीट द कॉज हर का रहता है कि भाई इन्फेक्शन हुआ तो कहां से आ रहा है, यूरिन से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, वो पता लगाना, फिर अकॉर्डिंग टू दैट उसको ट्रीट करना। यही बेसिकली इंटेंसिव केयर ही होता है कि आप पहले तो उसको स्टेबलाइज किया, उसके ऑक्सीजन को, उसके ब्लड प्रेशर को, उसके हार्ट रेट को, फिर पता लगाया एंजियोग्राफी करके भाई किस जगह से क्लॉट है, उसको वहाँ से दूर किया। उसमें भी स्टेजिंग होती है, वो तो बात की चीज़ें हैं, बट रिवार्डिंग भी बहुत है सर। जब आपका मरीज अच्छा होता है तो उससे अच्छा आपको कुछ, फिर वो पैसा दे ना दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जब हंस के उसके परिवार वाले बोलते हैं ना, सर आपने बचा लिया
0: जी,
1: तो उससे बड़ा रिवार्ड हम डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं होता है।
0: और
1: बहुत अच्छा लगता है ऐसा, हमेशा स्ट्रेसफुल नहीं, जब वो रिजल्ट मिलता है ना उसका, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। आपने अलग अलग शहरों के छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है और एक बड़ा अनुभव आपके साथ है, तो अपने करियर की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त आपको याद आ रही हो।
1: 26/11 हुआ था, बहुत दुखद हादसा था और हम लोग उस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल में थे।
0: ओहो, बिल्कुल आप उसी इलाके में थे।
1: उसी में थे, तो इंटेंसिव केयर में हमारे कई कमांडोज भी आए थे। तो एक कमांडो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उनके सीने में बहुत सी गोलियां लग गई थी। तो हमने उनसे जब छुट्टी हो रही थी तो हमने पूछा, सर कैसा रहा? कहा, सर उतना दर्द तो गोली से नहीं हो रहा जितना दर्द आप जब गोली निकाल रहे थे तब हो रहा था। हमने कहा, सर आप गोली से नहीं निकाले, सर उसके लिए हम यूज टू हैं। जैसा आपने पूछा पैनिक की, वो जब सामने से तो हमारा डर खत्म हो जाता है। वो लगता है इसको टारगेट है, ये हमारे देश का दुश्मन है, इसको खत्म करना है, तो उस वक्त हमको दर्द नहीं महसूस होता। यहाँ पे फिर हम नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना थी। वो मुझे लगा कि यार, हमने पूछा कि सर आप गोलियों से नहीं डरे, आप ये जरा से टांकों से डर रहे हैं? क्या डर नहीं रहे, लेकिन आपको बड़ा मजेदार एक वाक्या सुनाता हूँ।
0: जी,
1: मैं इंटेंसिव केयर में नाइट ड्यूटी में था और रवि साहब एडमिट थे,
0: संगीतकार रवि की।
1: हाँ हाँ, जो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर।
0: जी जी,
1: तो रात का वक्त था और मैं उस वक्त अपने ट्रेनिंग में था, तो 1-2 बजे का वक्त था, तो मैं नोट्स डाल रहा था और जैसे इंडियन लोग थोड़ा हमिंग करते हैं ना, ला ला ला ला ला ला ला, ऐसा करके मैं डाला। तो रवि साहब बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये गाना आपको बहुत पसंद है। कहा, हाँ बहुत अच्छा, क्या कंपोजिशन सर, पहले के कंपोजर क्या कंपोज करते थे, आपको पता है किसने कंपोज किया है? हमने कहा, हाँ एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि साहब, हैं मतलब रवि साहब। आपने मेरा नाम पढ़ा क्या बोर्ड पे, नाम लिखा होता? हमने देखा, देखा हाँ आपका भी सेम नाम है। मैं सेम नहीं, मैं ही रवि साहब हूँ।
0: अरे क्या बात
1: तो बड़ा अच्छा लगा उनसे, और बहुत सी बातें बताई उन्होंने, बड़े बड़े जो हम तो सिर्फ जो सपनों में सोचते थे, जब रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, हमने पूछा जब ठीक हो गए तो कभी फंक्शन वगैरह में आते थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो बड़े जिंदा दिल इंसान थे,
0: कमाल के इंसान। मेरा भी उनसे एक नाता रहा है। और
1: अच्छा अच्छा,
0: वो बहुत दिलचस्प किस्से सुना।
1: हाँ हाँ,
0: उनके पास एक से बढ़ के एक किस्से थे और खुद गाने भी गाया करते थे।
1: अरे अरे, बहुत कमाल के कलाकार।
0: अभी जब गाने की बारी आएगी तो रवि जी का गाना सुना जाएगा। अभी अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए। आपने बताया कि एक कमांडो आए थे, जब कोई बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में घायल व्यक्ति, एक्सीडेंट विक्टिम्स हों या बर्न विक्टिम्स हों, इस तरह के

0: उगाते हैं जो बहुत विभत्स स्थिति में भी होते हैं, अपने उनको कैसे संभालते हैं?
1: मैं सफदरजंग के बंस यूनिट में था जब सरोजनी नगर बम कांड हुआ था।
0: ओ ओ ओ,
1: वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हादसा था वो।
0: जी,
1: और उस वक्त हमको याद है कि हम ड्यूटी खत्म करके हमारे 3 या 4 बजे के करीब हम निकल गए थे एक दिल्ली में। हम ड्यूटी ख़त्म करके अपना कनॉट प्लेस में थोड़ा घूमने घामने गए थे, फिर अचानक फ़ोन बजने लगा, हमारे सर का फ़ोन, तुम लोग कहाँ हो? तो उस वक्त हमको ये पता नहीं था कि ये बम विस्फोट हो चुका है। अंदर से कहा हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ होगा तभी सर कॉल कर रहे हैं। मैं, क्या हो गया सर? बोले, जहाँ भी हो, जितने भी दोस्त हो, सब भाग के सफदरजंग आ जाओ, जो जहाँ भी है, जो सबको फ़ोन करो कि बहुत डॉक्टर्स की ज़रूरत है इस वक्त। फिर समझ में आया कि भाई बहुत बड़ा बम कांड हुआ है। मेरे ख्याल से, मुझे भी याद नहीं है, बट 200-300 लोग की डेथ हुई थी। और उस वक्त जब बॉडी सर आ रही थी ना, तो मतलब हमारा एक दोस्त था, वो देख नहीं पाया, डॉक्टर हो के वो वहाँ पे फेंट कर गया।
0: ओहो,
1: और किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, मतलब वो इतना विभत्स, वो मेरे, मतलब आज भी जब मुझे याद करता हूँ तो मेरे इसे रोंगटे खड़े आती है यार, वो क्या सीन था, मतलब कैसे कैसे करके। और बट ये हमारे बड़ी अच्छी चीज़ है हिंदुस्तान में कि सब लोग, आसपास के सभी लोग, सभी हॉस्पिटल के बगल में एम्स था और मौलाना आजाद, जो भी डॉक्टर जब भी सुना, जिधर से आया वो गाड़ी मोड़ के आ गया। और उस वक्त वो सीन अभी भी नहीं उतरता, कभी भी हम याद करते हैं ना कि वो जो हादसा जो हुआ था, वो बम विस्फोट, वो अभी भी मेरे दिमाग से नहीं उतरता है।
0: ऐसे मुश्किल हालात में भी डॉक्टर जो है अपना संतुलन बना के और लोगों को बचाने का काम करते रहते हैं।
1: ड्यूटी है सर। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है, मैंने बोलता है जब हमारा मरीज अच्छा होके जाता है, जब कोई ठीक हो जाता है, तो बहुत रिवार्डिंग है सर, उससे बड़ा इनाम और क्या मिलेगा।
0: बिल्कुल, आपने ये वादा किया था कि रवि जी से जुड़ी घटना सुनाने के बाद कि अब उनका कोई गाना सुना जाएगा, तो कौन सा गाना सुना जाए?
1: ऐ मेरे जोहरा जो भी सुनते हैं सर।
2: ऐ मेरे

0: डॉक्टर संदीप वर्मा, अब मुंबई में आप अलग अलग हॉस्पिटल से जुड़े रहे हैं और आईसीयू यूनिट में लगातार काम कर रहे हैं। ये जो नया दौर है, इसने आईसीयू यूनिट को किस तरह से बदला है और आपके काम करने की प्रणाली को किस तरह से बदला है?
1: टेक्नोलॉजी का तो सर बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है, बहुत बहुत फायदा हुआ है। अब काफी एडवांस हो गए हैं हम लोग, मतलब हर फील्ड में, रेडियोलॉजी हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, वेंटिलेटर्स की क्वालिटी हो, और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है हर फील्ड में। इवन हम स्ट्रोक का हम वाकया आपको बताएं कि एक हम जब बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, एक बैंक के कर्मचारी थे और वो कुछ साइन कर रहे थे और अचानक वो हाथ से पेन गिर गया उनके। तो उनको लगा कि शायद कुछ हुआ होगा, हर आदमी एक पहली बार में कैसे सोच लेगा कि वो स्ट्रोक है, लेकिन वो बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे ही था वो कार्यालय उनका। तुरंत वो लेके आया और उनका वो पूरा राइट साइड पूरा काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने बताया कि जो वक्त की कीमत,
0: बिल्कुल,
1: तो सही समय पे वो आ गए सर और बिल्कुल 100% रिकवर हो गए। अगर वो सही समय पे नहीं आते सर तो वो हाथ उनका हमेशा के लिए चला जाता
0: जी।
1: तो ये है वक्त, फिल्म की बात की आपने, ये है वक्त पे सही समय पे सही जगह पहुंचने का ना, ये है।
0: ये जो क्रिटिकल टाइम है किसी भी गंभीर बीमारी के मरीज को बचाने के लिए, जो एक शुरू के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का ये जो वक्त होता है, पूरे देश में आम जनता ये कार्यक्रम सुन रही है। एक इंटेंसिव केयर यूनिट से जुड़े हुए डॉक्टर के तौर पर आप हमें ये समझाएं कि किस तरह से बिना पैनिक हुए फौरन भागना चाहिए और किस तरह से मरीज की मदद करनी चाहिए।
1: आज के सिनेरियो में एक ब्रेन का और एक हार्ट का, दो चीज़ में आपको बहुत, क्योंकि इसमें अगर वक्त आपने जाहिर कर दिया तो काफ़ी देर हो जाता है। ब्रेन का तो मैंने जैसे जिक्र किया कि कोई भी कहीं भी आपको कमजोरी लग रही हो, बात करने में जुबान लड़खा रही हो आपकी, स्लरिंग जिसको बोलते हैं, विजन में दिखने में कोई दिक्कत हो रही है, ये सब लक्षण को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें सर।
0: मरीज तो ठीक है, लेकिन जो मरीज के साथ में
1: साथ वाले वो उनको
0: पास पड़ोस के लोग हैं,
1: हाँ हाँ, और ये जो हमारे यहाँ गुडविल में ही रहता है, जो अपनी पहले थेरेपी, फिर दादा दादी नानी की थेरेपी, फिर बगल वाले दुकानदार की थेरेपी, फिर फ़ोन पे कहीं और से थेरेपी, इसमें जब हम 3.5-4 घंटे निकाल देते हैं जो क्रिटिकल टाइम होता है बचाने का, तो वो बिल्कुल ना करें सर।
0: तुरंत पहले तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए दौड़ें,
1: जिस चीज़ के एक्सपर्ट के पास जाएं, इसके लिए बनाया गया। और अब मैं तो जैसे पहले भी बोला आपके इस इंटरव्यू में कि अब गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी कर दी है, आप कहीं भी तुरंत संपर्क में आ सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप है, मोबाइल है, कहीं आप डॉक्टर को फोन करें
0: बजाय इसके कि नुस्खे अपनाने,
1: हाँ,
0: की
1: नुस्खे
0: बजाय,
1: वो ठीक है, वो थोड़ा सा छिल गया, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा पेट खराब हो गया, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो इस तरह के वाइटल साइन है, चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है,
0: झाग वाग निकल रहा है,
1: हाँ, वो तो मिर्गी या सीजर या जो भी लोग समझ, वो उसमें टाइम नहीं खराब करना है सर। और कभी आप डिजीज वाइज इमरजेंसी में कभी आप रखिएगा कि भाई ब्रेन के लिए अलग, तो मैं आपको डाटा दे दूंगा कि भाई इस वक्त ये, मोटा मोटा समझाने के लिए, जैसे मैंने बोला कि भाई
0: मान लीजिए कि किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है, तो अमूमन तो पता नहीं चलता है ना कि ये हार्ट अटैक है, तो ये जो आजू बाजू के लोग हैं, जो उसके पास मौजूद लोग हैं, मान लीजिए कोई सड़क पर ही जा रहा है और ऐसी कोई परिस्थिति होती, तो कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक हो सकता है और फौरन ले जाए?
1: देखिए, जो सबको पता है चेस्ट पेन, लेकिन सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं, जॉ पेन, ईयर पेन, पसीना आना, और खासकर डायबिटिक पेशेंट इस बात का ध्यान रखें, जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना सर, उनको वो पेन वो टिपिकल महसूस नहीं होता है।
0: ओह,
1: जो भी डायबिटीज से सफ़र कर रहा है ना, तो वो बीच बीच में अपनी जांच करते रहे, अगर उसको पसीना आ रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, लेकिन उसको टिपिकल हो सकता है डायबिटीज पेशेंट को वो टिपिकल चेस्ट पेन ना हो जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट को होता है, तो वो थोड़ा एक ट्रिकी पॉइंट है जो भी डायबिटीज सफ़र कर रहे हैं लोग उनके लिए। लेकिन कोई भी ऐसी जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, जॉ पेन, पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सब चीज़ों को कभी भी, टिंगलिंग हाथ से बाएं हाथ में, बट आप राइट साइड पेन को भी इग्नोर ना करें। हमको पता नहीं कि लेफ्ट का ही पेन हार्ट का है, वो कभी कभी बैक पेन भी हार्ट का होता है, और यूजुअली अगर आप टिपिकल देखेंगे तो पेशेंट पेन जो है एक जगह लोकलाइज नहीं होता, वो रेडिएट कर रहा होता है। ऐसा नहीं, वो नहीं हो सकता, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं रह गया अभी, अभी बीमारियां काफ़ी अपना स्वरूप बदल के भी आ रही हैं, लेकिन मोटा मोटा है कि पेन अगर रेडिएट हो रहा है जॉ की तरफ, पीछे की तरफ, तो ये अलार्मिंग साइन है, हार्ट से जुड़ी ये अलार्म।

0: से, उसमें और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं
1: जी
0: उसको कभी लेंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ अलार्मिंग है, आपको तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र एक चिकित्सक, जो भी डॉक्टर रहे जो इससे जुड़ा हुआ है, उससे संपर्क करना चाहिए।
1: स्ट्रोक से जुड़ी हुई क्या सिग्नल्स होते हैं?
0: जैसे कोई भी वीकनेस, कोई भी हाथ पर कहीं भी वीकनेस महसूस हो रही है, कमजोरी हो रही है, आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका अगर चेहरे की सिमेट्री आपको जो है चेंज लग रही है, फेशियल डिविएशन, कोई एंगल माउथ
1: टेढ़ा मेढ़ा हो रहा,
0: टेढ़ा मोड़, आप जो आपने पहले जिस आदमी को देखा है और आपने नोटिस किया कि यार उसका चेहरे में कुछ तो
1: विरूपता
0: विरूपता आ रही है, सिमेट्री कहीं भी जाती है ना सर,
1: तुरंत समझ जाना चाहिए।
0: हाँ, कहीं भी सिमेट्री, जो नेचर के जो बनी हुई सिमेट्री है, वो अगर डिस्टॉर्ट हो रही है, डिविएट हो रहा है, आंख ऊपर की तरफ जा रही है, आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, ब्लरिंग हो रहा है, दो चीज दिख रही है, ये सब जो भी साइन है इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है सर, शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना है डॉक्टर
1: इन दोनों
0: के पास।
1: परिस्थितियों में कितना वक्त होता है मरीज के पास, कितनी जल्दी पहुंचाना चाहिए?
0: देखिए जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप टाइम ख़राब करते हैं, फिर फ़ोन किया, उससे बात किया, उसने बताया फलाने को हुआ था, तो ऐसे नहीं, नहीं बाबा आसपास पहले वहाँ पहुँच जाएँ, आप एक्सपर्ट के पास पहुँच जाइए, वो आपको गाइड करेगा ना, वो किसी भी रास्ता भूल जाते हैं, अगर पुलिस वाला कोई खड़ा है सिग्नल, वो सबसे अच्छा बताता है ना हमको, आप अनजान शहर में हैं और एक पुलिस वाला जो आप रास्ता भटक गए उससे पूछिए, आम आदमी डॉक्टर तो नहीं होता है, आप साइन सिम्टम आपको जैसे ही लगे कि बाबा ये कुछ तो मेरे साथ एबनॉर्मल है, ऐसा पहले नहीं होता, उस पर मत डालिए कि मैं यार आज खाना भूल गया, आज नींद नहीं हुई, उस पर मत, ठीक है भगवान करे वही हो, मैं भी चाहता हूँ, डॉक्टर भी चाहते हैं भगवान ही नॉर्मल ही हो, लेकिन 99 में एक भी अब नॉर्मल है तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना सर।
1: बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं, और यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: तो कौन सा गाना होगा?
0: यहाँ पे हम रफ़ी साहब का एक गाना सुनेंगे।
1: ठीक है,
0: आज मौसम बड़ा बेईमान।
1: क्या बात है, आप गुनगुनाते हैं तो इस बार फिर मैं चाहूँगा कि आप गुनगुनाएं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें मेडिकल से जुड़ी हुई हुई। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मुझे पता है और वो ये है कि हनुमान अंश फिल्म के जो निर्देशक हैं वो आपके साथ मेडिकल कॉलेज में थे।
1: हाँ हाँ, डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी हमारा दोस्त भी है, हमारा जूनियर भी है, और उसके लिए बहुत खुशी है। उस बच्चे ने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत शानदार उसने ये फिल्म बनाई है। और लोग बोलते हैं कि सफलता उसने आज हम उसकी सफलता देख रहे हैं। उसने जो 20 साल मेहनत की है उसका ईश्वर ने उसको रिवॉर्ड दिया है। और बातें मुलाकात होती है, बट आपके माध्यम से भी हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। बहुत बेहतरीन काम किया है उसने।
0: क्या बात है।
1: और इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे मुंबई लाने वाला विशाल ही था।
0: अच्छा अच्छा
1: मैं दिल्ली में था और मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में, तो कहा चलो बस मुंबई चलते हैं। मैं भी गा फिर लेता हूँ, वो मजाक मिला, चलो आपको कुमार सानू बना दूंगा यार, आप चलो तो मैं तो कंपोजर हूँ ही।
0: अच्छा, अब वो तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे।
1: हाँ हाँ, और वो गाने लिखता भी था। कॉलेज में भी बहुत अच्छा हमारा एक छोटा सा म्यूजिकल बैंड टाइप का था।
0: अच्छा,
1: तो पहले वो हर जैसे यंग बच्चे के होते ना, रॉक स्टार बनना है बस, गिटार वगैरह बजाना, गाने लिखना। और वहाँ से वो क्रिएटिविटी तो थी, लिखता भी था, गाने भी बनाता था, स्केचिंग भी बनाता था। और हम सभी बहुत खुश हैं उसके लिए कि आज उसको वो मुकाम मिला है जिसको वो जो डिजर्व करता है।
0: क्या बात है। तो मतलब एक डॉक्टर साहब से बातचीत करते हुए दूसरे डॉक्टर साहब का जिक्र निकल आया
1: क्या
0: क्या बात है। अच्छा, इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एक चीज जो मुझे लगता है कि शायद इस पर बात करनी चाहिए, और वो आईसीयू में जो मरीज भर्ती होते हैं, जाहिर है कि परिवार जो है वो बहुत पैनिक होता है। हाँ। बहुत चिंता में होता है, पर आईसीयू एक खास तरह के बर्ताव की उम्मीद करता है। वहाँ का एक खास अनुशासन और संयम होना चाहिए जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, दिक्कत क्या होती है कि वो जो जोन होता है उसको सबसे हमारा रहना कि उसको इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं। अक्सर मैं आपका पॉइंट समझा कि रिलेटिव्स को मिलने नहीं दिया गया। बात सही है कि कोई स्ट्रेस में है अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी, बट वो फॉर द टाइम बीइंग ना हमको उसको शांत रखना है, उसको स्ट्रेस फ्री रखना है, और सबसे भी ज़्यादा हमको इन्फेक्शन फ्री रखना है।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी,
1: सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम बोल भी देते हैं यार, सेफ्टी फर्स्ट। अगर छोटा बच्चा आग छूना चाहे तो माँ उसको छूने नहीं देती है ना। वो बच्चा रोएगा, बट ठीक है, हमको पता है छू देगा तो उसका नुकसान है। वैसे ही कुछ हमारा रहता है कि भाई हम मानते हैं आपको बुरा लग रहा है कि आपको मिलने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप उस कंडीशन में हमारी प्रायोरिटी है वो मरीज

0: सेफ्टी है,
1: उसकी जान बचाना है,
0: उनकी जान बचाना है। आपको देखिए वो इमोशनल होगा या आप उसको देख के इमोशनल होंगे, आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। और जो कुछ है हम आपको बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, बीच बीच में बताते रहते हैं क्या है क्या नहीं। बट हाँ आपकी बात सही है कि हर आदमी देखना चाहता है कि भाई किस अवस्था में मेरा मरीज है, वो उसके भले के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे को आग नहीं छूने देती ना,
1: लोगों को इस बात को समझना चाहिए हाँ, कि डॉक्टर्स हाँ, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं
0: और
1: आईसीयू में खास तरह का बर्ताव किया जाए। जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसा मान के बाहर रुका जाए
0: हाँ, और
1: इंतजार किया जाए।
0: डॉक्टर कम्युनिटी से मैं ये भी कहूंगा भाई थोड़ा पोलाइट रहते हैं, पोलाइट कभी कभी देखिए हम इंसान ही है
1: जी जी,
0: कभी कभी हो सकता है कि हमने जो है बहुत जो उम्मीद थी उनसे जितने प्यार से बात करना चाहिए शायद मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात किया, तो वो कभी कभी हो जाता है क्योंकि हम लोग भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि जितने प्यार से वो उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर साहब बोलेंगे शायद उतने प्यार से नहीं बोला मैंने, लेकिन इंटेंशन कभी हमारा वो नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत दिलचस्प बातें हुई और आपने कुछ बहुत ज़रूरी मुद्दे हमारे श्रोताओं को समझाए आज की इस बातचीत में। विविध भारती के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको मौका देने के लिए, और एक डॉक्टर की तरफ से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
1: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की ये बातचीत। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
3: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
7: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
8: साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की

0: ले जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित ये युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
1: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान में हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में 27 पदक जीतने वाले तीनों सेनाओं के खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। उनके प्रदर्शन से भारत को कुल 85 पदक जीतने और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। इस अवसर पर श्री सिंह ने खिलाड़ियों के अनुशासन, कड़ी मेहनत और टीम भावना की सराहना की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज नई दिल्ली में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उभरती वैश्विक और तकनीकी चुनौतियों के बीच मानवाधिकारों की रक्षा की मजबूती पर बल दिया गया। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित आयोग देश भर में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वादे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said that the doors of the Supreme Court are open to everyone and any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. He said that every Indian citizen has the right to approach the court and the court will hear their concerns and grant relief whatever is due unto the law. Justice Suryakant made the remarks while addressing the 33rd Foundation Day of NHRC in New Delhi. Responding to the India Blog's demand for a meeting, Justice Suryakant said he had received a letter yesterday requesting an appointment and had replied last night, explaining why he was unable to meet them.
4: The doors of the Supreme Court are open to everyone. Any person, whether an ordinary citizen or a member of an elected body, has the right to approach us. Every citizen of India has this right. We will hear the grievances and address their concerns in accordance with

0: मास्टर सलीम व साथियों की मिलीजुली आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये भजन।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: अरे मुन्ना जरा एक ग्लास पानी देना और हाँ पानी को उबाल कर ही देना।
4: दादू पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
3: बेटा दिखने में साफ पानी भी पीलिया डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
5: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
6: उबला पानी पिए स्वस्थ हिमाचल बनाए।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी भजन। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM एंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:25 और 20 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में। जी हाँ, आज है सोमवार और आज का हमारा सेगमेंट है नई

उड़ान। और ये उड़ान हमारे युवाओं को किसी भी डायरेक्शन में ले जाती है। जी हाँ युवा दोस्तों, बात है इंटरेस्ट की कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट अगर आप अपना फील्ड चूज करें तो बहुत ही कामयाबी हासिल होती है। दोस्तों, क्या आपके मन में भी देश की सेवा करने, वर्दी पहनने और भारतीय सेना का हिस्सा बनने का सपना है? अगर हाँ तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास है। भारतीय सेना में भर्ती होना केवल एक नौकरी पाना नहीं बल्कि देश की सुरक्षा, सम्मान और सेवा का गौरवपूर्ण अवसर है। सेना युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। जी हाँ,

0: देश पर गुलामी के बादल छाए थे। हजारों कुर्बानियां देकर देश के वीर सपूतों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद कराया। आज हम आजाद भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देशभक्ति का जज्बा आज भी प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिलों में है और हमेशा रहेगा। यही जज्बा लिए हमारे देश का युवा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहता है। भारतीय सेना, जिसके नाम से दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं, भारतीय सेना जिसकी शौर्य गाथाओं ने इतिहास के पन्नों को सुनहरा कर दिया है, उसी भारतीय सेना के एक जांबाज अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सिंह मनकोटिया हमारे साथ हैं। मनकोटिया साहब से उनके विषय में कुछ दिलचस्प बातें आज हम इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। मनकोटिया साहब, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद, थैंक यू।
0: सबसे पहले ये बताइए, आप कहाँ से पढ़े हैं, आपका बचपन कहाँ गुजरा है?
1: बेसिकली मैं एक चौथी पीढ़ी फौजी ऑफिसर हूँ, और जब आपके पिता फौज में होते हैं तो आपकी पढ़ाई पूरे भारतवर्ष में हर जगह होती है। तो बेसिकली मैं रहने वाला कांगड़ा का हूँ, और क्योंकि मेरे फादर फौज में थे तो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई उनके साथ हम भी हर जगह अलग अलग स्टेट में पढ़े हैं
0: जी।
1: और उसके बाद में जब मेरे फादर रिटायर हुए, उसके बाद में मेरी बेसिक ग्रेजुएशन से पहले प्लस टू मैंने देहरादून से की है, और ग्रेजुएशन डीवी कॉलेज चंडीगढ़ से की है, और भारतीय फौज में फिर 99 में ट्रेनिंग पे चले गया था मैं
0: जी
1: फौज में।
0: तो जैसा कि आपने बताया, आपकी चार पीढ़ियां जो हैं वो भारतीय सेना में ही रही हैं, और ये पूछने की यहाँ आवश्यकता नहीं है कि आपको फौज में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। जाहिर सी बात है, खून में ही ये देशभक्ति का जज्बा शामिल है। किस तरह से सेना में जाने के लिए तैयारी आपने शुरू की?
1: बेसिकली फौज में इतने पास से फौज को देखा कि तैयारी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। इनफैक्ट जब मैं इंटरव्यू के लिए भी गया था तो मुझसे यही सवाल पूछा गया था, फौज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? तो जब उनको मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और 1962 में मेरी फादर की भर्ती फौज में हुई थी, तो मैं कहा हमारा पूरा खानदान ही फौज में है, और इसी जज्बे के साथ मैंने इंटरव्यू पास की और फौज में आ गया।
0: और जब आपका सिलेक्शन हो गया, उस वक्त किस तरह के मनोभाव थे आपके भीतर?
1: ऑब्वियसली बड़े खुश थे। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग करने गए, और पहली पोस्टिंग वादियों कश्मीर में हो गई थी हमारी, और इस वक्त भी मैं कश्मीर की वादियों के बीच में एक स्थान में पोस्टेड हूँ, और बड़ी खुशी के लहर थी क्योंकि हमारे खानदान में सब फौज में हैं। मेरे फादर के साइड में भाई, उनके बच्चे, हम सब फौज में ही हैं
0: जी। मनकोटिया जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: जी, सेना में जाने की तैयारियां आपको ज्यादा नहीं करनी पड़ी क्योंकि आपके परिवार में सभी फौज में थे और साथ ही साथ उनकी तरफ से प्रेरणा भी आपको मिल चुकी थी। इसके बाद जब पहली पोस्टिंग आपकी हुई, आपने बताया कि वादी कश्मीर में आपकी पोस्टिंग हुई, हालांकि आप हिमाचल के रहने वाले हैं और यहाँ का जो वातावरण है कश्मीर के वातावरण से काफ़ी कुछ मेल खाता है, फिर भी कुछ कठिनाइयाँ वहाँ जाने के बाद आपको हुई होंगी, उनके बारे में बताइए।
1: बेसिकली बहुत ही एक डिटेल तरीके से फौज नियुक्त है बॉर्डर एरिया में,
0: जी,
1: और 2000 की बात है जब मैं वहाँ तैनात था बॉर्डर एरिया में, बड़ा कुछ सीखने को मिला। वहाँ के पहाड़ और हमारे हिमाचल के पहाड़ में बहुत अंतर है, पहली बात वो जब आप रहेंगे तो लगेगा पता, और वहाँ की ठंडी, वहाँ के एटमॉस्फेयर लगभग पहाड़ी टाइप है, पर बड़े अलग अलग पहाड़ है क्योंकि हमारी मोस्टली ऑपरेशंस पहाड़ों में होते हैं, तो हमें एक चप्पा चप्पा पता है पहाड़ों के बारे में। और इनफैक्ट एक इंसिडेंट याद आया मेरे को, जब मैं पोस्टेड था वहाँ पर, तो हमारे में होती है एक विंटर कट ऑफ पोस्ट होते कहते हैं उसको,
0: जी
1: तो 6 महीने के लिए हम जाते हैं पोस्टों में और 6 महीने तक हमको वहीं रहना पड़ता है। हमारे साथ छोटी टुकड़ी होती है, डॉक्टर भी हमारे साथ में होता है, हमारा मेन एम है 6 महीने वहीं रहना, आना जाने की कोई सुविधा नहीं होती है। जब मैं पीस पोस्टिंग आया तो किसी क्लब में कोई स्वामी जी टाइप आए हुए थे, उनने पूछा कि आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन के बिना रहना बहुत मुश्किल है, मैं चैलेंज करता हूँ कि 1 हफ्ता से ऊपर कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता।
0: जी
1: तो मैंने हाथ खड़ा करके बोला, मैं कहा जी हम तो 6 महीना मोबाइल के बिना, लाइट के बिना, टीवी के बिना बड़े खुशी से और बड़े हंसते हंसते रह के आए हैं। एक डिसिप्लिन फौज में जो होता है, जो हमको बहुत कुछ सिखा देता है इसके बारे में।
0: जी मोबाइल फ़ोन की आपने बात की है, ये तो टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ बदली है, लेकिन इससे पहले की बात करें

0: ने तो भारतीय फौज पत्रों पर अपना जीवन जो है वो बिताती थी। कहीं से चिट्ठी आ जाती थी तो बहुत खुशी होती थी, और चिट्ठी लिखने में,
1: बिल्कुल सही
0: भेजने
1: बोला।
0: में भी एक बड़ा सुकून महसूस होता था। यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।

0: कोर्स पूरा खत्म नहीं कर पाए। कम से कम 15 लोग तो ऐसे थे जो कोर्स ही नहीं कर पाए पूरा, वापस चले गए, चोट लग गई या छोड़ दिया फौज। तो मेंटली फिजिकल स्ट्रांगनेस की बात नहीं होती यहाँ पर, आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी आप डिसीजन स्ट्रांग ले सकते हैं लड़ाई के मैदान में।
1: जी, तो मानसिक रूप से जो ताकत मिलती है वो किस तरह से मिलती है, क्या क्या वह गतिविधियाँ इस तरह की चलाई जाती हैं?
0: गतिविधियाँ हैं कि जैसे आप लोग, हम देखते हैं पीटी 6 बजे होती है, हमारी पीटी रात को जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तपते जगह पर हम पीटी करते हैं, पानी के अंदर हमारी एक्सरसाइज चलती है, रेगिस्तान में हमको लेके जाते हैं, हवाई जहाज से हमको स्लिदरिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर हम जैसे कि मैंने कमांडो कोर्स किया बेलगाम में, वहाँ का रूटीन है कि जो भी ऑफिसर कोर्स करने आता है 40 किलो तक उसका वजन कम हो जाता है एक महीने में, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इतना वजन कम होता है। और फिजिकल फिटनेस, खाने की खुराक पूरी होती है पर इतना फिजिकल फिटनेस, इतना बाहर लेके भागना और ट्रेनिंग करना, सांप पकड़ना, जंगल में छोड़ देना, ये पूरी मानसिकता को फिट करने के लिए ही एक जगह की तरह हमें सिखाते हैं।
1: जी, फौज में डिसिप्लिन का बड़ा महत्व है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाते हैं और हमें सजा भी मिलती है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है?
0: बिल्कुल, कई ऐसे हादसे हुए हैं, जब हम नए नए भर्ती हुए थे तो जोश होता है तो कई चीज़ें गलत हो जाती है जिसके लिए सजा भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा सबको कि डिसिप्लिन जो अगर हम फॉलो करें, उससे अपना शरीर और अपनी पंक्चुअलिटी और अपना काम के प्रति बहुत

0: ज़्यादा ही कार्रवाई बढ़िया होती है, और फौज में सिखाया ही जाता है, हम एक डिसिप्लिन के एक कानून के तहत पर काम करते हैं।
1: भारतीय सेना में रहते हुए कितने वर्ष आपको हो चुके हैं?
0: जी 26 साल हो गए।
1: तो इस दौरान कहाँ कहाँ जाना हुआ है?
0: मतलब पूरे इंडिया में मेरी पोस्टिंग आई है, और एक बार मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं फॉरेन सॉइल अफ्रीका में गया था फॉरेन मिशन के लिए। वहाँ
1: जी
0: पर सिविल वॉर में हिस्सा लिया, और सिविल वॉर का हिस्सा रहा हूँ मैं जाकर कांगो में। वो
1: जी
0: बड़ा एक गर्व का अवसर था कि फॉरेन फोर्स सॉइल में जाकर लड़ाई का हिस्सा में रहना एक बड़ी गर्व की बात है।
1: जी तो वहाँ क्या क्या ऐसा आपको सीखने को मिला जो यहाँ नहीं है?
0: असली सीखने को तो मिला नहीं, सीखने को तो वहाँ पर लड़ाई का माहौल था, लड़ाई के माहौल में हम घुसे, और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में, अलग अलग कंट्रीज के साथ में साथ मिलकर जो रेबल आर्मी थे उनके अगेंस्ट हम लड़ाई लड़ी। तो जो ट्रेनिंग हमारी भारत में हुई थी उसका हमें वहाँ पर सबूत दिया, उसका हमने परिचय दिया फॉरेन रेबल फोर्सेस के साथ में,
1: जी,
0: और हमने लड़ाई जीती वो, जो कि बड़ी मुश्किल और जंगल वॉरफेयर वाली लड़ाई थी वहाँ पर।
1: तो जब ये लड़ाई आप जीत करके भारत वापस आए तो किस तरह से आपका स्वागत हुआ?
0: बड़ा अच्छा लगा जी, बड़ा अच्छा स्वागत तो हर जगह बढ़िया होता है। आप
1: जी
0: लड़ाई लड़े और जब वापस आए तो पूरी हमारी कंटिंजेंट को निखारा गया, शाबाशी दी, कई हमको अवार्ड और प्राइजेस मिले हमारी कंटिंजेंट जो गई थी। एक मुझे भी प्रशंसा पत्र मिला था फॉरेन सॉइल में लड़ाई का हिस्सा होने के कारण,
1: जी
0: और बड़ा अच्छा था। और भारतीय फौज का बहुत नाम है फॉरेन सॉइल में, जब जाते हैं
1: जी
0: वो हम लोगों को मानते हैं कि हम एकदम निडर और साहसी फोर्स हैं।
1: ये तो पूरा देश भी मानता है।
0: बिल्कुल जी,
1: जी, सेना में कार्य करते हुए क्या क्या अनुभव आपको हुए? कोई खास अनुभव आप अगर शेयर करना चाहें?
0: बेसिकली फौज एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको हर प्रकार का एक्सपीरियंस मिलता है। फौज में रहकर मैंने माउंटेन एक्सपीरियंस किया, रैलीज में पार्ट किया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। उसके बाद में डिकाथलन करके एक गेम है हमारी, उसमें हमने हिस्सा लिया। बड़ा कुछ मौका मिलता है आपको करने के लिए, कार रैली का आप लोगों को मिलता है, कि अगर आपको घुड़सवारी का अगर आपको शौक़ है तो उसके लिए भी आपको इसमें चैनल मिलता है आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए।
1: जी
0: इनफैक्ट मैं सब लोगों को यही बताना चाहूँगा कि फौज सिर्फ जो आप देखते हो वो नहीं है, बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही विशाल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बहुत मौका एक इंसान को, ऑफिसर को मिलता है, जवान को मिलता है, अपनी जिस चीज़ में वो सक्षम है उसको दुरुस्त करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए।
1: जी बनकोटिया जी, आपसे जानना चाहेंगे रेडियो से कितना आप जुड़े हैं, रेडियो का फौज में क्या योगदान है?
0: रेडियो का जी बहुत योगदान है, इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, पिछले 2000 से 2010 तक जब भी हम वादियों में पोस्टेड थे श्रीनगर की तरफ, हम सिर्फ रेडियो ही सुनते थे। और हमारे टाइम में होता था फोर्सेस रिक्वेस्ट, एक बहुत पुरानी रेडियो का आता था, उसमें यही हमारी लाइफलाइन थी, मोबाइल था नहीं, टीवी था नहीं, तो रेडियो के ही माध्यम से ही हम गाने सुनते थे, और वीर सेनानियों के नाम से चलते थे इतने रेडियोज़ के गीत, और यही हमारी लाइफलाइन थी सुनने के लिए, और इसी से हम आनंद उठाते थे।
1: यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
0: ओके।

0: जी मनकोटिया जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, भारतीय सेना में रहते हुए भारत में कोई ऐसा युद्ध हुआ जिसमें आपने हिस्सा लिया हो?
1: अभी हाल ही में जो हमारा, आप लोगों को पता ही है, जो अभी तक चल रहा है, जो बंद नहीं हुआ है, इनफैक्ट उसके लिए अभी भी हम तैनाती है और हम पूरे खड़े हैं, पूरा हमारी भारतीय फौज एकदम तैयार हालत में है। अभी उसको हमने सीज ऑफ नहीं किया गया है। और कारगिल के समय में मैं तब मैं फौज में ज्वाइन ही किया था, पर मेरी पोस्टिंग कश्मीर की वादियों में नहीं हुई थी,
0: जी
1: पर मैं फौज का हिस्सा हो गया था उस समय, और मेरे कई कोर्समेट इस हिस्सा में ने हिस्सा लिया हुआ है। जनरली हमने कई फील्ड फायरिंग में, कई फायरिंग एक्सरसाइजेज में, जो हमारी फौज की एक रूटीन है, चलती रहती है, और जो हमारा ऑप संदूर है अभी तक भी वो एक्टिव है और अभी तक भी ऑन है, आपको पता ही होगा उसके बारे में।
0: जी कश्मीर की वादियों में अभी आप पोस्टेड हैं, और हम ये जानना चाहेंगे वहाँ की जो आवाम है उसका फौज के प्रति क्या रवैया है, क्या देखते हैं वो भारतीय फौज से, क्या उम्मीदें रखते हैं?
1: इनफैक्ट आर्टिकल 370 के बाद में और काफ़ी चेंजेस देखने को मिले वादियों में, जबकि मैं 2000 के आसपास था, बहुत ही प्यार मोहब्बत और बहुत ही चीज़ें फौज भी कर रही है आवाम के लिए, इतने मैचेस, इतने प्रोग्राम, एजुकेशनल टूर्स जो फौज कर रही है, आवाम में बहुत रिस्पेक्ट है। और इनफैक्ट जो टेररिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत धक्का लगा है,
0: जी
1: क्योंकि आवाम पूरी भारतीय सेना को सपोर्ट कर रही है, और हमारा भी स्टार्टिंग से रवैया बहुत पॉजिटिव रहा है आवाम की तरफ।
0: फौज में रहते हुए कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद रहता हो, कभी भूल नहीं पाए हो जिसको?
1: इनफैक्ट किस्से तो बहुत हैं, अभी तो सही समय नहीं होगा, रिटायरमेंट के बाद कभी मौका मिलेगा तो बताया जाएगा, पर एक किस्सा मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक बार कश्मीर में ही पोस्टिंग थी हमारी, तो जिस जगह में था वहाँ पर जानवरों का बहुत जोर था और ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं होती थी, और भालू बहुत आते थे वहाँ पर,
0: जी
1: और भालू का बहुत, और भालू ऐसे नहीं थे छोटे मोटे, बहुत विशाल भालू। तो जो हमारा स्टोर मैन था उसने क्या कहा था, स्टोर के दरवाजे खोल के रखे थे, चीनी की बोरी रखी थी साफ अलग ही, भालू जी ने आना उठानी चीनी की बोरी चले जाना, और बिल्कुल उसको नज़ारे को देखने का ही बात अलग था देखने का। और भालू भी जानवर इतना दिमागदार था, हमें लगता था उसने कुछ डिस्टर्ब नहीं करना, उसको पता था कि मेरी जगह कहाँ पर है, मेरा सामान कहाँ है, उसने लेना अपना राशन चले जाना। और इस प्रकार की कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिलती है वहाँ पर। जानवरों के साथ हमारा काफ़ी मेल मिलाप रहता है, देखते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास उस हाइट में जानवर काफ़ी घूमते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है देखने को।
0: साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब कार्य से थोड़ा आपको फुर्सत मिलती है, फुर्सत के क्षणों में आप क्या करते हैं वहाँ?
1: इनफैक्ट जिस जगह पर मैं हूँ, जब फुर्सत मिलती है, थोड़ा आजकल बुक रीडिंग का शौक मैंने स्टार्ट किया है, जो पहले था नहीं, तो उसमें थोड़ा समय निकालते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे रहती है सेहत,

0: जी
1: जिस हाइट में हम लोग रह रहे हैं उसमें कार्यवाही और अपने काम के अलावा अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत
0: जी
1: ज़रूरी होता है।
0: सबसे बड़ी चुनौती अपने आप को स्वस्थ रखना है।
1: स्वाद हम बिल्कुल, तो अपना फिजिकल फिटनेस हम सही रखते हैं, और सेहत ये नहीं है कि मोटापे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही उम्र बढ़ती है, जैसे आप 50 साल क्रॉस करते हैं, तो कुछ शरीर में गड़बड़ियाँ ऑटोमेटिक होती है स्टार्ट, तो उनका ख्याल रखते हुए अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके, अपने जवानों की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो एक जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट एक्स पीटी गेम्स, अभी तक भी हमारे दिमाग से पीटी गेम हटा नहीं है। मुझे पता नहीं लास्ट आपने पीटी गेम कब की थी, या
0: जी
1: इस हम उम्र वाले ने कब की होगी, पर आज तक भी हमारी ज़िंदगी में सुबह पीटी और शाम को गेम परेड होती है।
0: हमारे देश का युवा जो सेना में भर्ती होना चाहता है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: मेरा संदेश यही रहेगा कि डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और डिसिप्लिन मैं फौज की तरफ से बात नहीं कर रहा, डिसिप्लिन आपके घर में, डिसिप्लिन आपके खाने में, डिसिप्लिन आपके पढ़ाई में, डिसिप्लिन आपकी नौकरी में। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करें तो किसी भी जगह पर हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आजकल का जो माहौल देखता हूँ वो हल्का सा मुझे लगता है डिसिप्लिन के मामले में हल्का सा कच्चा है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो खेल कूद की जगह हो, चाहे वो नौकरी की जगह हो, चाहे वो दोस्ती यारी की जगह हो।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सिंह मनकोटिया जी, आप आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज़ में आए, बहुत अच्छी बातें आपने की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद, थैंक यू।

तो ये थी बातचीत लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव मनकोटिया जी से संजीव की। तो युवा साथियों, अपने लक्ष्य को पहचानिए, पढ़ाई के साथ शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दीजिए और मेहनत को अपनी आदत बनाइए। कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। चलते चलते बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला अंकित धीमान से।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Why ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
5: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
4: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
6: अरे नेहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
7: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
6: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
7: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
6: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
7: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
4: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
5: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
4: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
5: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
4: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ प्रसारित किया जाएगा। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मोजां ग्राइंदियां। विषय रहेगा मृदा संरक्षण और मृदा परीक्षण। किसान बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम खेती बाड़ी प्रसारित किया जाएगा शाम 7:10 पर। बातचीत का विषय रहेगा ग्रामीण पेयजल सुविधाएं। साथ ही होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, भेंट वार्ता और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। रात्रि 8 समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का और 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा गीतकार उषा खन्ना के संगीतबद्ध किए गए कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 पर गूंज पहाड़ों की लोक संगीत पर यह आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 से रात्रि 11 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपके गीत हमारे सुनिएगा। टेलीफोन वही रहेगा 01892224391। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 News@9। रात्रि 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी प्रसारित किया जाएगा। सुनो सखी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 6 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर सहयोग कर रही है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के केलंग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के देश के पहले उच्च पर्वतीय स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करने के अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि लाहौल स्पीति की भौगोलिक परिस्थितियां देश के दूसरे क्षेत्रों से अलग हैं। उन्होंने कहा कि ये केंद्र हिमालयी क्षेत्रों की विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों और

0: पड़ता है या जानने की बहुत आवश्यकता होती है। यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं और यहाँ जो आकर के सर्विस करते हैं उनके जीवन को में किस तरीके से उत्तम स्वास्थ्य दिया जा सके, इसकी चिंता करने के लिए आज ये रिसर्च सेंटर जो बना है उसके लिए मैं विशेष करके आप सबको बधाई देता हूँ।
1: इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद कंगना रनौत सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बाद में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने केलंग पुलिस मैदान में वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज रिकांगपियो में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान राजस्व मंत्री ने पुह, कल्पा व निचार विकासखंड के एक एक गांव में उपमंडल स्तरीय वन अधिकार समितियों के पास लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 अनुसूचित जनजातियों व अन्य परम्परागत वन निवासियों के पात्र वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जगत सिंह नेगी ने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण स्तर पर व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी पुरातन संस्कृति को अपनाने व सहेजने का आग्रह किया है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित हिमाचल उत्सव के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि मेले व त्यौहार प्रदेश की विशिष्ट संस्कृति के परिचायक हैं। शांडिल ने युवाओं से अपनी ऊर्जा को खेल व अन्य रचनात्मक गतिविधियों में लगाने का आग्रह भी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सड़कों की खस्ता हालत और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिंदल ने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में पिछले लगभग 4 वर्षों से सड़कों के सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि नाहन मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों में पद खाली हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं।
2: बहुत दुखदायी स्थिति है। 4 साल के अंदर 500 बिस्तरों का अस्पताल पूर्ण हो जाना चाहिए था, परंतु नया कुछ करना तो नहीं था। जो पुराना चला हुआ था उसको बंद कर दिया और मरीजों को बाहर में जाना पड़ता है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हजारों हजारों रुपया एक एक मरीज का खर्च हो रहा है। बहुत दुखदायी स्थिति है। 4 साल के अंदर 500 बिस्तरों का अस्पताल पूर्ण हो जाना चाहिए था, परंतु नया कुछ करना तो नहीं था। जो पुराना चला हुआ था उसको बंद कर दिया और मरीजों को बाहर में जाना पड़ता है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हजारों हजारों रुपया एक एक मरीज का खर्च हो रहा है।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:06 होने को हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। सुरमई सांझ कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन।

एक बार फिर से खयाम के संगीत निर्देशन में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की मिलीजुली आवाजों में थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से ये दो गाना।

तुम्हारे लिए इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गाया हुआ। संगीत दिया था जयदेव ने। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं सावन की घटा फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

0: सुरमई सांझ ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपने रेडियो दोस्त रेनुवन कोटिया के साथ।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: ओ बुल्ला बुली, अपने परिवार की फिक्र तो सपना जो होंगी है, पर भविष्य की सुरक्षा बारे तुसा कदी सोचा? हाँ जी, इसा वास्ते डाकघर ले आया है डाक जीवन बीमा। अपने परिवार की सुरक्षित भविष्य दा भरोसा। डाक जीवन बीमा च कई योजनाएं हैं, जिन्हा की सुरक्षा, संतोष, सुविधा, युगल सुरक्षा ते बाल जीवन बीमा। अपनी जरूरत अनुसार योजना चुनो ते परिवार के भविष्य जो सुरक्षित बनाओ। हुन शहरी लोगों वास्ते भी ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI की सुविधा आई गई है। गांव हो या शहर, अपने परिवार की सुरक्षा वास्ते डाकघर तुहांदे कन्ने है। ते फिर देर कजो करा दे, अजे अपने नजदीकी डाकघर जान्यो ते डाक जीवन बीमा की पूरी जानकारी ले आन्यो। डाक जीवन बीमा, अपने परिवार की सुरक्षित भविष्य दा भरोसा।

ये रही कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की मिलीजुली आवाजों में सच्चाई फिल्म से, संगीत दिया है शंकर जय किशन ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां सुनने वाले सारे किसान साथियों जो कहने बाकी सुनने वाले श्रोतियां जो सैकटरी दी राम राम किसान साथी टियाले प्रसाद दिया दिन शनोताई तो जो भी राम राम
1: जी सैकटरी जी तुसां दा राम सलाम हाँ मंजूर किया कने अपने श्रोतियां जो मैं भी गलाई दिंदी भाई संजय दीते ना सारे जो शनोताई की तरफा ते भी राम राम कने टियाले पर दोनों अहां आई पुजन
0: जी बिल्कुल
1: कने पूरी कोशिश करनी है भाई तुहां तक कम्मे दियां गल्लां भी पुजन सौगी सौगी अहां टियाले पर लगाइए रौनका
0: जी।
1: तो सब तो पहले बोलते एक दूआ सुखसांत पत्रा तो हो ही है ना
0: बिल्कुल जी
1: हूँ कर दे कम्मे की गल
0: जी।
1: तो अज जी अहां तुहाने गल सांझी करनी है सै मृदा संरक्षण कने परीक्षण बारे
0: जी बिल्कुल दिखा जी किसान साथियों दिखा अहां दी खेती बाड़ी जी है सै अहां दी तां ही वधी हो सकदी जे अहां दे खेते दी जी मिट्टी है सै स्वस्थ होंगी
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो अहें अपने खेते दी मिट्टी सिर्फ संरक्षित नहीं करनी मिट्टी दा परीक्षण भी समय समय पर

0: जीवन बीमा अपने परिवार की सुरक्षित भविष्य का भरोसा।
1: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई,
2: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जी किसान साथियों, तुहां सुनिया बड़ा मिठा दिया लोक गीत कने। उम्मीद करनी है तुहां सारे पसंद भी आया होना है।
1: जी
0: तो सैकटरी जी, इस लोक गीत के बाद फिर तो चलना है थोड़ी दी गलबात दी तरफ। तो हुण दिखा, इस वक्त ऐसा समय चलिया भी यहाँ दे ज़्यादातर किसान अपनी जमीना पट्टिया विच ही दूसरा दिन,
1: जी बिल्कुल
0: क्योंकि धाना की कटाई का कम जोर शोरों पर चलिया है। कने जेडे गांव के मैदानी इलाके ने, सह तो मैं बोलती कदों के वेले हुए होने न। पर जे गल करिए हिमाचल दी, तो हिमाचल दी भूगोलिक स्थिति दे कारण, पहाड़ी ढलाना कने ठंडे मौसम होने दे कारण धान दी जिहड़ी कटाई है से थोड़ी देई इन्हां दिनां च मतलब लेट हो जांदी।
1: लेट हो जाती। जी बिल्कुल
0: तो जियां दिखा, ये जिहड़ा अक्तूबर नवंबर विच कटाई लगभग अहां पेड़ आखे बखे दिखा दे, तो हाली भी लोग धाना लगे कट्टणा।
1: जी
0: कने सौगी सौगी जिहड़ा तापमान वैसे भी एकदम ही थल्लै उतरी जांदा, तो मतलब दो पाहें दी काम गल हो जांदी, तां फसलां दा काम भी होंदा सौगी तापमान भी ठंडा हो जाता। इस वास्ते अक्तूबर ते कने नवंबर च शुरुआत में तुहां कटाई कर लैन, तो फायदे में रहना, क्योंकि गां पाला ज़्यादा तो ज़्यादा पौना
1: शुरू
0: शुरू
1: हो
0: हो
1: जाना। जी
0: जाता।
1: बिल्कुल
0: इसते क्यों होना, फसल तो तुहां ले लैनी, पर फसल की जी गुणवत्ता होनी सह घटी जानी, कने फसल खराब होने की भी उम्मीद मतलब वो होंगी कि खराब हो सकती।
1: जी।
0: इसते बाद गल करिए जियाँ धान कटाई दी, बाहर दिखा पदरे इलाकों में तो बड़ी बड़िया हार्वेस्टर मशीन चलिया,
1: जी
0: ते तू तो मिनटों मिनट ही सह मैं बोलते
1: बिल्कुल,
0: कई
1: मतलब गाना भी नहीं पौंदी थी तू तो।
0: ना
1: हाँ बिल्कुल
0: कन्या। हाँ पहाड़ी इलाकों की गल करा, जी चंबा हुई या होर उच्चे उच्चे पहाड़ इलाके, तो तिथु दराटी है ना यहाँ ज़्यादातर फसल
1: जी जी
0: कटना
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पौंदी, क्योंकि इतू कई ऐसी जगह जितू मशीन पुजिया नहीं है ना, तो हाँ जी जी दराटी है यही मुख्य भूमिका निभाती। तो इसका भी तुहां बोल देना जी समय रेंदे तुहां पहले ही दिखी लैनी वे पलाई पलूई लैनी, ताकि तुहें फसलां कटते टाइम
1: कोई
0: देरी ना
1: दिक्कत ना।
0: हो।
1: जी बिल्कुल ना तो देर ही हो, मतलब ये ना हो कि हाँ भी आ गया फसला कटना जाना कहना
0: कने
1: तो संग
0: ऊ
1: अड्डा।
0: नहीं मतलब
1: बिल्कुल
0: कई दिन
1: बिल्कुल
0: पहले किसान तैयारियां ले पौंदे
1: तैयारी करना
0: करना,
1: लगी पौना। बिल्कुल
0: कने जालू जे हाँ गांधे तो दिखा अच्कल मशीन च दाना बिगाई लै दे,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: तालू भी आते किसानों बड़े सावधानियां रखना पौंदियाँ, क्योंकि कैसे कई बार हाँ ऐसे हादसे सुनने मिली आते भी जेडे सोचे नहीं होंगे लगे, तो सै खेतीबाड़ी के कम होंगे
1: जी
0: पर 2 मिनटों बच्ही सै चीज़ गलत हो
1: जी
0: जाती।
1: बिल्कुल ठीक है। दिखा जी हाँ जिथू मशीनों का उपयोग करना चाहते हैं ना तिथू हाँ जो सावधानियां भी बरतना पौनियाँ।
0: बरतना
1: बिल्कुल जी
0: पौनियाँ कने कई बार दिखा घरे दे ज़्यादातर तो हाँ दे पुरुष वर्ग ही इस कम्मे कर दे, पर कई घर दिखा हाँ दे भाई या पुरुष वर्ग बाहर है ना, तो तुहां दियाँ भैन हाँ दियाँ महिला जड़ियाँ सह आपू ही थ्रैशरों में लगी पो
1: जी
0: दियाँ,
1: बिल्कुल
0: तो तिना वाल सही दिखा 24 घंटे झूंड पाए होंगे ग्रां च,
1: जी जी जी
0: कपड़े खुले टिले होंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
2: पापा जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
3: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
4: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं, तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
5: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये क्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
6: जी किसान साथियों, तो हाँ पहले सुने लोग गीत कने, फिर ही सुने जरूरी सने। तो इस ते बाद दिखा सेक्रेटरी जी, अजकल रौनक ट्याले अखे बखे बतेरिया लगी हैं।
7: बिल्कुल बिल्कुल,
6: कहे कि नवरात्रे लगी पियो ना।
7: बिल्कुल जी,
6: तो अपने जितने भी श्रोते हैं अहां जे कार्यक्रम जो सुना देखो, जो कि किसानों के अलावा भी अहां कार्यक्रम बड़ी दूरों दूरों तक पुजता
7: जी। बिल्कुल,
6: कने हर कोई इसने जुड़े हों, तो सारे जो ही अहां तरफा अहां ट्याले की तरफा से बोलिया नवरात्रे दी शुभकामना। कने माता राणी सारे दे ही घर सुख शांति रखे, सारे दे बरकत दे, कने काम कार सारे दे वधिया चलते रहन। तो सैकटरी जी दिखा सर्दियां हुण गां बधणियां हैं, तो अहां दे किसानां नूं पता भी सियाला ते अपने काम कियां कियां करने हुंदे। तो इह च हल्की दे गल हां इह दसणी है भई सियाला जिहे आउणा, तो तुहां अपने पशुआं दा खास करी जिहड़े तुहां दुधारू पशु हन तिहनां दा ध्यान जरूर रखणा है। तो ध्यान ही है भई जिहड़ियां करालां हुंदियां ना, तो तू कोशिश करनी भी जी तुम गर्मियों में खोली आदि खिड़कियाँ दरवाजे तिने तुह समाए रेंदे कोई बोरिया या कोई तुह ऐसा कपड़ा कुपड़ा
7: बंद कर देनी
6: दरिए ना साहब, ताकि तू ठंड ना पुजे। कहो कि बोलते ज़्यादा ठंड होने के कारण दुधारू पशुओं के उत्पादन भी फर्क पाँगा। तो यह छोटी छोटिया चीज़ा ने तुह अपना भी ख्याल रखना, अपने पशुधन का भी करना, अपने घर याण सियाण का भी। तो इस हूँ चलते चलते मैं तो बोलती देर नहीं लगानी, कने ट्याले का जोड़ा माहौल है से फिर एक रौनक वाला बनाना। आवा सुन देने एक मिठा दिया लोक गीत।

0: किसान साथियों प्यारा प्यारा लोग गीत तुहां तक पुज्जा दा है कने तुहां हो हाँ बिल्कुल ये गीत अगे भी सुनांदे रहना है पर जांदे जांदे दसींदे वे कार्यक्रम जिहड़ी प्रस्तुति जतिंदर पाल सिंह कने तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान दा हुण असां दोनों जो दिया अनुमति
1: अच्छा जी जय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुझांकराइंदियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM एंड 103.4 MHz पर। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सकलैन अख्तर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय

0: सदस्य है, किसी इलेक्टेड बॉडी का कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था को और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के और संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को केवल आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विपक्षी प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात के दौरान भी श्री राहुल गांधी कोई सबूत पेश नहीं कर सके। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, मुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBT मैदान शामिल है। इसके साथ ही
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO business plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi today. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms, and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries. The Commerce and Industry Minister also addressed the Delhi Dialogue 2026 in New Delhi today. Mr. Goyal has emphasized that the country's youth must actively participate in India's development journey by bringing fresh perspectives, innovative ideas, and a strong sense of purpose to policy making. He expressed confidence that India's economy would reach $30 trillion by 2047.
3: All we have to do is to demonstrate the strength of 1.4 billion people. So you are an aging population, I am a young population. My average age is below 30 years. For the next 30 years, I will remain below. So from now until 2047, I will become a $30 trillion economy and the fastest growing large economy. I tell every minister, this is a paper, you put any growth rate you want and calculate your GDP in the next 23 years, up to 2047. Let's put the two numbers side by side and then realize There's no country in the world which will probably double their GDP.
2: Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said that the doors of the Supreme Court are open to everyone and any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. Justice Suryakant made the remarks while addressing the 33rd Foundation Day of NHRC in New Delhi. Responding to India Bloc's demand for a meeting, Justice Suryakant said that he had received a letter yesterday requesting an appointment and had replied last night explaining why he was unable to meet them.
4: The doors of the Supreme Court are open to everyone. Any person, whether an ordinary citizen or a member of an elected body, has the right to approach us. Every citizen of India has this right. We will hear the grievances and address their concerns in accordance with the law and the legal framework. I received the letter yesterday. And

0: बदल करके सकाई बलैन।
1: जी बिल्कुल, तुम ठीक लाया दिखा जी, अहाँ के किसान साथी हैं ना, इन्हों का काम जरा सा इं चली रहा,
0: जी
1: खेतीबाड़ी कने अहें जुड़ के रहना पौंदा, कने कोई ना कोई काम कार करते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, कने सौगी सौगी पट्टियां भी हाँ जा दे ताना दी, तो चलो हाँ कई मतलब दी गाय भी लै होने, कई
1: कुछ एक
0: कुछ
1: जगह
0: काले
1: कुछ, हाँ
0: हैं
1: बिल्कुल, कुछ
0: जी
1: काले इन्ना तेना तोड़े लाए, तेना गाने आले हुई, इतना गाय भी लै होने बेसक।
0: बिल्कुल। कने इस दे कने कने ही ताना सौगी सौगी हाँ दे, अजकल लाड़ू सगड़ू दे कम भी जोरा शोरा पर है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल
0: तो मैं भी दिखा कोई 50-60 गोभी के बूटे लाइते न,
1: जी,
0: तो हम दिखते ने कितने टिकते ने कने कितने
1: कितने
0: नहीं।
1: बिल्कुल नहीं दिखा, मौसम पर ही जी सारा काम है, मौसम टाइम में तक ठीक रहेगा तो अहाँ की फसल जड़ी है सब्जी की भी ठीक होनी है, साग सब्जी ता ही
0: जी
1: चलनी है, जो मौसम थोड़ा ठीक रहेगा, मता पाला पौना शुरू हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाती थोड़ी देर।
0: हाँ, पाले का नुकसान है होंगे कि पाले ने बूटे फुकू जाते,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: तो ज्यादा पाला भी होता सब भी नुकसानदायक, पर चलो तिस हिसाबे ने भी कुछ ना कुछ तो भी उपाय होंगे ना।
1: जी
0: पर आज जेड़ी हाँ कार्यक्रम खेतीबाड़ी बीच अपने श्रोतिया ने अपने किसानों ने गल करनी है, सह ग्रामीण पेयजल सुविधाएं,
1: जी
0: तो देखा सुविधा जलू गल करा देना, तो मैं बोलती हूँ से पहले आले टाइम सेक्टरी चली है
1: जी बिल्कुल
0: पे
1: चली
0: एक
1: है
0: बोर्ड हों ग्राएं च
1: जी, बोड़ू ही होंदा है साहब, कुथी कुथी बड़ी दूर दूर होंदे है
0: या
1: पहले तो
0: खूह
1: बिल्कुल
0: होंगे हे,
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: सह तो हूँ मैं बोलती चाहे सोए च कोई 2-4 ही रहोंगे,
1: बिल्कुल जी
0: कहे कि हूँ लोग थोड़े आधुनिक हिसाबे ने चली पे होता, सह
1: जी
0: तीन चीज़ें देख रेख तीन छड़ी
1: बिल्कुल,
0: थी
1: दिखा तो हाँ बोलिया तो निक साहब ने चली पे होता, दिखा ना लोगों है वो सहूलत हुई हैं, लोग हैंडपंप लवाई लै, कहना साहब ग्राएं च एक अद्धा भी नहीं बल्कि चार पाँच पाँच भी लगे कुथी कुथी तो।
0: तो हाँ दूर की गल कर हूँ लोग भेजी अपना घरे का लवाई लै दे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक लाया भी, दूर बड़ी दूर के जाना, लोग अपने घर घर चलाना शुरू कर दिए, तो यह सुविधा कुछ ज़्यादा हुई हैं, पर इन सुविधा के कारण प्रकृति का दोहन जरा सा भी बड़ा ज़्यादा हुआ करता।
0: हाँ चलो अज तो हाँ पेयजल सुविधा की गल करनी है,
1: जी
0: पे जड़ा हाड़े वास्ती पानी दे जुड़ियां अच्छी अच्छी सुविधा ने सरकार तिना वास्ते हाँ जो क्या दे दियाँ क्या करा दियाँ, पर जी हाँ एक साइड भी गलाए भी जी पुरानी जड़े हाँ दे प्राकृतिक स्रोत थे ना
1: जी जी
0: तिना तो हाँ थोड़ा जहा बोलते थे नहीं भुली है
1: बोली है बिल्कुल जी, कह कि दिखा जो प्राकृतिक स्रोत थे इस पानी पीने का मजा कुछ अलग था
0: लग था।
1: बिल्कुल, कहे कि कहना ये जड़े हूँ हाँ चुहा हैंडपंपा तो ले लिया, जब बोल देना है आर ओ चल रहे हो आर ओ वाटर
0: बड़ा
1: ओ,
0: कुछ
1: तो
0: चलिया मैं
1: तिस भी
0: बोलती
1: है कुछ पानी का जरा पीने का स्वाद ऐसा है, बड़ा फर्क है जमीन आसमान का अंतर।
0: फर्क,
1: जी
0: पर चलो देखो हाँ जहाँ गल करा देना जे ग्रामीण पेयजल सुविधा दी,
1: जी
0: तो
1: जी
0: हूँ ग्रां दे हर घर तक साफ कने सुरक्षित पानी दी पहुँच वास्ती ये सुविधा चलाइया ने, कने इस
1: जी
0: वास्ते हाँ दी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो है से कोई ना कोई योजना ऐसी लियांदे रहवा दे ताकि पानी दी सुविधा मतलब हाँ दे हर घर तक पुजन,
1: जी बिल्कुल
0: कने कई इन सुविधा कने वास्ते स्रोत हैं जियाँ तो हाँ दे हैंडपंप हुई है
1: बिल्कुल जी
0: बोरवेल हुई है
1: जी जी
0: कने खूह भी है पर सह जियाँ दूए है रिंग बैल किसके बोलते
1: जी
0: हैं भी
1: जी जी जी ठीक
0: सह
1: है,
0: मशीना ने
1: मशीना ना
0: चले
1: चलते सर जी
0: हाँ, तो
1: बिल्कुल जी
0: दिखाई है खूह पर कने इन सुविधा के कारण भी हाँ दा मतलब पानी का जड़ा हाँ कमी रही सह दूर हुई हो
1: जी बिल्कुल, तो ठीक लाया दिखा जी, सुविधा भी हुई है कने ग्रां वास्ते पानी ने जुड़ियाँ, सरकार ने कई सारी योजना भी चलाई हैं,
0: जी जी
1: जिंया हाँ दी जल जीवन मिशन हुई है जी, स्व जल धारा योजना हुई है जी,
0: बिल्कुल
1: तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हुई है, या गल कर ले मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चित
0: निश्चय
1: योजना
0: योजना
1: बिल्कुल जी,
0: जी।
1: मतलब ये भी सुविधा ही हुई कि तरह के कि सार चली है तो ग्रां दियाँ पानी की सुविधा जो पूरी करने वास्ते ही है ना,
0: बिल्कुल
1: तो हाँ इन्हें भी सुविधा ही बोली सकते कि तरह के
0: कन्हैया जी ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना है ना
1: जी
0: ये अली पता नहीं हाड़े हिमाचल में है या नहीं है पर कुछ ना कुछ बाकी राज्य में तो चली हुआ है ना,
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: बोलते इस दे तहत जो ग्रामीण परिवार है ना तिना जो दैनिक आधार पर एक मात्रा तय की हो भी तिने जी प्रति व्यक्ति तुह मनी लिया 50 कने 70 लीटर पानी शुद्ध दिते
1: अच्छा,
0: जाना,
1: मतलब पीने वास्ते जरा देते जाना
0: हाँ इतना
1: दोनों जी
0: मुहैया
1: जी
0: कराने
1: बिल्कुल
0: जाना, कने ये भी चलो अहाँ भी खुश होना चलो हाँ दे थू पुजियांगी ये योजना
1: जी बिल्कुल दिखा अच्छी योजना, क्या कि दिखा एक तो सुनिश्चित हो जाना कि इतना कि पानी यहाँ जरा पीने वास्ते साफ सुथरा
0: शुद्ध,
1: मिलना ही मिलना
0: कने
1: जी
0: हूँ शुद्ध पानी यदि ज्यादा गारंटी भी तो नहीं है यहाँ दे अखे बखे बोलते जमीना बिच हर जगह दिखा हूँ सह सीवरेजा बनी चुकियां,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: तो सभी पानी कुछ हद तक अहाँ दे पेयजल जड़े पीने योग्य पानी है ती तुसें मैं बोलती कुछ ना कुछ रचदा होना,
1: जी बिल्कुल
0: तो बीमारियां तो इस कारण है ना, तो सही हाँ खूह बोड़ियों च भी पूजगा पानी तो सभी फिर ही पीने लायक नहीं
1: पीने
0: रहनी
1: लायक
0: है।
1: नहीं रहना जी, तो ठीक ला दे कहना अहाँ दिखा जी सुविधा का भी फायदा चुकना चाहिए, कहना पानी की स्वच्छता का भी ध्यान जरा से अहें रखना चाहिए
0: बिल्कुल, तो ये प्रबंधन इन्हों की देख रेख भी अहाँ का ही फर्ज बनता
1: जी
0: जे अगर सरकार हाँ ये चीज़ा उपलब्ध करवादियां ना जी अहाँ दसा दे हैंड पंप होइए या और चीज़ा, तो अहाँ जे लाई तक कोई सरकारी कुनी कहना अहाँ सोच गए भी अहाँ घर लगे हो नलके खूह है ना, तो अहाँ कोई देख रेख नहीं करनी
1: जी
0: तो सह अहाँ की मतलब बड़ी बड़ी
1: जी
0: नलायकी होनी।
1: बिल्कुल ठीक लाया दिखा जी, सरकार का काम है कि यहाँ तक सुविधा कने योजना पहुँचाना, पर
0: बिल्कुल
1: आगे यहाँ तिना सुविधा कने योजना का किन इस्तेमाल कर देना चाहे शायद अहाँ की जिम्मेवारी बन दी कि अगर अहाँ ध्यान रख गए तो तिना सुविधा कने योजना का जरा है लंबे समय तक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 7:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के केलंग में उच्च पर्वतीय आयुर्विज्ञान व जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का किया शिलान्यास। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर सहयोग कर रही है केंद्र सरकार। राज्यपाल ने नौणी विश्वविद्यालय में युवाओं के विकास के लिए 100 दिवसीय रोड मैप का किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 है देश भर में पहले स्थान पर। और प्रदेश में कल से फिर करवट लेगा मौसम, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर सहयोग कर रही है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के केलंग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के देश के पहले उच्च पर्वतीय आयुर्विज्ञान व जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करने के अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि लाहौल स्पीति की भौगोलिक परिस्थितियां देश के दूसरे क्षेत्रों से अलग हैं। उन्होंने कहा कि कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड, बदलती जलवायु और अनूठी जनजातीय जीवन शैली को देखते हुए इस केंद्र की स्थापना एक दूरगामी और क्रांतिकारी कदम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये केंद्र जनजातीय समुदायों और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा।
1: यहाँ के इलाके की यूनिक चैलेंजेस है, एक अपने आप में अनूठी विषमताएं जिसको जानना, स्टडी करना बहुत ही आवश्यक, और इसके साथ साथ यहाँ के मौसम का और यहाँ के जो दूर दराज इलाके हैं और इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान प्रहरी जो कोई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मद्रास यानी तमिलनाडु, केरल, वहाँ के समतल इलाके के लोग जो यहाँ

0: -20 में आकर के देश की सेवा करते हैं, उसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है यह जानने की बहुत आवश्यकता होती है। यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं और यहाँ जो आकर के सर्विस करते हैं, उनके जीवन को में किस तरीके से उत्तम स्वास्थ्य दिया जा सके, इसकी चिंता करने के लिए आज ये रिसर्च सेंटर जो बना है, उसके लिए मैं विशेष करके आप सबको बधाई देता हूं।
1: जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2017 में नई स्वास्थ्य नीति लाई, जिसका उद्देश्य बीमारी होने से पहले ही उसे रोकना है।
0: 2017 में हम नई स्वास्थ्य नीति लेकर के आए, जिस नीति में हमने कहा कि बीमार पड़ो ही क्यों, पहले तो बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। ये रिसर्च सेंटर इसलिए बन रहा है कि मौसम का इम्पैक्ट -20 का क्या असर पड़ता है ये हमें पता चल जाए, ताकि उससे उत्पन्न होने वाली तकलीफों को हम सुझाव दे सके और यहाँ के लोगों को सदा सदा स्वस्थ रख सके, इस बात का प्रयास।
1: नड्डा ने इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना में ICMR और सशस्त्र बल चिकित्सा सेनाओं के बीच सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस संयुक्त प्रयास से वैज्ञानिक विशेषज्ञता और चिकित्सकीय अनुभव को एक मंच पर लाया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद कंगना रनौत सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज सोलन जिले के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा तैयार युवाओं के विकास के लिए 100 दिवसीय रोड मैप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि युवा सशक्तिकरण, कौशल विकास और उद्यमिता राष्ट्रीय प्रगति के प्रमुख आधार हैं। राज्यपाल ने प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा व क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए शैक्षणिक ज्ञान को व्यावहारिक कौशल और उभरते आर्थिक अवसरों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं नीम कोटेड यूरिया 2015 के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल से किसानों को सीधा लाभ मिला है और बिचौलियों की भूमिका पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग से फसलों की पैदावार में भी वृद्धि हुई है।
2: 2014 के बाद केंद्र सरकार ने पहला काम ये किया कि यूरिया की 100% नीम कोटिंग कर दी। इससे यूरिया की काला बाजारी रुक गई। केमिकल की फैक्ट्री में जो यूरिया पहुंच जाता था वो बंद हो गया। अगर हमें उपज बढ़ानी है तो बेवजह यूरिया के उपयोग की जरूरत नहीं है।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
3: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
4: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
3: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं। ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
7: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
7: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
6: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
7: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
6: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
7: प्रदेश के

0: संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों को जून 2027 तक सड़क संपर्क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने आज क्षेत्र की सीमावर्ती पंचायत नगाली में रंगड़ कुनेरा संपर्क सड़क के शिलान्यास अवसर पर ये बात कही। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सड़कों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है, ताकि निर्धारित तकनीकी मानकों व गुणवत्ता के अनुरूप नियमित मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित हो सके। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर है। शिमला में आज प्रदेश के 17 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। अशोक तिवारी ने विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों को, विशेष तौर पर छात्राओं को, इस सेवा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपलब्ध ट्रैक मी सुविधा के बारे में जागरूक करने व पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया माध्यमों से जुड़ने का आग्रह किया। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश भर में चल रहे एंटी चिट्टा जन आंदोलन में विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राजस्व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज रिकांगपियो में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान राजस्व मंत्री ने पुह, कल्पा व निचार विकास खंड के एक एक गांव में उपमंडल स्तरीय वन अधिकार समितियों के पास लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी ली। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते 24 घंटों के दौरान हुई हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में कहीं कहीं वर्षा व ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि हिमपात व वर्षा से तापमान में औसतन 6 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि कल 13 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा, जिसके चलते चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा जिले की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो सकता है।
2: बीते 24 घंटों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय था और इसके प्रभाव से पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिला है। हल्की बारिश हो सकती है। फिर कल देखिए 13 अक्टूबर की देर शाम से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। 15 अक्टूबर तक स्पेशली जो मध्य डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला है और इवन जो हाई रिचेज है, जिसमें लाहौल स्पीति और चंबा है, यहाँ पे बारिश के साथ साथ जो हाई रिचेज में बर्फबारी देखने को मिलेगी। साथ में जो मध्य डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है।
1: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में माँ के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस दौरान माहौल भक्तिमय बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के केलंग में उच्च पर्वतीय आयुर्विज्ञान व जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का किया शिलान्यास। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर सहयोग कर रही है केंद्र सरकार। राज्यपाल ने नौणी विश्वविद्यालय में युवाओं के विकास के लिए 100 दिवसीय रोड मैप का किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 देश भर में पहले स्थान पर। और प्रदेश में कल से फिर करवट लेगा मौसम। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
3: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
4: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
3: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
4: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी शिमला से आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

0: लीजिए अब प्रस्तुत है रोजगार समाचार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना सोलन के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त चल रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 6 पद और सहायिकाओं के 15 पदों को भरने हेतु साक्षात्कार दिनांक 23 अक्टूबर सन 2026 को कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन में प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। संबंधित आंगनवाड़ी पोषक क्षेत्र की सामान्य निवासी इच्छुक महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर आवेदन पूर्ण वांछित सत्यापित दस्तावेजों सहित आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में दिनांक 17 अक्टूबर सन 2026 तक आप जमा करवा सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद जिन केंद्रों पर रिक्त हैं उनमें उन आंगनवाड़ी केंद्रों में देवघाट, सनीसाइड, भियुंत, भैरा, बणी और कमलोक हैं और आंगनवाड़ी सहायिका के पद जिन केंद्रों पर भरे जाने हैं उनमें उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जराश, टिक्कर, दधोग, जोखड़ी, ढलेन, जमरोट, भरोल, कोरो, कोटला, गौल, थुंदी, गणकी सेर, मोलो खुर्द, कलोड़, पाजो और ऊंचा गांव शामिल है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका हेतु आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से जमा दो या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक उसी आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित पोषित क्षेत्र की सामान्य निवासी होनी चाहिए तथा संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वेक्षण रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि होनी आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष नंबर 01792221640 पर संपर्क कर सकते हैं। ये थे रोजगार समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति तलत अजीज की गाई ये गजल आपके रेडियो सेट्स पर।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे हैं मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस अपने रेडियो दोस्त रेनमन कोटिया के साथ। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे अमरिंदर गिल का गाया ये पंजाबी गीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं गुरदास मान का गाया ये गीत।

ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति गुरदास मान की आवाज में। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत। सोनू निगम व साथियों का गाया हुआ ये देशभक्ति गीत हमने लिया है बॉर्डर टू फिल्म से।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन

0: को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
3: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
4: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
5: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।
6: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
7: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
8: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
7: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
8: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
7: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
8: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
7: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
8: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
7: लड़ी हक की लड़ाई,
8: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
6: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
3: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
4: बस यही पूछो Why?
9: रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
5: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
6: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज 8:09 रिले किए जाएंगे।
1: संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसान

0: इससे सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है, किसी इलेक्टेड बॉडी का कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए। हम कानून की व्यवस्था को और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क साफ भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए।

0: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि FDI नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
3: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
2: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
4: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
2: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमरीका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत

0: किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Sairam Mujtaba with the news at 9. The headlines. India reaffirms commitment to deepening economic cooperation with UK. Targets doubling bilateral trade by 2030. Centre urges states and union territories to ensure prominent display of rate lists by clinical establishments. Government to set up high-level committee to address sugarcane farmers' grievances in Maharashtra and Karnataka. Jantar Mantar in New Delhi no longer a protest site. Delhi police designates 3 new venues. American economists Robert E. Hall and Michael Woodford to get this year's Nobel Prize in Economics. An IMD forecasts a thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab and Chhattisgarh till tomorrow. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO business plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi today. The minister reaffirmed the country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms, and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
2: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected pathway towards greater progress and prosperity. And finally, healthcare and consumer sectors, whether it is generic pharma on the Indian side or branded pharmaceutical innovative products on the UK side, our diagnostics, food processing and consumer goods, India's affordability and Britain's discovery together can become a force multiplier.
1: Commerce and Industry Minister also addressed the Delhi Dialogue 2026 in New Delhi today. Mr. Goyal emphasized that the country's youth must actively participate in India's development journey by bringing fresh perspectives, innovative ideas, and a strong sense of purpose to policy making.
3: All we have to do is to demonstrate the strength of 1.4 billion people. So you are an aging population, I am a young population. My average age is below 30 years. For the next 30 years, I will remain below 30. So from now until 2047, I will become a $30 trillion economy and the fastest growing large economy. I tell every minister, this is a paper, you put any growth rate you want and calculate your GDP in the next 22 years, up to 2047. Let's put the two numbers side by side and then realize There's no country in the world which will probably double their GDP.
1: Centre has urged all states and union territories to ensure

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार उषा खन्ना के संगीतबद्ध किए गए कुछ चुनिंदा गीत।

था मुकेश व साथियों ने। एक ही कलाकार, जी हाँ, ये कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं भारतीय सिनेमा की उन प्रतिभाशाली हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला और साधना से संगीत की दुनिया में एक खास मुकाम हासिल किया। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फिल्म जगत की एक ऐसे संगीतकार की जिन्होंने पुरुष प्रधान संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई, जिनकी धुनों में प्रेम भी है, विरह भी, मस्ती भी और भावनाओं की गहराई भी। जी हाँ, आज हम परिचय करवाने जा रहे हैं संगीतकार उषा खन्ना का, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से हिंदी फिल्म संगीत को अनेक यादगार गीत दिए। तो चलिए शामिल करते हैं आप तो ऐसे न थे फिल्म से ये गीत जिसे गाया है मनहर ने।

ऊषा खन्ना का जन्म 7 अक्टूबर 1941 को हुआ था। उनके पिता मनोहर खन्ना गीतकार थे। घर में संगीत और साहित्य का वातावरण होने के कारण उनकी रुचि बचपन से ही संगीत की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और संगीत के प्रति समर्पण से फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई।

बात की जाए उस दौर की, तो उस दौर में फिल्म संगीत के क्षेत्र में महिला संगीतकारों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे समय में उषा खन्ना ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और यह साबित किया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। प्रतिभा, अभ्यास और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

उषा खन्ना की खासियत यह थी कि उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों और भावनाओं के अनुरूप संगीत तैयार किया। उनके संगीत में रोमांटिक गीतों की मधुरता थी तो कहीं जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और उत्साह भी दिखाई देता था। तो आइए शामिल करते हैं एक और लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत सौतन फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। तो कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं इस माता की भेंट के साथ।

अभी आप सुन रहे थे संजीव कुमार की गाई ये माता की भेंट कार्यक्रम में। अब हम शामिल कर रहे हैं मंजू भारद्वाज का गाया ये लोकगीत।

गूंज पहाड़ों की ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जी हाँ, अब हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं नसीम बाला का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे नसीम वाला व साथियों को। कार्यक्रम के अंत में आइए आप सुनते हैं सुरेश वर्मा का गाया ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बजने को हैं। आइए सुनते हैं सजीव फोनिन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। जी हाँ, और जिन फिल्मों के गीत हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं, फिल्में हैं प्यार झुकता नहीं, अर्पण, आवारा, अमर प्रेम, आरजू, वक्त, कुर्बानी, दीवार, पारसमणि, राजकुमार, सागर, दर्द, लव इन टोक्यो, सच्चा झूठा, धड़कन, दिल का रिश्ता, मधुमति, सपने साजन के राजकुमार। जी हाँ, ये फिल्में हैं जिनके गीत आज आप इस कार्यक्रम में सुन सकते हैं। हेलो,
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान सिंह जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, और आप हैं हमारे पहले कॉलर आज के इस कार्यक्रम के।
1: जी मैडम, आज की फिल्म बताइए सर। मैडम जी,
0: जी हमने अभी फिल्में आपको बताई, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। प्यार झुकता नहीं, अर्पण, आवारा, अमर प्रेम, आरजू, वक्त, कुर्बानी, दीवार, पारसमणि, राजकुमार, सागर, दर्द, लव इन टोक्यो, सच्चा झूठा, धड़कन। जी
1: बता देता हूँ, दीवार का कह दो तुम, मैं क्या चुप रहूँ, गायक किशोर कुमार, आशा भोसले, दीवार।
0: दीवार फिल्म का गीत आप सुनेंगे, और कुछ बताना चाहेंगे?
1: सबसे पहले मैडम जी, आपको नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, आने वाली दीपावली, छठ पूजा की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी मैडम
0: जी, तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ। कार्यक्रम में आपने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा, यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।
1: जी मैडम, कल 9 बजे होगा लाइव फोनिंग कार्यक्रम सुबह से?
0: जी जी बिल्कुल होगा।
1: जी मैडम, धन्यवाद, बहुत अच्छा जानकारी।
0: जी
2: तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
3: क्या है

0: जी हाँ, इंद्र भान की पसंद से ये गीत अभी उन तक हमने पहुंचाया और उनका एक और ये मैसेज था कि कल हेलो धर्मशाला कार्यक्रम होगा कि नहीं। अभी हमने क्यू शीट अपडेट करी तो कल हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे क्योंकि आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष का ये कार्यक्रम। अगले सप्ताह से उम्मीद है कि आपको हम जरूर सुनवाएंगे ये कार्यक्रम। तो कार्यक्रम में अगले कॉलर हम संग आ जुड़े हैं, देखते हैं कौन और कहां से बात हो रही है और किस से। हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार सर, कैसे हैं?
1: मेहरबानी सर, मेहरबानी
0: जी। बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप?
1: पारसमणि।
0: पारसमणि फिल्म से कौन सा गीत? जी बिल्कुल, और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में?
1: अजय गुप्ता, सिद्ध बाड़ी से बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता हम संग जुड़ते हैं। यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए। कार्यक्रम में कॉल किया, शुक्रिया,
1: धन्यवाद मैडम जी।

दोस्तों, संगीत की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है कि कभी कोई गीत हमें बीते दिनों की यादों में ले जाता है तो कभी किसी अपने की याद दिला जाता है। कोई गीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है तो कोई दिल के बेहद करीब पहुंच जाता है।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: डिंपल कुमार बोल रहा से मैम।
0: जी डिंपल जी, बताइए आप कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम में?
1: धड़कन फिल्म का मैम।
0: धड़कन फिल्म का कौन सा गीत सुनवाएं हम आपको?
1: कोई भी मैम ना था।
0: कोई भी बता दीजिए, फिर भी कोई खास आप सुनना चाहते होंगे तो।
1: कोई अच्छा सा बैकग्राउंड फिल्म का कोई भी गाना अच्छा सा।
0: जी बिल्कुल, सुनवा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम में कॉल किया, धन्यवाद, यूं ही
1: थैंक यू मैम,
0: जुड़े
1: थैंक
0: रहिए।
1: यू।
0: जी बिल्कुल।

हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। जी हाँ, फ़ोन नंबर हमारा है 01892224391, 01892224391। जी हाँ, हमें फ़ोन कीजिए, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से सुन रहे हैं या भी बताइए, और साथ ही बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी।
1: जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: केशव शर्मा जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: शुक्रिया मैडम जी।
0: पसंद आपके गीत हमारे ये कार्यक्रम है।
1: मैंने
0: और
1: सुना है प्यार दुखता नहीं फिल्म का टाइटल सॉन्ग है ना, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों।
0: जी, अच्छा ये गाना आप
1: तो
0: सुनना
1: वो
0: चाहेंगे?
1: हाँ प्यार दुखता नहीं, आपने जो पहली पहली फिल्म बताई ना प्यार दुखता नहीं।
0: जी, बिल्कुल, हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये
1: हाँ मैं
0: गीत।
1: साथियों कुछ साथियों

0: आप लेने हैं यूपी से हैं मेरे दोस्त विजय पांडे जी हैं
1: जी जी,
0: तो हिमाचल से हैं गोल्डी भैया जी हैं, राजस्थान से हैं पूर्ण वर्मा जी, हमारे कठुआ से मास्टर हैं विद्यारतन शर्मा जी, और मेरी मैडम सुषमा रानी बच्चियां हैं मेरी अंशु शर्मा, साक्षी शर्मा बेटा, सुलभ शर्मा भाई, सतपाल शर्मा जी।
1: जी जी, बहुत ही अच्छा लगता है, देखो रेडियो के माध्यम से भी कई साथी आप संग जुड़े हैं।
0: एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप कोई रिकॉर्डिंग वाला प्रोग्राम भी रखो ना, रिकॉर्डिंग वाला प्रोग्राम।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जल्द ही शुरू कर रहे हैं ये कार्यक्रम भी, आगे आपको सुनने को मिलेगा। जो हेलो धर्मशाला हमारा कार्यक्रम है वो रिकॉर्डिंग बेस पर ही रहेगा।
0: रिकॉर्डिंग वाला प्रोग्राम कर रहे हैं शुरू जल्दी कहीं?
1: जी जी बिल्कुल करेंगे, अगले हफ्ते से ये शुरू हो जाएगा।
0: अनाउंसमेंट कर देना कहीं पता चल जाए हमें।
1: जी जी बिल्कुल, प्रोमो बने हुए हैं, चल रहे हैं, तो जरूर आप कॉल कीजिएगा और सुनिएगा कार्यक्रम में। कॉल किया, शुक्रिया केशव जी।
0: ओके मैडम, थैंक यू।

0: वाह क्या खूब गीत था। सचमुच अच्छे गीतों की यही खासियत होती है ना दोस्तों, कि उन्हें सुनते हुए समय का पता ही नहीं चलता कि ये गीत कब शुरू हुआ और कब ख़त्म भी। तो आइए लेते हैं कुछ कॉमर्शियल स्पॉट।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई,
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: हेलो,
4: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम पसंद आपके गीत हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। कौन और कहां से बात हो रही है, किससे बात हो रही है?
4: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नाना खेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी, मध्य प्रदेश से आप कॉल कर रहे हैं, बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप?
4: मैडम जी, अभी हाल ही मैंने ट्यून किया है, मुझे फिल्म नहीं मालूम है, आप मुझे थोड़ा बता दें।
0: जी, फिल्में हैं अर्पण, आवारा, अमर प्रेम, आरजू, वक्त, कुर्बानी।
4: अमर प्रेम का सुना दीजिए, अमर प्रेम का।
0: अमर प्रेम फिल्म से हम आपके लिए कौन सा गीत बजाएं, बताइए जरा अपने पसंद।
4: गाना है अमर प्रेम में, गाना है ना एक वो राजेश खन्ना साहब का, और गाना है अच्छा, प्रसिद्ध गाना है मैडम,
0: चिंगारी।
4: हाँ चिंगारी वाला, वो बजा दीजिए। और कुछ मेरे दोस्त भी अभी ऑन एयर सुन रहे हैं मैडम मोबाइल ऐप पर।
0: जी बिल्कुल,
4: हमारे टेक चंद्र अग्रवाल जी, हमारे दोस्त राजेश गंगवाल जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं और दिलीप पाहुजा जी हैं।

0: रामबाबू मालवी जी हैं भोपाल से, और हमारे भगवान सिंह परमार जी हैं, और एक और हमारे मित्र हैं काफी, मतलब मेरे एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, हेलो फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप, अभी मैंने उसमें अपडेट डाली थी और अभी सभी लोग जितने भी मित्र सब सुन रहे हैं।
1: क्या बात है, रेडियो के माध्यम से जुड़े हैं, सुनते हैं, यूं ही जुड़े रहिए, बहुत अच्छा लगता है हमें आप संग बात करके, जब हमारे श्रोता इतनी शिद्दत से हमें सुनते हैं।
0: काफी समय से जुड़े हुए हैं आपके प्रोग्राम से, जी, मैं जी। प्रसार भारती का मोबाइल ऐप है ना
1: जी, न्यूज ऑन एआईआर
0: से सुन रहा हूं, जी ऐप से ही सुनता हूं सारे प्रोग्राम में,
1: बहुत अच्छा लगा,
0: सभी प्रोग्राम सुनते हैं
1: जी, कार्यक्रम में कॉल किया, शुक्रिया। चलिए एंजॉय कीजिए अपना म्यूजिकल ट्रैक जी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत। कौन बात कर रहे हैं
1: मैं दिनेश राठौर बोल रही हूँ, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से।
0: जी? यूपी से, उत्तर प्रदेश से आपने कॉल किया है। बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आज आपको?
1: गाना सुनना दिलवाले फिल्म का।
0: दिलवाले फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? हम अपने श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि जब भी हमें कॉल करें, सिग्नल का ध्यान रखें। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच रही है।

हेलो हेलो जी, कार्यक्रम है पसंद आपके गीत हमारे। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा सा आप सिग्नल में आइए तभी बात हो पाएगी आपसे। जी, हम जिन फिल्मों के गीत अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं, फिल्में हैं, एक बार हम फिर से बता देते हैं। अर्पण, आवारा, आरजू, वक्त कुर्बानी, राजकुमार, सागर, दर्द, लविन टोक्यो, सच्चा झूठा, दिल का रिश्ता, मधुमति, सपने साजन के, राजकुमार, आदमी खिलौना है। हेलो हेलो जी, आवाज़ हम तक सही मायने में आपकी नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से नंबर डायल कीजिए और थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आकर ही फ़ोन मिलाए। तब तक शामिल करते हैं एक और प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं के लिए।

हेलो, नमस्कार जी। आवाज अच्छे से आपकी नहीं आ रही है, थोड़ा सा सिग्नल का ध्यान रखिए, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आकर ही कॉल मिलाएं।

हेलो जी, नमस्कार जी। आवाज़ बहुत ही डिस्टरबेंस सी आ रही है जी। कौन बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही है।

कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं नाजिया हसन का गाया ये गीत कुर्बानी फिल्म से। इंतज़ार हम कर रहे हैं अपने श्रोताओं की फ़ोन कॉल्स का, पर बहुत ही आवाज़ जो है वो कट कट कर आ रही है, ठीक से हमें नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए हम गीत आपके लिए सुनवा रहे हैं कुर्बानी फिल्म से। कोशिश करिएगा कि सही सिग्नल में आकर हमसे आप बात करें, तभी बात हो पाएगी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, कार्यक्रम है पसंद आपके गीत हमारे। कौन बात कर रहे हैं?
1: संजय बात कर रहा हूँ जी, बैनासी
0: जी। संजय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताइए, कौन से फिल्म का गीत आज आप सुनेंगे?
1: फूल और कांटे जी।

0: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी, कार्यक्रम है पसंद आपके गीत हमारे।
1: जी। टेकचंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, प्रासिया चंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे टेकचंद जी आप?
1: मैडम आरजू नई वाली है या पुरानी वाली?
0: ये पुरानी वाली है जी।
1: झलके तेरी आंखों से
0: जी
1: मोहम्मद

हेलो, जय माता की जी, आपका कॉल मिला। और बताइए, क्या हाल?

0: बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, मजे हैं, उस भगवान की कृपा है आपकी।
1: जी जी जी बिल्कुल, वो तो बहुत ही ज़रूरी है जी। तो बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आज आपको?
0: रेणु जी, कौन कौन सी फिल्में बची हैं अभी?
1: वक्त है अभी।
0: हाँ वक्त है, सुना दीजिए
1: जी। कौन सा?
0: वक्त है दिन आज, और टाइटल सॉन्ग वक्त के दिन।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, चलिए शामिल करेंगे कार्यक्रम में। कॉल किया, शुक्रिया जी।
0: ठीक है जी, धन्यवाद।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई,
2: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार उरले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर ए तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं, ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।